सुप्रभात। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 12वीं तिथि तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 5:48 हो रहे हैं। हम हाजिर हैं आपकी सेवा में पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गांधी विचार।
1: महात्मा गांधी की अहिंसक समाज रचना की मौलिक दृष्टि उनकी कालजयी कृति हिंद स्वराज में बीज रूप में वर्णित है। इस पुस्तक की रचना 1909 में मूलतः गुजराती में की गई, जिसमें 20 अध्याय हैं, जिनमें विभिन्न अवसरों पर इंडियन ओपिनियन के पाठकों द्वारा हिंदुस्तान के हालातों पर दक्षिण

0: अफ्रीका और विलायत में हिंसावादी विचारधारा वालों द्वारा पूछे गए सवालों पर विचार करते हुए उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा है। इनमें विभिन्न पुस्तकों से अर्जित ज्ञान के निचोड़ के साथ उनका अभिमत भी है। वे मानते थे कि हिंदुस्तान के दुखों का हिंसा के रास्ते से इलाज नहीं हो सकता। प्रस्तावना में गांधी जी लिखते हैं कि हिंद स्वराज्य पश्चिमी सभ्यता की धुन से अलग विचार रखने वाले बहुतेरे हिंदुस्तानियों के हैं। यही विचार यूरोप के हजारों लोगों के हैं। देश सेवा के उद्देश्य से और सत्य की खोज के लिए उन्होंने यह पुस्तक लिखी, पर कोई पूर्वाग्रह नहीं था। इसलिए अगर उनके विचार गलत साबित हों तो उन्हें पकड़ रखने का कोई उनका आग्रह नहीं था। हिंद स्वराज्य के बारे में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि हिंद स्वराज्य देश धर्म की जगह प्रेम धर्म, हिंसा की जगह आत्म बलिदान और पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल खड़ा करती है। यह आधुनिक सभ्यता की सख्त टीका है। उन्होंने 1938 में भी कुछ शब्दों के संपादन के अलावा सब कुछ यथावत रखने की वकालत की थी। तत्कालीन हिंदुस्तान की दुर्दशा की समीक्षा करते हुए इसके अवनति का कारण परस्पर विश्वास एवं सद्भाव की कमी, औपनिवेशिक शोषण, पश्चिम का अंध उद्योगवाद, तकनीकी, स्वास्थ्य व्यवस्था, न्याय और संसदीय प्रणाली के अंधानुकरण को चिन्हित किया, जिन्हें कालांतर में उन्होंने और भी विकसित किया। उनके अनुसार अहिंसक समाज रचना में शोषण, छुआछूत, भेदभाव का कोई स्थान नहीं होगा। अहिंसक समाज में न तो कोई बड़ा होगा और न छोटा, न कोई ऊंचा होगा और न नीचा, न कोई अगड़ा होगा न पिछड़ा, न कोई भूखा होगा न कोई नंगा, सब बराबर होंगे। सभी की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी। अहिंसक समाज में संचय और लालच की कोई जगह नहीं होगी। परस्पर स्वावलंबन के आधार पर आवश्यकता अनुसार विकेंद्रित उत्पादन व्यवस्था होगी। सामाजिक जीवन परस्पर सहयोग और सहकार पर आधारित होगा। हर तरह से स्वदेशी अहिंसक समाज रचना की नींव होगी। गांधी जी के अनुसार अहिंसक समाज रचना की शिक्षा व्यवस्था भी अहिंसा के मूल्य पर आधारित होगी, जिसमें अक्षर का ज्ञान न तो शिक्षा का आदि है और न अंत। इस तरह की शिक्षा काम आधारित तो होती ही है, श्रम के आदर को भी स्थापित करती है। इसमें श्रम और बुद्धि दोनों को समान दर्जा हासिल है। इस व्यवस्था में श्रेष्ठता और न्यूनता के विभाजन का कोई स्थान नहीं होता। सभी समानता के सिद्धांत से निर्देशित होते हैं। तकनीकी शिक्षा भी प्रतियोगिता मूलक होने के बजाय शांति आधारित होती है, जो स्वाभाविक रूप से गरीबी निवारण में सहजता से कारगर हो सके। उदाहरण के लिए उन्होंने चरखा और सिलाई मशीन को लिया। उनके अनुसार चरखा विकेंद्रित तकनीक और व्यापारिक शांति का प्रतीक है। अहिंसा की आर्थिकी में चरखा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह गांवों के आत्मनिर्भरता की कुंजी है और खादी एकता का सूत्र है। इसी तरह ग्राम उद्योग अहिंसक समाज रचना का एक अभिन्न अंग है। गांवों की जरूरतों का उत्पादन गांवों में हो, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विकेंद्रित लागत, उत्पादन और वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करे। स्थानीय स्वशासन अहिंसक समाज रचना का अभिन्न अंग है। स्थानीय संसाधनों का नियोजन तथा पंचायती राज और ग्राम गणराज्य के अहिंसक स्वरूप को उन्होंने समुद्रीय वृत्त सा पारस्परिक संबंध माना है, जो छोटे वृत्त से प्रारंभ होकर विशाल वृत्त में विलीन हो जाता है। राजनीति में अहिंसा का प्रयोग तो कुछ हुआ भी है, किंतु जीवन के अन्य क्षेत्रों में इसका प्रयोग होना अभी भी बाकी है। हिंदुस्तान की आजादी में अहिंसा का सफल प्रयोग हुआ। दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे के भेद के खिलाफ सफल संघर्ष भी अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। और अब तो संयुक्त राष्ट्र महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा जनमानस को संरचनात्मक हिंसा से मुक्ति दिलाने का एक महत्वपूर्ण हथियार बन गई है।
1: आप सुन रहे थे गांधी विचार, यह आकाशवाणी पटना है। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है गमले में लगाए गए पौधों की देखभाल।

0: मुक्ति दिलाने का एक महत्वपूर्ण हथियार बन गई है।
1: आप सुन रहे थे गांधी विचार, ये आकाशवाणी पटना है। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है गमले में लगाए गए पौधों की देखभाल।
2: किसान भाइयों नमस्कार। फूल वाले पौधे और शोभाकार पौधे जो होते हैं उनकी खेती आप व्यावसायिक रूप से करते हैं। कुछ लोग नर्सरी इसकी तैयार करते हैं, गमले में पहले उगाते हैं या छोटे छोटे पॉट में इन्हें उगाते हैं, उसके बाद बाज़ारों में बेचते हैं। कुछ लोग या शहरों में रहने वाले जो प्रायः लोग होते हैं वे शोभाकार पौधे और फूल वाले पौधों को जो है गमलों में लगाते हैं, बालकनी में, आंगन में या खुले स्थान में उसे रखते हैं और उसकी सेवा भी करते हैं, उससे फूल वगैरह भी प्राप्त करते हैं। तो गमले में जो पौधे लगाए जाते हैं उनके प्रति कुछ सावधानियां आपको रखनी होती है। गमले में किस तरह की मिट्टी डालें ये भी बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग गमले में यदि चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं तो उसमें पौधे सही ढंग से नहीं हो पाते हैं। उसके लिए बलुई दोमट मिट्टी का प्रयोग करें। यदि आपको लग रहा है कि मिट्टी बलुई नहीं है तो उसमें थोड़ा सा बालू भी मिला दें ताकि हवा का जो है संचार जो है गमले की मिट्टी में आसानी से होता रहे। दूसरी बात ये होती है कि गमले में आप मिट्टी डाले, पौधा लगा दिए, फिर लगातार सिंचाई करते रहते हैं। लगातार पानी देने से ये होता है कि मिट्टी बैठ जाती है, हवा का संचार कम होता है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। पौधे में सिंचाई करना आवश्यक होता है लेकिन अधिक सिंचाई करने से हानि भी हो सकती है, इसलिए आप सोच समझकर जब पानी की कमी हो तभी सिंचाई करें और मिट्टी जो है उसकी खुदाई हरदम खुरपी से करते रहें ताकि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे और हवा का संचार, वायु का संचार होते रहे ताकि आपके पौधे जो हैं वे स्वस्थ रहें। कभी कभी आप देखते क्या हैं कि पौधे जो है जड़ से गलने लगते हैं, उनमें फफूंद का आक्रमण हो जाता है, फंगस के कारण पौधे गलते हैं। खास करके नागफनी के पौधे या अन्य पौधे जो होते हैं उसमें ज़्यादातर ये समस्या होती है। तो उसके लिए आवश्यक है कि गमले में जब आप मिट्टी डालें उस समय ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंगस होता है, इसकी किस्म होती है ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसको आप गमले की मिट्टी में मिला दें या जब गोबर की खाद आप गमले की मिट्टी में डाल रहे हैं उस समय मिला दें तो उससे क्या होता है कि फंगस का आक्रमण कम होता है या नहीं होता है और उससे जो है आपके पौधे बचे रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब गमले में पौधे लगे होते हैं तो आप ध्यान दीजिए, गमले के नीचे एक छेद होता है, वो छेद मिट्टी से जब भर जाता है तो पानी जब आप डालते हैं तो पानी नीचे की तरफ पास नहीं करता है, बाहर नहीं निकलता है, जिसके कारण कि पौधे को समस्या होती है, पौधे गलने लगते हैं ज़्यादा पानी आप देते हैं तो उस सुराख को जो है वो साफ रखे ताकि पानी जो है वो निकलते रहे। अब यदि आप गमले में गुड़हल का पौधा लगाए हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि सफ़ेद रंग के धब्बे जैसा पदार्थ, लसलसा पदार्थ जो है ऊपर से नीचे तक लग जाता है पौधे की टहनियों पर। यदि एक या दो टहनी पर ऐसा हो तो टहनी को आप काट करके फेंक सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा इसका आक्रमण हो जाए तो ध्यान रखें कि ये रुई की तरह जो पदार्थ जमा है पौधे के ऊपर ये कीड़ा होता है, अंदर इसमें कीड़ा होता है। तो घर में यदि आप गमला लगाए हुए हैं, बालकनी में लगाए हैं तो उसमें तो कीटनाशक दवा का छिड़काव करना अत्यंत ही हानिकारक है। आप ऐसा करें कि जो पाइप है, सिंचाई करने वाली पाइप जो होती है जिससे पानी आता है उसकी तेज धार जो है उसके ऊपर डालें, कीड़े नीचे गिर जाएंगे, पौधा आपका स्वस्थ हो जाएगा। उससे भी यदि काम नहीं बने तो घर में काकरोच मारने वाली जो दवाई आती है या स्प्रे आती है उसका हल्का सा स्प्रे कर दें तो उससे भी ये कीड़े मर जाते हैं और आपके पौधे सुरक्षित रहते हैं। इस तरह से गमले में लगाए गए पौधों की देखभाल करके आप उनसे लाभ ले सकते हैं।
1: गमले में लगाए गए पौधों की देखभाल, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास सहाय। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

0: सुबह के 6 बजने को हैं और ये समय है हिंदी में समाचार का। इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देश वंदना से।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आगे प्रस्तुत है कुछ भजन। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। और विश्वास में इतनी शक्ति है कि इससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर है रंजना जोगलेकर का।

श्री राम और लक्ष्मण पिता के वचन पालन हेतु वनगमन के लिए तैयार हैं। इधर सीता अपने स्वामी का साथ छोड़ अयोध्या के महलों में रहने को सहमत नहीं। कहती हैं, स्वामी के संग में पशु पक्षी उनके कुटुंब होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। उदार हृदय वन देवी और वन देवता सास ससुर की भांति उनकी देखरेख करेंगे। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में। आज का विषय है जलने की घटना और प्राथमिक उपचार। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विकास शंकर और इनसे बातचीत कर रहे हैं अनिल कुमार तिवारी।
1: स्वास्थ्य चर्चा सुनने वालों को नमस्कार। हमारे साथ आज के मेहमान हैं डॉक्टर विकास शंकर, जो पटना के जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, और हम इनसे बातें करेंगे जलने की घटनाएं और प्राथमिक उपचार। डॉक्टर साहब, जो मार्च अप्रैल का महीना होता है उसमें आमतौर पर अगलगी की समस्या हो जाती है, और आम जीवन में भी महिलाएं या कोई लोग जो आग के पास काम करते हैं वैसे लोग कभी कभी दुर्घटना में जल जाते हैं। तो हॉस्पिटल जाने के पहले या चिकित्सक के पास पहुंचने के पहले बहुत ज़्यादा नुकसान न हो जाए, तो उसके लिए कुछ ऐसे प्राथमिक उपचार बताएं जिसे तत्काल लोग करें तो उनको नुकसान कम से कम हो।
2: देखिए, सबसे पहले तो है कि हमें बचाव के उपाय करने होंगे। जैसे हम लोग हीटर को अपने कंबल के अंदर लगा लेते हैं, हीटर को अपने बेड पर रख लेते हैं और वहाँ से, या फिर बहुत नज़दीक जो आग की जो बोर्सियाँ होती है उसको लगा के सोते हैं, तो ये ना करें। मैंने बहुत पेशेंट के रिव्यू में जब देखा है कि जब वो जलते हैं तब पता चलता है कि वो बेड पर ही हीटर या ब्लोअर को रख के चला रहे थे, या आजकल हीटिंग जो बेड पैड आता है उसका प्रयोग करते हैं और शॉर्ट सर्किट होती है या कहीं से सर्किट लीकेज होती है और उससे आग लग जाती है। इसके अलावा जो दूसरे श्रेणियों में देखा जाता है, पूजा करते समय साड़ियों या धोती में या दुपट्टों में आग लग जाती है, तो उसमें काफ़ी सावधानी रखनी है। और अगर किसी को आग लग जाती है, चाहे वो रसोई घर में हो, पूजा में हो, या जाड़े के समय ब्लोअर से शॉर्ट सर्किट के कारण या हीटर के शॉर्ट सर्किट के कारण, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला उपचार क्या है कि आग को किसी भी मोटे कपड़े से ढककर दबा दें और आग को तुरंत बुझने दें ताकि वो फैले नहीं, शरीर के और अंगों में नहीं फैले। दूसरा काम करें टैप वाटर, न तो गर्म पानी न तो फ्रिज का ठंडा पानी, सबसे पहले नल के जो भी टेम्परेचर हो नल का, उस पानी से जो जले हुए अंग है, चाहे वो छोटे अंग हो या बड़े अंग हो, सबसे पहले उसको आप उसे हल्के से फ्लो पे उसको धो दें ताकि जो उसमें जो जले हुए पदार्थ सटे हुए हैं वो भी हल्के निकल जाएंगे, उसका टेम्परेचर कूल डाउन भी करेगा स्किन का और फर्दर डैमेज स्किन को नहीं करेगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि बहुत फोर्स से नहीं धोना है, बहुत हल्के फ्लो से धोना है और उसको धो दें। बहुत सारे केसों में हमने देखा है कि लोग जलने के बाद तरह तरह के घरेलू उपचार, और आजकल तो ये जो व्हाट्सएप या फेसबुक यूनिवर्सिटी है उसके अनुसार टूथपेस्ट लगा देते हैं। कृपया या ना करें, ये और हम लोगों के कार्य को डिफिकल्ट कर देता है। टूथपेस्ट लगाने के बाद वो उस चमड़े के साथ चिपक जाता है और उसको फिर साफ करने में हम चिकित्सकों को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और एक लेयर जम जाता है जिससे कि इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो आप ये घरेलू उपचार ना करें, ये चिकित्सकों पर छोड़ दें। तुरंत अपने निकटतम अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज, या अपने जो प्लास्टिक सर्जन है या चर्म रोग विशेषज्ञ हैं इनके पास ले जाएं, उसका समुचित इलाज शुरू हो जाएगा और इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसमें अपने अपने मन को शांत रखें, पेशेंट को कुछ पानी पिला सकते हैं, पेशेंट को भी शांत रखें और हाइड्रेट करके रखें। कोशिश करना है कि पेशेंट को जितना हम इन्फेक्शन से बचा पाएं हम उतना बचा पाएंगे, तो पेशेंट के लिए आगे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ सावधानियों के बारे में बता रहे थे, तो आप हमारे सुनने वालों को, खास करके महिलाओं को या वैसे लोग जो आग के पास काम करते हैं या हीटिंग इक्विपमेंट्स के पास काम करते हैं, वो किस तरह का वस्त्र धारण करें और कैसे किस तरह से वो उसको हैंडल करें, इसके बारे में भी जरा बता दें तो बड़ा अच्छा होगा।
2: देखिए, जैसे कि हम बहुत ढीले कपड़े पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, दुपट्टे या जो आंचल एक तरफ लटकता रहता है, धोती पहनते हैं तो उसमें ढीला रहता है, तो जब हम आग पूजा करने जा रहे हैं या आरती के बीच में हैं तो उस समय या तो वो जो जलनशील जो सामान है, जो मान लीजिए दिया है या आरती का जो आपका जो बर्तन है, उसको थोड़ा अपने से दूर रखें और हमेशा सचेत रहें कि इसमें हम उसके नज़दीक ना रहें और जलने की समस्या ना बनेगी। दूसरा है कि जब हम रसोई में हम काम कर रहे हैं और रसोई में हो सकता है कि हम ध्यान नहीं दे रहे, बहुत हड़बड़ी में हो रसोई में, और गलती से हमारा दुपट्टा, आंचल

0: या कोई भी वस्त्र रंग, ये आग के चेपेट में आ जाता है, तो उसको तुरंत उतारने की कोशिश करें। उसमें यह न देखें कि लोग क्या कहेंगे, जितनी जल्दी हो सके उसके ऊपर या तो आप कोई कंबल जैसे चीज को रख के बंद कर दें और उसको तुरंत आग को बुझाने की कोशिश करें। पैनिक नहीं हो, यहां से वहां नहीं भागें, घर के किसी भी कमरे में, कोई भी जिसमें आप सोते हैं वहां पे कंबल रहता है, तोशक रहता है, चादर रहता है, आप उसमें जाके लिपट सकते हैं और उस आग को आप बुझाने की कोशिश करें। कहे कि जो अंग जल गया है बस उतना ही तक जला रहे, आगे ये आग फैले नहीं। अगर आप दौड़ते रहेंगे, आप पैनिक करेंगे तो आपका आग ये और शरीर में फैलता रहेगा और आपके शरीर को ज्यादा अंगों को नुकसान करेगा। अगर 10 से 15% से नीचे हैं तो आप खतरे से बाहर हैं। याद रखिए, अगर 15% या 20% से ऊपर चले जाते हैं, अंगों को जला देते हैं, आप खतरे में आ जाते हैं, आपकी जिंदगी खतरे में आ जाती है। इसको मुक्ता ध्यान में रखना है।
1: तो डॉक्टर विकास शंकर साहब, आपने हमारे सुनने वालों को जलने की घटना और उसमें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जलने की घटना और प्राथमिक उपचार, इस विषय पर डॉक्टर विकास शंकर से अनिल कुमार तिवारी की बातचीत। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, आपको बता दें आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हालचाल। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:25 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विद्याधर व्यास से शास्त्रीय गायन, राग देवगिरी बिलावल। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन पेश करेंगे सुबह 9:10 पर और सुबह 10:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अनुपमा शरण से कुछ भजन। दोपहर 12:00 का समय है कार्यक्रम बिहार के लोक संगीत का। कार्यक्रम में आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत सत्येंद्र कुमार और कमलेश पासवान से। फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर। कार्यक्रम में आज का विषय है विभिन्न प्रकार का के जोड़ों के दर्द। इस विषय पर डॉक्टर पंकज कुमार से बातचीत करेंगे चंद्रमणि

सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे प्रस्तुत करेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी कार्यक्रम आरती। ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल प्रस्तुत करेंगे शाम 6:30 पर, और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं शाम 7:00।

रात्रि 8 बजे आप आनंद उठा सकते हैं फिल्म संगीत का, और रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में गुलाम अली की आवाज़ में चंद गज़ल।

रात्रि 10 बजे आप पुनः आनंद उठा सकते हैं फिल्म संगीत का। श्रोताओं, ये थे आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, इसे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ।

0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधार स्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यं च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणं संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्र यात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकः पराजितम् इति वार्ताः। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हाल चाल।

श्रोताओं, हाल चाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे 3 जुलाई के दिन इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो चलिए सबसे पहले बात करें 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ये समझौता भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और आपसी विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया था। और बता दें कि ये दक्षिण एशिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाओं में गिना जाता है। अब बात करें स्वतंत्रता आंदोलन की, तो 3 जुलाई 1908 को महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जगाता है। वहीं 3 जुलाई 1897 को प्रसिद्ध समाजसेवी, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी हंसा मेहता का जन्म हुआ था, जो महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। वहीं 3 जुलाई 1941 को देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अदूर गोपाल कृष्णन का जन्म हुआ। तो श्रोताओं, ये तो थे इतिहास से जुड़ी कुछ बातें, जानकारियां तो और भी हैं, बातचीत का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये एक प्यारा सा गीत मन्ना डे की आवाज में।

0: कभी तो हंसाए।
1: श्रोताओं, 3 जुलाई से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज का ये दिन हर वर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है, कपड़े, जूट या अन्य पर्यावरण अनुकूल थैलों के उपयोग को बढ़ावा देना है। प्लास्टिक बैग आसानी से नष्ट नहीं होते हैं और पर्यावरण को लंबे समय तक प्रदूषित करते हैं। नदियों, समुद्रों और जंगलों में पहुंचकर ये जानवरों, वन्य जीवों और समुद्री जीवों के लिए गंभीर खतरा बनते हैं। प्लास्टिक कचरा मिट्टी की गुणवत्ता और जल निकासी की व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। तो ऐसे में एक छोटा सा संकल्प हम ये ले सकते हैं कि प्लास्टिक बैग को हम ना कहें और धरती को हाँ, मिलकर स्वच्छ और हरित भविष्य का हम निर्माण करें। और इसी संकल्प के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना और अपने आसपास हरियाली बढ़ाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेड़ हमें सिर्फ छाया ही नहीं देते बल्कि जीवन के लिए कई आवश्यक चीज़ें जैसे कि ऑक्सीजन, स्वच्छ हवा, वर्षा और भी कई चीज़ें मिलती हैं हमें पेड़ से। बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और लगातार घटते वन क्षेत्र हमें ये याद दिलाते हैं कि अब प्रकृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए इस वन महोत्सव सप्ताह में हम सभी संकल्प लें कि एक व्यक्ति एक पौधा लगाए। केवल पौधा लगाना ही नहीं बल्कि उसकी नियमित देखभाल करना भी उतना ही जरूरी होता है। और जब पौधा एक मजबूत पेड़ बनता है तभी हमारा प्रयास सफल माना जाता है। इसी संदेश और संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम लगाते हैं। आकाशवाणी का पटना केंद्र, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। लीजिए सुनिए असलम साबरी और साथियों से कव्वाली।

असलम साबरी और साथियों से अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विद्याधर व्यास से शास्त्रीय गायन राग देवगिरी विलापल। इनसे हम पहले सुनेंगे विलंबित एक ताल में निबद्ध और फिर सुनेंगे द्रुत तीन ताल में निबद्ध। सारंगी पर इनका साथ दे रहे हैं रोशन अली और तबले पर हैं श्यामानंद झा। तो लीजिए सुनिए राग देवगिरी विलावल विद्याधर व्यास से।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विद्याधर व्यास से राग देवगिरी बिलावल। सारंगी पर थे रोशन अली और तबले पर साथ

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया।

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
1: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिवी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बाद मौसम के, उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते

0: समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. and BCCI announces schedule for India's two-match test series.

0: फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाई तकाईची ने पाकिस्तान से फैलाई जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई की अक्वाह मुत्तहदा सलामती कौंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है, जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तस्करा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़राए आज़म ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस काबिल मजम्मत हरकत के लिए जिम्मेदार इसकी साजिश रचने वालों और सरमाया फराहम करने वालों को बिला ताखिर कानून की गिरफ्त में लिया जाए। उन्होंने अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और उनकी ज़ेली तंजीमों समेत उन सभी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया जो अक्वाम मुत्तहदा की फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों वज़रा आज़म ने दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे, दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के नेटवर्क को ख़त्म करने और दीगर मुल्कों में जराइम के साथ उनकी साजबाज नीज सरहद पार से दहशतगर्दों की नकल व हरकत रोकने के लिए पुख्ता कार्रवाई की ज़रूरत पर भी जोर दिया। एक मजबूत और खुशहाल भारत बहरुल काहिल खित्ते के मुश्तरका मकसद के ताल्लुक से दोनों वज़राए आज़म ने हम ख्याल मुल्कों में इश्तराक को बढ़ाने के अपने अहद को दोहराया। उन्होंने क्वाड फ्रेमवर्क के तहत लगातार पेशरफ्त का खैर मकदम किया और अमली तआवुन बढ़ाने के अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत बनाने और अमन खुशहाली को फरोग देने की खातिर आसियान के मेंबर मुल्कों के साथ इश्तराक की अहमियत को भी उजागर किया। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत और जापान ने दो तरफा खसूसी क्लीदी और आलमी साझेदारी के एक बुनियादी सतून के तौर पर इकतसादी सिक्योरिटी की अहमियत के तई अपने मुश्तरका अहद का इआदा किया है। इकतसादी सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक के बारे में भारत जापान मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि इकतसादी सिक्योरिटी साझेदारी बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और मुतालिका मफादात पर मबनी है और इससे इस बात की अक्कासी होती है कि दोनों मुल्कों की खुशहाली, सलामती और इकतसादी मुस्तकबिल मजबूती के साथ बाहम मुंसलिक हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि यह ऐलानिया इस बात का भी मजहर है कि जदीद तर्ज पर ढाले गए आजादाना और खुला भारत बहरुल काहिल नीज मुख्तलिफ खित्तों में सिक्योरिटी और तरक्की के लिए बाहमी और जामे अकदामात के दरमियान तालमेल से तरफेन को इकतसादी सिक्योरिटी इश्तराक मजीद बढ़ाने के लिए मतलूबा जहत मिलती है। दोनों मुल्क पांच अहम शोबों में दो तरफा इश्तराक को मुस्तहकम करेंगे, जिनमें सेमी कंडक्टर, अहम मादनियात, इंफॉर्मेशन और मवासलाती टेक्नोलॉजी, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और दवासाजी के शोबे शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इंतखाबी कमीशन ने एक बयान में कहा है कि उसने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी चुनाव और दस्तखत करने के मजाज पार्टी के अहलकारों के बारे में दोनों हरीफ ग्रुपों के दावों और उनके जवाबी दावों के ताल्लुक से ममता बनर्जी और पार्टी की एक और लीडर रीता ब्रता बनर्जी को अलग अलग मुरासले भेजे हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि दोनों फरीकों के हिदायत दी गई है कि वो पीर को शाम 5:30 बजे तक अपने अपने जवाब पेश करें। पार्टी के तंजीमी ढांचे और उसके काम करने की अथॉरिटी के मामले पर तृणमूल कांग्रेस का तनाजा इंतखाबी कमीशन के सामने चला गया है। इस तरह के तनाजात में चुनाव निशान अलॉट करने से मुतालिक हुक्म के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके तहत इंतखाबी कमीशन हरीफ ग्रुपों के दावों, मुतालिका दस्तावेजात और दलाइल का जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला करता है। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात के सबब अपने वालिद साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शामिल नहीं होंगे। भारत में मौजूदा लीडर के नुमाइंदे आयतुल्ला हकीम इलाही के मुताबिक खतरा

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अगस्त से अनुमंडलीय और जिला अस्पताल से उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने के निर्देश दिए। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। और मौसम विभाग ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने 15 अगस्त से अनुमंडलीय और जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज और उच्च स्वास्थ्य संस्थान में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अनावश्यक रेफरल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और इसके लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। श्री चौधरी ने अस्पतालों में नर्सों की पदस्थापना पर विशेष ध्यान देने और उन्हें यथासंभव उनके गृह जिलों में पदस्थापित करने पर विचार करने के भी निर्देश दिए। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रदेश में विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है। पटना के अधिवेशन भवन में योजना की औपचारिक शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी मजदूर को आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं दिया गया तो सरकार उसे अपने कोष से बेरोजगारी भत्ता देगी। उन्होंने कहा कि अकुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी को 255 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये रोजाना कर दिया गया है। श्री कुमार ने कहा कि अकुशल मजदूरों का मस्टर रोल बंद होने से 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो बकाया राशि पर 0.05% प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मनरेगा की अव्यवस्थाओं और खामियों को दूर करने के मकसद से विकसित भारत जी रामजी योजना को लाया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को फायदा मिलेगा।
1: जिस तरीके से मनरेगा को भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया गया था, ये तमाम चीजों को खत्म करने की सोच के साथ और सही मायनों में जो लाभार्थी हैं उनको इस योजना से जोड़कर इसका लाभ मिले, इस सोच के साथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लंबे समय से इस योजना पे कार्य हो रहा था, इसको लाया गया है, इसको लागू किया गया है। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में

0: इसका लाभ भी देश की एक बड़ी आबादी को देखने को मिलेगा।
1: इस बीच केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात कर राजगीर में दो युवकों की हत्या और आरा में भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की जानकारी दी। श्री पासवान ने इन मामलों में निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने का आग्रह किया है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसके लिए स्वयं सृजित राजस्व जुटाने को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कार्यशाला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने, कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करने और वित्त आयोग के अनुदानों के प्रभावी उपयोग के लिए व्यावहारिक रणनीतियों का आदान प्रदान करने का मंच भी प्रदान करेगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्र सरकार से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए 1,120 करोड़ रुपए की मांग की है। श्री तिवारी ने इस संबंध में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य के लिए विशेष बजट के आवंटन से विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि गंगा नदी का कायाकल्प एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, वैज्ञानिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच लगातार सहयोग से यह महती कार्य किया जा सकता है। गंगा नदी के लिए बनाई गई एम्पावर्ड टास्क फोर्स की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री पाटिल ने यह बात कही। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि अब तक 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित लागत वाली 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 363 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 21,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। राज्य निर्वाचन प्राधिकरण ने 37 पैक्स चुनाव के लिए प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार 6 जुलाई को प्राथमिक कृषि साख समिति स्तर पर प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 8 जुलाई को जिला सहकारिता पदाधिकारी की ओर से सूची निर्वाचन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। दावा आपत्ति और अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया 23 जुलाई तक पूरी होगी। इधर पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। उपचुनाव में 3,79,000 मतदाता भाग लेंगे। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि उपचुनाव के लिए पटना सदर के भूमि सुधार उप समाहर्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। उपचुनाव के लिए 6 से 13 जुलाई तक नामांकन लिए जाएंगे। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कल से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यगत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
1: बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप आराम कर

0: श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
1: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जट्टा आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतर रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: मौसम विभाग ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ वज्रपात की आशंका है।
2: दिनांक 3 जुलाई राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर मॉनसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, बक्सर, सारण, वैशाली, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश होने से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीवान का जीरादेई सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रेलवे बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी है। बोर्ड के अनुसार 4098 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इधर बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट पद की कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 28 जुलाई को होगी। निगरानी जांच ब्यूरो ने शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग में तैनात अवर सचिव अमोद मिश्रा को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इधर पटना पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन और GST के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, कई पासबुक, 6 लाख से अधिक नकद और 7 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। शिवहर जिला प्रशासन ने शिवहर थाना अध्यक्ष सहित जिले के 4 थानों में नए थाना अध्यक्ष पदस्थापित किए हैं। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने नव पदस्थापित पुलिस कर्मियों को 24 घंटे के अंदर योगदान देने का आदेश दिया है। शेखपुरा जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 333A बरबीघा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का काम आज से शुरू हो गया है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रियंका कुमारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अतिक्रमण से यातायात संचालन, सड़क सुरक्षा और आम जन की परेशानियों को दूर करने के मकसद से यह कार्रवाई की जा रही है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 105 ग्राम मादक पदार्थ भी बरामद किया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट से भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा बिहार। भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, विधायक और अफसर नपेंगे। दैनिक जागरण ने राज्य में टोल टैक्स से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सड़कों की चौड़ाई के अनुसार लगेगा टोल टैक्स, अब तक 50 सड़कें चिन्हित। दैनिक भास्कर ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, बांकीपुर

से जन सुराज के पीके खुद लड़ेंगे चुनाव, भाजपा से नीलू रेस में सबसे आगे। प्रभात खबर लिखता है, नीट जेईई में बोर्ड परीक्षा के अंकों पर मिल सकता है 50% तक वेटेज। आज अखबार का शीर्षक है, पटना मेट्रो का मलाही पकड़ी तक परिचालन शुरू। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की होगी टीबी स्क्रीनिंग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अगस्त से अनुमंडलीय और जिला अस्पताल से उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने के निर्देश दिए। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज्य मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। और मौसम विभाग ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

0: ही बना लेते हैं। बेहतरीन रास्ता शुक्र करने का यह है कि ईमान का मजबूत होना। शैतान को भी एक बहुत बड़ी रुकावट कहा गया है कि जिसकी वजह से हम शुक्र अदा नहीं करते हैं। इंसान को चाहिए कि बुराइयों से बचें और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में हो जाएं, ताकि नेमत का इजाफा हो और उनकी वजह से कमाल तक जा पहुंचे। ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि अक्सर लोग जब चाहते हैं कि खुदा का शुक्र अदा करें, तो वो चाहते हुए या ना चाहते हुए बुखल से काम लेते हैं, और यही उनकी जहालत की दलील है। शुक्र की मकदार औलियाए किराम अलैहिस्सलाम से सीखना चाहिए। मिसाल के तौर पर, जब असीरों का काफिला करबला से चलता है, तो कोफ और शाम में उन बच्चों से सवाल किए जाते हैं। इस तरह जब फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया गया, तो जवाब में फरमाती हैं कि ऐसी हालत में भी वो अल्लाह का शुक्र करती हुई नजर आ रही हैं। हमें चाहिए कि हम भी ऐसी हस्तियों को अपने ऊपर नाफिज करें और उनकी तरह शुक्र अदा करें। हम भी कहीं अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के कतरों के बराबर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। शहदा के खून के बराबर अल्लाह का शुक्र, हर सांस आह के बराबर अल्लाह का शुक्र करने से अल्लाह ताला भी उसी तरह हमें सवाब अता करेंगे। शुक्र अदा करने की कैफियत और मकदार को समझना है तो अमीरुल मोमिनीन से सीखें। फरमाते हैं कि खुदाया, हम्द फकत तेरे लिए है हर उस चीज पर जो तुम चाहते हो, और हर उस चीज पर जो तुमने अता की, और हर उस चीज पर जिसमें तुमने आफियत बख्शी, और हर उस इम्तिहान में के जिसमें तुमने मुब्तला किया। ऐसी हम्द की जिसमें तेरी रजाइयत और अफजल तरीन हम्द तेरे लिए है। हजरत अपने इस नूरानी कलाम में हमें सिखा रहे हैं कि हम जब चाहते हैं कि कहीं अल्हम्दुलिल्लाह फकत अपनी नेमतों के लिए ना हो, बल्कि दूसरों की नेमतों के लिए भी अल्लाह की तारीफ करें।
1: अभी आप समाअत फरमा रहे थे बातें जिनसे जिंदगी सवरती है के तहत कनात और शुक्रगुजारी के मौजू पर यह मकाला निगार थी रेशमा नाज। सामईन, ज़िंदगी को अनमोल बनाने की तीसरी और सबसे अहम बात दूसरों की खिदमत करना है। ज़िंदगी उस वक्त बामानी बनती है जब हम अपनी ज़ात से बाहर निकलकर दूसरों के लिए कुछ करें। किसी का दुख दूर करना, किसी को इल्म देना, किसी की मदद करना, या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये सब वह आमाल हैं जो ज़िंदगी को अनमोल बना देते हैं। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वह है जो दूसरों के लिए मुफीद हो। तो आइए सामीन, अब समाअत फरमाएं। नातिया कलाम पेश कर रहे हैं मोहम्मद परवेज़ अख्तर।

रौज़े अतहर से छन कर आए जो, रौज़े अतहर से छन कर

तेरी चौखट से मैं उठ जाऊं ये मुमकिन ही नहीं, जब तलक मिल नहीं जाता मुझे सदका तेरा। अभी आप समाअत फरमा रहे थे नातिया कलाम, पेश कर रहे थे मोहम्मद परवेज़ अख्तर। सामईन, ज़िंदगी को अनमोल बनाना है तो अपनी सेहत का ख्याल रखना, तालीम का उसूल, अखलाकियात की पासदारी और ख़ानदान के साथ कीमती वक्त गुजारना भी ज़िंदगी को संवारने के अहम ज़राए हैं। आप अपनी सलाहियतों को पहचानें और उनको बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो लोग अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं वह ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं।

ज़िंदगी की असल खूबसूरती उसकी फ़ानी नौइयत है। हम सबको एक न एक दिन ये दुनिया छोड़नी है, इसलिए इस मुख्तसर वक्त को हमें इस तरह गुजारना चाहिए कि जब हम दुनिया से जाएं तो लोग हमें दुआ के साथ याद करें। अपने अमाल को ऐसे करें कि वह दूसरों के लिए मशाल राह बने, नेकियां कमाएं, लोगों के दिलों में जगह बनाएं और अपनी ज़िंदगी को एक रोशन मिसाल में तब्दील करें।

ज़िंदगी को अनमोल बनाने का मतलब सिर्फ ऐशो इशरत नहीं, बल्कि ये खुद शनासी, मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत का रास्ता है। हर दिन को गोया आखिरी दिन समझकर गुजारें, मोहब्बत बांटें, मुआफ़ करें और आगे बढ़ें। इसी में कामयाबी है। अपनी ज़िंदगी को इस काबिल बनाएं कि वह न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक अनमोल सरमाया हो जाए।

आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडी वेव 483.1 मीटर अर्थात 620 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्मी गानों का कार्यक्रम रसमंजरी।

श्रोताओं, रसमंजरी कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं ज्योति नूरा के गए इस गाने के साथ, जिसे हमने लिया है तनुवेट्स मनो फिल्म से। तनुवेट्स मनो रिटर्न फिल्म का ये गाना है, जिसे लिखा है राजशेखर ने और संगीत कृष्णा का है।

लीजिए सुनिए, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का ये गाना श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी, शेखर रविजैनी और उदित नारायण की आवाज़ में, अनविता दत्ता के बोल और संगीत है विशाल शेखर का।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं रसमंजरी और कार्यक्रम में लीजिए पेश है अगला गाना सावरिया फिल्म से। अलका याग्निक की आवाज में लीजिए सुनिए ये गाना।

जब वी मेट, इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। इस गाने को हमने लिया है एनिमल फिल्म से। गरिमा के बोल हैं और संगीत है श्रेय

श्रोताओं, इस गाने के साथ ही रसमंजरी का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं अनुपमा शरण की आवाज़ में ये भजन।

0: अनुपमा शरण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे भजन।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, द डर्टी पिक्चर फिल्म से। विशाल शेखर ने इस गाने को कंपोज किया है और गीत के बोल हैं रजत अरोड़ा के।

आइए सुनते हैं अगला गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में परिणीता फिल्म से। इस गाने को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

आइए सुनते हैं अगला गाना लुटेरा फिल्म से, मोनाली ठाकुर की आवाज़ में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 11 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। एक संदेश के बाद कार्यक्रम का अगला भाग जारी रहेगा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और चलिए कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं अगला गाना हरिहरन और अलका याग्निक की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है गुरु फिल्म से। इस गाने को लिखा है गुलजार ने और संगीत है AR रहमान का।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल

0: जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अंतराल से पूर्व श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो घड़ी में 12 बजने को हैं। समय है बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में हम भोजपुरी लोकगीत सुनवा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए सत्येंद्र कुमार के गाए कुछ लोकगीत।

0: अभी आपने सतेंद्र कुमार के गाए लोकगीतों का आनंद लिया। कार्यक्रम में एक अंतराल लेंगे, सुनवाएंगे कुछ और लोकगीत।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कमलेश पासवान के गाए लोकगीतों का आनंद लिया। हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला प्रसारण आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर।

0: आकाशवाणी पटना के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर पंकज कुमार। आप पटना के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन हैं। श्रोताओं को हम बता दें कि आज का हमारा विषय है विभिन्न प्रकार के जोड़ों के दर्द और उपचार। तो डॉक्टर साहब से सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि लोगों के शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जोड़ होते हैं उनमें किन-किन प्रकार के दर्द होते हैं, हम कैसे पहचाने और उसके क्या तरीके हैं?
1: नॉर्मली जो होता है दर्द, जो ज्वाइंट का पेन हो या गर्दन का दर्द हो या कमर का दर्द हो, ये कॉमनली जो होता है, जैसे गर्दन का दर्द हुआ, ड्राइविंग, बाइक ड्राइविंग ज़्यादा कर रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन टीवी पे बैठे हुए हैं, सिस्टम पे बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, उस कंडीशन में नेक पेन, बैक पेन कॉमनली होता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में नी पेन भी ज़्यादा होगा। एक ही पोस्चर में लॉन्ग ड्यूरेशन बैठेंगे तो नी पेन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उस पोस्चर में करेंगे क्या, जैसे आधा घंटा काम कर रहे हैं तो आधा घंटा के बाद दो एक दो मिनट के लिए उठ के खड़े हो जाएंगे, थोड़ा घूम फिर के फिर काम करेंगे तो नी पेन, बैक पेन और गर्दन का दर्द कम हो जाएगा। अब रही कितने टाइप का जोड़ों का दर्द होता है, तो पहला कॉमनली जो होता है इल्डरली में, मेल और फीमेल जो हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको कहते हैं, नी पेन ज़्यादा होता है, समझे,
0: घुटनों में
1: घुटनों में,
0: जी
1: घुटनों का दर्द कॉमनली होता है। एक होता है ट्रॉमेटिक, कभी तो किसी तरह से माइनर ट्रॉमा हुआ उसको नेगलेक्ट कर दिए, माइनर बोन इंजुरी हुआ, लिगामेंट इंजुरी हुआ उसको नेग्लेक्ट कर दिए लॉन्ग ड्यूरेशन, तो नी पेन हो जाए, ट्रॉमेटिक होगा, आर्थराइटिस। एक होता है रूमेटिक पेन, ये गठिया के जोर, लोग परेशान रहते हैं।
0: जी
1: तो ये सारे दर्द को पहचानना पड़ेगा, इसमें कौन कौन सा दर्द होता है। गठिया के दर्द में मल्टीपल ज्वाइंट, स्मॉल ज्वाइंट, हाथ के जोड़ों का दर्द, नी ज्वाइंट।

0: केमिकल जो है, और सुबह सुबह जो है ना मुट्ठी टाइट रहने का चांस रहता है, उस कंडीशन में गठिया रोग होता है। लेकिन अपने मन से कुछ दवा लेंगे नहीं, इसमें डॉक्टर को दिखा के ही लेंगे। और रही बच्चों में दर्द, एक होता है एडल्ट में, बच्चों में, तो बच्चों में कॉमनली क्या होता है, ओवर यूज, जैसे बच्चे ज़्यादा खेलने लगते हैं तो ओवर यूज के चलते भी बच्चों में ज्वाइंट नी पेन होता है। और बच्चों में और दूसरा कारण क्या, ग्रोइंग, बच्चों फास्ट ग्रो करता है, उस कंडीशन में भी ज्वाइंट पेन होता है। तो उसके लिए आइस कंप्रेशन 2 से 3 बार देंगे तो आराम हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ ज़्यादा एक सिंपल पारास्टामोल दे सकते हैं, अगर परसिस्टेंट पेन हुआ तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएंगे।
1: जी, श्रोताओं को हम बताते चलें कि आप हमारे फ़ोन नंबर 0612-220-2561 और 0612-220-2562 पर फ़ोन करके हमारे डॉक्टर साहब से जोड़ों के दर्द के बारे में और उसके उपचार के बारे में पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस किस प्रकार के जोड़ों के दर्द होते हैं, तो इसका उपचार मतलब धीरे धीरे करके घुटनों के दर्द में या ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑर्थोराइटिस होता है, तो इसका उपचार कैसे किया जाए और शल्य चिकित्सा की आवश्यकता कब पड़ती है? उधर से इशारा हो रहा है कि एक श्रोता हमें फ़ोन कर रहे हैं। जी नमस्कार, हेलो डॉक्टर, मैं आपका स्वागत है।
2: जी धन्यवाद
1: जी अपना नाम बताइए।
2: जी। मैं प्रेम कुमार बोल रहा हूँ
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी। मैं बोल रहा हूँ गर्दनीबाग पटना से।
1: जी अपने सवालों को डॉक्टर साहब से पूछें कृपया।
2: डॉक्टर साहब, जानना ये है कि पिछले कुछ महीनों से बाहों में एकदम पिन पॉइंटेड दर्द रहता है, दोनों बाह में, और कभी कभी हाथ उठाने से झटका सा लगता है। तो ये एक चिंता का कारण हो गया है कि क्या समस्या है, कैसे इसका इलाज हो।
0: आपका एज कितना हुआ?
2: जी 50।
0: 50। कभी चोट भी लगी थी?
2: नहीं, कोई चोट नहीं लगी जी,
0: हाथ में झनझनी भी हो रहा है?
2: कभी कभी झटका सा लगता है।
0: हाँ। और ये हाथ में पेन रेडिएट करता है, हाथ से, गर्दन से लेके हाथ में दर्द
2: जी जी
0: होता है?
2: जी पहले नहीं हो रहा था, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से हो रहा है।
0: हाँ, टिंगलिंग सेंसेशन जैसे हाथ में है, तो ये आपको गर्दन की दर्द से हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है ये पेरी अर्थराइटिस, जिसको कहते हैं फ्रोजन शोल्डर, उससे होता है। लेकिन आपने बताया कि गर्दन में भी दर्द है, हाथ में झनझनी भी हो रहा है, तो ये नस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने मन से दवा ना लें, एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन से कंसल्ट करें, बेटर होगा, और उसके बाद ही एक्सरसाइज या मेडिसिन लें।
2: जी डॉक्टर को एक बार दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको मस्कुलर पेन हो सकता है। 1 महीने की दवा उन्होंने दी, कुछ पेन किलर्स थे, तो आराम तो 2 महीने लगभग हुआ, लेकिन दवा जब से छोड़ी है फिर से शुरू हो गया है।
0: हाथ में टिंगलिंग कंटिन्यू है, झंझनी कंटिन्यू है,
2: झिनझिनी कंटिन्यू नहीं है, कभी कभी आता है।
0: कभी कभी आता है। तो और आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से दिखाया था कि स्पाइन सर्जन से?
2: जी ऑर्थोपेडिक।
0: बेटर होगा एक बार स्पाइन सर्जन को कंसल्ट करें,
2: जी
0: ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन।
2: जी धन्यवाद डॉक्टर।
1: जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस जो भी बीमारी होते हैं घुटनों के या जोड़ों के, तो उसमें शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी की आवश्यकता कब पड़ती है?
0: घुटनों के दर्द जैसे एल्डरली मेल और फीमेल जो हुआ, ये डिजेनरेटिव कहते हैं, ओल्ड एज में होता है, तो इमिडिएटली सर्जरी की जरूरत होती नहीं है।
1: जी
0: पहले प्रिकॉशन लेना है, कहने का मतलब जैसे एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से सीख लेंगे, अपने घर में रेगुलर करेंगे। ग्राउंड लेवल एक्टिविटी करने मतलब नीचे बैठ के कोई भी काम नहीं करेंगे, जो पूजा पाठ करना हो या नमाज पढ़ना हो या टॉयलेट, कमोड का टॉयलेट, खाना में चेयर लेवल एक्टिविटी करें, तो उससे बहुत ही आराम रहा। अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर लॉन्ग ड्यूरेशन हो रही है, तो जैसे राइट नी में हुआ तो लेफ्ट नी में स्टिक लेके चलेंगे, लेफ्ट में हुआ तो राइट नी में चलेंगे। और आइस कंप्रेशन, जैसे गर्मी के मौसम में आइस कंप्रेशन दिन में 3 बार 4 बार करेंगे तो अच्छा लगेगा। और रही ठंड के मौसम में गर्म पानी से सेकेंगे तो वो बेटर अच्छा लगेगा, दिन में 3 बार।
1: जी, कुछ और उदाहरण देते हुए हम प्रश्न पूछना चाहेंगे। जैसे कोई लोग भारी वजन उठाते रहते हैं तो उसमें भी कमर दर्द हो जाता है,

0: तो उसका क्या इलाज है और लोग किस तरीके से इलाज करें? उसके अलावा आप कितने लोग सोते रहते हैं एक ही तरफ करके हाथ सोते हैं, तो उसमें भी हाथ वगैरह दर्द करने लगता है, तो उससे क्या समस्याएं होने की संभावना होती है और कैसे
1: होती
0: उसमें?
1: क्या है, कमर में जो होता है मेरुदंड में दो हड्डी के बीच में एक डिस्क होता है, समझे,
0: जी
1: डिस्क जिसे बोलते हैं, डिस्क गाड़ी का जैसे शॉकर होता है उसे डिस्क शॉकर की तरह काम करते हैं, और उसके पीछे में नस होती है। कोई भारी सामान नहीं उठाए तो सडनली क्या होता है, समटाइम्स नॉट ऑल द टाइम्स डिस्क बाहर निकल के नर्व पे कंप्रेशन करता है, तो आपको पैर में टिंगलिंग सन, मतलब पैर में खिंचाव के दर्द हो शुरू हो जाएगा, चलना लॉन्ग ड्यूरेशन दिक्कत हो जाएगा। अगर पैर में खिंचाव नहीं है तो कने मतलब ये मसल्स पुल हुआ, समझे, अगर पैर में खिंचाव आ रहा है, पैर में झिनझिनी हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो नस का प्रॉब्लम है। उस स्थिति में ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन से कंसल्ट करेंगे। अगर केवल बैक पेन हो रहा है तो ये मसल्स पुल हुआ, समझे ना, मसल्स पुल में आप थोड़ा 1 से 2 दिन, 2 से ज्यादा दिन रेस्ट नहीं लेना, दो मैक्सिमम 2 टू रेस्ट लेंगे, मसल्स रिलैक्सेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन से दिखा के खाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर सीवियर पेन हो उस कंडीशन में मसल्स रिलैक्सेंट ले, थोड़ा रेस्ट ले तो आराम रहेगा, एक्सरसाइज थोड़ा सा पेन रिलीव हो 25-30% रिलीव होने के बाद ही करेंगे, अगर एक्यूट कंडीशन में एक्सरसाइज करेंगे तो दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा।
0: अच्छा, इसी क्रम को और बढ़ाते हुए हम पूछना चाहेंगे कि जो हड्डियों में विभिन्न प्रकार के संक्रमण भी हो जाया करते हैं, तो वो क्यों होता है और उसका निदान कैसे किया जा सकता है?
1: यूजली जो होता है हड्डियों में कॉमनली जो एज ए ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन होता है, कॉमनली जो होता है स्पाइन बोन में ट्यूबरक्लोस का इन्फेक्शन है, टीबी जिसे बोलते हैं, टीबी का इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। दूसरा तो होता है पायोजेनिक, जो लेस लाइकली रहता है कि इन्फेक्शन होने का, तो दो ही टाइप का इन्फेक्शन कॉमनली टीबी होता है। टीबी में अगर लॉन्ग ड्यूरेशन बैक पेन हो और उसके बाद खाने में रुचि नहीं जगे, वेट लॉस हो रहा, यूजली पेन रात में ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर को दिखाए, ट्यूबरक्लोसिस चांस रहता है। इसमें वेट भी लॉस होता है, खाने का मन नहीं करेगा, आप पेन सीवियर बैठ नहीं पाएंगे, ये टीबी होता है। टीबी में 100% क्योरेबल है मेडिसिन से, अगर आप शुरू में दिखाएं तो। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन इसको निग्लेक्ट करेंगे, पैर में वीकनेस हो गया, पक्षाघात हो सकता है, तो उसको उस कंडीशन बाद में आपको ऑपरेट करना पड़ सकता है स्पाइन सर्जन के द्वारा।
0: जी, कभी कभी ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब कि लोगों को जब चोट लग जाता है या कमर में ही मोच हो गया अथवा पैरों में मोच हो गया, तो वो डॉक्टर से सलाह लेना उचित नहीं समझते और वैसे ही रहने देते हैं, सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा,
1: नहीं
0: मगर
1: नहीं
0: वो फूलते हुए सूजन होते हुए धीरे धीरे
1: सुझा
0: फिर
1: और
0: और
1: ज्यादा
0: बढ़ जाता
1: दिक्कत
0: है।
1: होता है।
0: तो क्या इस पर, मतलब अगर जो घर में भी बहुत सारे लोग हल्दी वगैरह का इस्तेमाल करके, हल्दी चूना का इस्तेमाल करके ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे?
1: जैसे यूजली जो कॉमनली एंकल स्प्रेन जो इसको बोलते हैं, इसमें हड्डी में कुछ नहीं होता है, एंकल के अराउंड या फुट के अराउंड जो लिगामेंट होता है उसमें इंजुरी हो जाता है, माइनर इंजुरी होता है। तो फुट जो होता है वेट बेयरिंग बोर है, इससे क्या, अगर इसको निग्लेक्ट करेंगे, हमको तो हड्डी एक्सरे कराया, हड्डी में कुछ नहीं मिला दर्द, लेकिन स्प्रेन बहुत ही पेनफुल होता है।
0: उधर से इशारा हो रहा है कि एक श्रोता हमें फोन
1: हेलो
0: कर रहे हैं।
1: हेलो
0: जी, आपका नाम क्या है?
1: हेलो डॉक्टर, हाँ
0: मेरा
1: बोलिए।
0: नाम अजय कुमार हुआ,
1: जी,
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हम जहानाबाद से बोल रहे हैं।
0: जी बताइएगा, आपकी समस्या क्या है? डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
1: हाँ, मेरी माता जी को 1 महीने से एक पैर में सूजन है और थोड़ा दर्द भी रहता है।
0: सूजन कहाँ से, पूरा नी से लेके एंकल तक, होल लेग में है कि
1: नहीं, सिर्फ नीचे तलवा तलवा के पास है जो दिखता है।
0: एंकल ज्वाइंट के अराउंड
1: और
0: में है,
1: हाँ
0: एंकल ज्वाइंट जो एंकल ज्वाइंट के
1: जी,
0: अराउंड
1: और
0: है।
1: आगे में दर्द, चलने में थोड़ा दर्द करते हैं और नस में जब चलती है तो पूरा नस में पेन होता है।
0: एक ही लेग में
1: हाँ, एक ही साइड, लेफ्ट साइड ही।
0: कमर में भी दर्द हो रही है,
1: जी
0: कमर में
1: सर,
0: दर्द,
1: हाँ कमर में भी चलती है तो इधर 10 दिन से कह रही है कि दर्द है।
0: हाँ, और पैर में झिनझिनी भी हो रही है,
1: जी सर,
0: हाँ, तो इसके कारण हो सकता है। यूली कितना दिन से हो रहा है,
1: 1 महीना हो गया सर।
0: 1 महीना से? आपने डॉक्टर ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन को दिखाए थे?
1: हाँ दिखाया था सर, दवा दिया है तो पेन कम हुआ है, नर्व
0: लेकिन
1: का पेन कम हुआ है,
0: टिंगलिंग
1: लेकिन
0: टिंगलिंग
1: सर
0: नहीं जा रहा है, झिनझिनी नहीं जा रही है,
1: नहीं, सर नहीं जा
0: ना
1: रही, सूजन नहीं जा।

0: रहा सर।
1: सूजन नहीं जा रहा है। सूजन का दो तीन कारण हो सकता है। पहला, एक ही साइड में है तो समटाइम्स
0: जी सर,
1: यूरिक एसिड बढ़ने से भी हो सकता है,
0: जी
1: एक ही पोस्चर में लॉन्ग ड्यूरेशन बैठने से भी हो सकता है। और दूसरी बात, समटाइम्स आपने बोल रहा है कि कमर में दर्द है, पैर में झुनझुनी भी है, हो सकता है कमर का नस दबी हुई हो तो उससे भी हो सकता है। तो बेटर होगा
0: ओके।
1: एक यूरिक एसिड का टेस्ट करा के देख लीजिएगा, अगर उससे नॉर्मल आ रहा है तो ऑर्थोपेडिक
0: नहीं सर, वो
1: एस,
0: तो बढ़ा हुआ आ रहा है सर।
1: हाँ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो दवा खानी पड़ेगी और डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना तो डाइट कंट्रोल,
0: जी
1: डाइट
0: सर,
1: में क्या हुआ, हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन में जैसे मटन हुआ, रेड कलर का जो भी मीट हुआ, कबूतर का मीट हुआ, गोट मीट हुआ, ये रेड कलर का मीट नहीं करेंगे, पनीर नहीं खाएंगे, पालक नहीं खाएंगे, मशरूम हुआ, अंडा का पीला पोर्शन नहीं खाएंगे, प्रोटीन रिलेटेड, हाई प्रोटीन रिलेटेड चीज नहीं खाएंगे। तो
0: लाल वाल भी नहीं खाना है सर। जी
1: दाल कम कर देंगे, सब चीज बंद ही करने से कैसे काम चलेगा।
0: सर,
1: हाई प्रोटीन डाइट कम करेंगे, टमाटर हुआ, ये सब, मटन तो खाना ही नहीं समझिए, अल्कोहल नहीं लेना है, अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल ये सब के अवॉइड कंप्लीटली, रेड मीट, टमाटर, ये सब, पनीर, ये सब अवॉइड करेंगे, नहीं तो फिर पेन शुरू हो जाएगा, और दवा यूरिक एसिड के लिए लेते रहेंगे। ओके
0: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम ये पूछना चाहेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के दर्द हैं हड्डियों में, तो उनसे हम बचें कैसे, सावधानी किस तरीके से बरतें, अपनी जीवन शैली को कैसा बनाए रखें, खान पान की शैली को कैसा बनाए रखें। अच्छा, एक फिर श्रोता का फोन आ रहा है, ज़रा बात करते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी, अपना नाम और कहाँ से
2: नमस्कार।
0: बोल
2: मैं
0: रहे हैं?
2: तारकेश्वर, तारकेश्वर
0: जी
2: बोल रहा हूँ सर, बोरिंग रोड से जी।
0: हाँ जी,
2: हेलो
1: बोलिए।
2: डॉक्टर, मैं मुझे बात करना था सर।
1: हम डॉक्टर पंकज बोल रहे हैं, ऑर्थोपेडिक स्पाइन
2: सर
1: सर्जन।
2: नमस्कार। सर
1: नमस्कार,
2: सर हमको एक प्रॉब्लम के लिए आपसे डिस्कस करना था
1: हाँ बोलिए।
2: सर। ये हमको मतलब ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम है सर,
1: हाँ, सर्वाइकल,
2: और जी
1: गर्दन, गर्दन में दर्द हो रही है, और क्या हो रही है?
2: सर वो 5-6 और 6-7 मतलब गैप स्लाइटली रिड्यूस्ड आता है सर एक्सरे में,
1: हाँ एक्सरे में,
2: और हमको सर दर्द नहीं होता है सर। दर्द का प्रॉब्लम नहीं है,
1: हाँ
2: मूवमेंट का ही प्रॉब्लम नहीं है सर।
1: हाथ में,
2: हमको जैसे बिछावन पे सोते हैं ना, तो
1: हाँ
2: करवट जब बदलते हैं तो चक्कर मतलब कुछ सेकंड के लिए, और
1: हाँ हाँ
2: 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए, यही प्रॉब्लम है सर
1: और
2: हमको।
1: हाथ में झिनझिनी भी दे रही है,
2: नहीं, हाथ में झिनझिनी भी नहीं होता है सर,
1: हाँ
2: लेकिन और ना दर्द होता है गर्दन में, ना मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है। सिर्फ हमको सर जब चलो करवट लेते हैं तो ये कुछ सेकंड के लिए, और वो भी चक्कर जैसे 2-3 दिन के लिए हुआ प्रॉब्लम, फिर महीनों तक गायब रहा, फिर 2-3 दिन के लिए आ जाता है सर।
1: तो
2: जी
1: बेटर
2: सर,
1: होगा ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन को दिखा दें, स्पाइन,
2: जी
1: स्पेशली
2: जी
1: ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन को दिखाएंगे। समटाइम्स क्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस में
2: जी सर,
1: डिस्क स्पेस रिड्यूस हो जाता है, नस पे माइनर प्रॉब्लम रहता है तो
2: जी
1: चक्कर
2: जी
1: आने का ज़्यादा चांस रहता है।
2: जी
1: अगर हो
2: जी जी
1: सके तो MRI करा के दिखा लें, और नस पे प्रॉब्लम
2: जी
1: है, अगर हाथ में दर्द नहीं है तो समझिए लेस लाइकली रहता है, और चक्कर के
2: जी
1: लिए
2: जी
1: एक दवा होती है वो प्रिस्क्राइब कर देंगे स्पाइन सर्जन, और रेगुलर
2: जी
1: खाएंगे
2: सर,
1: तो आराम रहेगा, और
2: जी
1: थोड़ा
2: जी
1: सा दर्द कम होने के बाद गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे कहीं, मतलब इस
2: जी जी
1: सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है थोड़ा सा एज बढ़ जाने से होता है, तो ये गर्दन
2: जी
1: का
2: सर,
1: एक्सरसाइज करेंगे तो आपका चक्कर भी, दर्द भी, सारे चीज आराम रहेंगे, लेकिन
2: जी जी
1: एक्यूट
2: जी
1: कंडीशन में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मतलब सीवियर पेन हो उस कंडीशन में
2: जी
1: एक्सरसाइज नहीं करेंगे, थोड़ा दर्द आराम होने के बाद
2: जी
1: करेंगे तो
2: जी
1: एक्सरसाइज तो आपको रिलीफ मिलेगा।
2: जी जी
1: आपको एक प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन को दिखाएं,
2: जी और कोई मतलब दवा सर आप बताते हैं हमको तब तक। डिजिटल एक्सरे कई बार कराए हैं सर, हमेशा एक ही रिपोर्ट आता है सर।
1: हेलो इंडिया, इस पर दवा बताना ठीक नहीं रहता बिना देखे हुए, एक बार देख
2: जी,
1: लेते तो ये
2: अच्छा, ठीक ठीक है सर,
1: ठीक
2: ठीक है सर, ठीक
1: ठीक
2: है, थैंक यू थैंक
1: ओके
2: यू थैंक यू।
0: जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि खान पान एवं जीवन शैली में किस प्रकार से सुधार करें ताकि ये हड्डियों और जोड़ों का दर्द हो ही नहीं, या हो तो बहुत कम हो।
1: कम हो, जैसे एज रिलेटेड, घुटनों का दर्द हुआ, कमर का दर्द हुआ, गर्दन का दर्द हुआ, ये सब दर्द रेगुलर व्यायाम 10 से 15 मिनट सुबह शाम करेंगे, नॉर्मल जो होता है जो करेंगे तो आपको गर्दन का दर्द, जो ऑफिशियल काम जो सिस्टम पे ज़्यादा कर बैठे हुए रहते हैं, तो उस

0: सबको, जैसे बाइक ज़्यादा ड्राइव करते हैं उस कंडीशन में, ड्राइविंग ड्राइवर लोग जो है ड्राइव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन लोगों को रेगुलर 10 से 15 मिनट सुबह शाम व्यायाम करेंगे तो ये 99% चांस रहता है कि ये दर्द नहीं बढ़ेगा। अगर इसको निग्लेक्ट करेंगे तो क्रोनिक पेन होगा और प्रॉब्लम होती जाएगी। रही खान पान की बात, हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करेंगे, जिसे जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसमें हाई प्रोटीन डाइट जैसा मटन हुआ, अल्कोहल को नहीं के बराबर छुएंगे, नहीं लेना है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो छूना ही नहीं है, नहीं
1: जी,
0: तो अभी पिएंगे सुबह में दर्द शुरू, सीवियर पेन,
1: वैसे भी बिहार
0: प्रोटीन
1: सरकार ने बिहार
0: ऐसे
1: में बंद ही कर
0: बंद ही
1: रखा
0: कर
1: है,
0: रहे हैं,
1: तो
0: तो
1: उचित भी
0: अल्कोहल
1: रहेगा।
0: नहीं लेंगे तो अच्छी बात है, कंप्लीटली छूना ही नहीं है तो इसमें। और नी एक्सरसाइज का, जैसे नी का पेन हुआ, आर्थराइटिस पेन हुआ, इसको डिले कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते, एजिंग प्रोसेस है, उसको रोक कोई नहीं रोक सकता है,
1: जी
0: इस प्रोसेस को आप रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए रेगुलर व्यायाम करेंगे, घुटनों का ग्राउंड लेवल एक्टिविटी कम करेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये कम होगा। और सीवियर कंडीशन में अगर पेन हो तो डॉक्टर्स दिखा के कुछ मेडिकेशन ले सकते हैं।
1: जी तो अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं, आने वाली 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, तो इसी अवसर पर हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जोड़ों के दर्द हैं, उसके उपचार में योग, आसन एवं व्यायाम की कितनी भूमिका है, और आयुर्वेदिक उपचार जो ग्रामीण स्तर पर किया जाता है, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि हल्दी चूना का मिश्रण करके लेप लगाया जाता है, तो ये सब कितना कारगर होता है और कितना करना चाहिए?
0: देखिए हम तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं नहीं कि आपको
1: जी
0: हल्दी चूना के बारे में बताएंगे,
1: जी
0: हम एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उसके बाद हम नहीं डिस्कस करेंगे तो अच्छा है। लेकिन
1: जी
0: योग बहुत ही अच्छी चीज है, सुबह शाम नॉर्मल आदमी, जो नॉर्मल आदमी है, ऑफिस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, अगर योग कर रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज है। आपको इसको बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, सारे जॉइंट पेन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, जो नॉर्मल है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन आर्थराइटिस हुआ है कभी, रूमेटिक फीवर, जन्मजात जैसे रूमेटॉइड है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, तो ये हेरिडेटरी है, उसमें आप रोक सकते हैं, समझे ना। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, ज्वाइंट सब फ्यूज होने लगता है, तो कोई भी मेडिसिन कारगर नहीं होता, कुछ भी मेडिसिन अभी तक एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कारगर नहीं है।
1: जी
0: उसमें योग, एक्सरसाइज, स्विमिंग हुआ, जैसे हुआ साइकिलिंग हुआ, रेगुलर कोई भी तरह का इंडोर आउटडोर गेम करेंगे तो आपको एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन रिलीव हुआ। पेन कितना दिन खाएंगे, पेन किलर कितना दिन खाएंगे, तो संभव नहीं है। आप एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आप डिले कर सकते हैं विथ एक्सरसाइज, योगा से। अगर सीवियर ज्वाइंट फ्यूजन हुआ तो लास्ट में सर्जरी, ज्वाइंट सर्जरी होता है, वो बाद की बात है। स्पेशली एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है यंग एज में, यंग मेल में होता है, 20-25 साल में, जोड़ों का दर्द शुरू हुआ, सीवियर पेन हो रहा है, धीरे धीरे क्या स्टॉपिंग पोस्चर करने में तो आगे झुकने लगते हैं, बैक से ज्वाइंट फ्यूज हो जाता है।
1: जी
0: तो एक्सरसाइज ही मूल मंत्र है उसके लिए, एंकोलाइजिंग, कोई भी मेडिसिन काम कर रहा है। अभी तक तो कोई मेडिसिन बना ही नहीं है कि आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेन को ठीक करिए, पेन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक नहीं होगा ये।
1: अच्छा, तो यहाँ पर हम यह भी पूछना चाहेंगे कि सामान्यतः आपको हड्डियों और जोड़ों के दर्द में फिजियोथेरेपी की भी प्रिस्क्राइब
0: ना,
1: सलाह दी जाती है,
0: हम लोग
1: तो
0: यूजली ट्रीटमेंट दे के फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, एक्सरसाइज सिखाने, समता हीट थेरेपी देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, बैक पेन, नेक पेन, नी, उसमें भी बहुत राहत मिलती है। उसके बाद नी पेन जो के लिए भी जो है, शोल्डर पेन हुआ, ये इसमें पहले अल्ट्रासोनिक मसाज हुआ, टेंस हुआ, बहुत तरह की हीट थेरेपी होता है, डिफरेंट फिजियोथेरेपी डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सा हीट थेरेपी, इस सिंपल गर्म पानी से नहीं सेकना है, डिफरेंट टाइप का हीट होता है, अल्ट्रासोनिक मसाज होता है, टेंस होता है, IFT होता है, तो ये डिसाइड फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी एक साइंस है, ये इसी नहीं कि हाथ चलाना, इसे साइंस है, फिजियोथेरेपिस्ट का एडवाइस लेके ही कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी हीट थेरेपी लेंगे तो वो बेटर रहेगा।
1: तो ये फिजियोथेरेपी की सुविधा क्या सरकारी अस्पतालों में, सभी सरकारी
0: हाँ,
1: अस्पतालों
0: सब
1: में
0: सब
1: उपलब्ध
0: जगह सरकारी अस्पताल में हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, प्राइवेट क्लिनिक भी है, लेकिन एडवाइस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से लेके ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे।
1: है? जी, तो अभी हम जैसे आर्थराइटिस ही होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया,
0: हाँ, आज तो
1: स्पॉन्डिलाइटिस हो
0: आया
1: गया,
0: एक
1: इसका

0: थोड़ा सा विवरण बता दीजिए, मतलब क्या क्या है, कहाँ पे दर्द होता है, घुटनों में होता है, जोड़ों में होता है, ये बता दीजिएगा।
1: ऑस्टियोपोरोसिस वाले में सब चीज तो ज्वाइंट के बारे में बताया। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है यूजुअली इल्डरली फीमेल का, मतलब इल्डर फिर आफ्टर मीनोपॉज, महामारी जो बंद हो जाती है उसके उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है। जो क्रोनिक अल्कोहलिक होता है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस, मेल ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली लोग जानते हैं कि केवल फीमेल में ही ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन आजकल मेल ऑस्टियोपोरोसिस भी प्रीडोमिनेटली होते जा रहा है। जो क्रोनिक अल्कोहलिक है 25-30 बरस के बच्चों में भी ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो रहा है, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप का अल्कोहल, ये टोबैको, इसमें भी बोन का लॉस जल्दी शुरू होना शुरू होता है। जैसे इल्डरली फीमेल हुआ, मीनोपॉज हुआ, कन महामारी बंद हो जाता है, तो उसमें उस कंडीशन में शरीर में पूरा कड़वी, इधर दर्द हुआ, इधर दर्द हुआ, हाथ में पैर में झिनझिनी, हेडेक, नींद नहीं आना, हाथ में जलन, पैर में जलन, ये ऑस्टियोपोरोसिस का यूजुअली लक्षण हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी क्या होता है, बोन कम हो जाता, बोन का घनत्व जो होता है उसमें कम हो जाता है, बताशा एक
0: हड्डियों के जो अंदर का जो रहता है
1: घनत्व जो होता है वो कम
0: जी
1: होता है। बताशा एक मिठाई जानते होंगे,
0: जी जी जी
1: बताशा जो मिठाई होता है जैसे ऐसे देखने से कितना सॉफ्ट लगता है, जस्ट छुएंगे तो क्या होगा, फट टूट जाता
0: भुरभुरा
1: है,
0: हो जाता है
1: भुड़बुड़ा हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में बोन भी उसी तरह भुड़बुड़ा हो जाता है, थोड़ा सा भी धक्का मार दें कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाएं और हाई रिच कैल्शियम फूड लें, जैसे हुआ सिंपली जो हम लोग सिंघारा जो छठ में यूज करते हैं, तो सिंघारा का पाउडर या आटा जो होता है उसमें हाई रिच कैल्शियम होता है,
0: सिंघाड़ा
1: छठ
0: जो
1: में जो यूज करते हैं
0: तालाबों में होता
1: तालाब
0: है
1: में होता है,
0: जी
1: उसका जो पाउडर होता है आटा नॉर्मल गेहूं में मिला के रोटी सबको घर में सबको, सो हाईली रिच कैल्शियम होता है। सहजन जो होता है सीजनल सहजन जिसको होता है ड्रम स्टिक इंग्लिश में बोलते हैं सहजन,
0: जी जी
1: या मिथिलांचल में मुनगा बोलते हैं,
0: हाँ हाँ जी जी जी
1: तो वो सब सीजनल में लेंगे तो हाई रिच कैल्शियम रहता है। अगर नॉन वेज खाते हैं तो छोटी छोटी मछली जो होती है उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, तो वो
0: छोटी
1: लेंगे,
0: मछलियों में खास
1: छोटी
0: करके
1: खासकर छोटी मछलियों में कैल्शियम
0: अच्छा
1: रिच फूड ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ऑस्टियोपोरोसिस सीवियर लेयर नहीं है तो बोन डेक्सा स्कैनिंग होता है, डेक्सा स्कैनिंग कर करके बोन स्पाइन बोन का या करके तब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से सलाह लेके ट्रीटमेंट लें। और यदि कैल्शियम अपने मन से अब लग रहा है कि है तो कैल्शियम खा सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन कैल्शियम खाना पड़ेगा, उसके साथ कुछ नेजल स्प्रे आता है, कुछ इंजेक्शन आता है, उसे भी ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
0: जी। इसी प्रकार से डॉक्टर साहब कृपया बताएं हमारे श्रोताओं को कि स्पॉन्डिलाइटिस ये
1: स्पॉन्डिलाइटिस
0: क्या है और
1: जिसे स्पॉन्डिलाइटिस, अभी जस्ट एक श्रोता बोले कि हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो एज रिलेटेड जैसे घुटना में डिजेनेटिव चेंजेज होता है उसी तरह स्पाइन बोन में भी चेंजेज आता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे का स्किन कैसा नरम रहता है, फिर एडल्ट हुआ डिफरेंट स्किन होता है, फिर ओल्ड एज हुआ स्किन का कंडीशन कैसे चेंज, उसी तरह स्किन का बोन का भी चेंजेज आते हैं।
0: जी
1: छोटे बच्चों में बोन बहुत नरम होता है, एडल्ट में बोन हेल्दी होता है, और ओल्ड एज हुआ तो एक्स्ट्रा अराउंड द ज्वाइंट जो स्पाइन बोन में भी ज्वाइंट होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ होने लगता है, तो नर्व का कंप्रेशन होता है, ज्वाइंट स्टिफनेस होने लगता है, तो ये इस कंडीशन में नेक का स्टिफनेस बढ़ जाता है, समटाइम्स चक्कर आने लगती है, समटाइम्स टिंगलिंग सेंसेशन, ये कंडीशन और बढ़ते गए तो उस कंडीशन में डॉक्टर ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन को दिखा के आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। प्रिकॉशन यही लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही आराम रहेगी।
0: अच्छा, अब चलते चलते हम ये भी पूछना चाहें कि बच्चों बच्चों में हड्डियां नरम होती हैं और उनका धीरे धीरे विकास होकर के फिर कठोर होते जाता है, तो मतलब बच्चों को किस तरीके से रखा जाए ताकि उनका हड्डी मजबूत रहे।
1: मदर को जैसे रेगुलर बेसिस पे कैल्शियम रिच फूड देना चाहिए, एक्सरसाइज एक्टिविटी
0: जो
1: में कमी,
0: स्तनपान करवाती हैं
1: स्तनपान करा तो कैल्शियम रिच फूड लेना है, जिससे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो डाइट का ख्याल रहना है, हाई कैल्शियम डाइट देना चाहिए। और आजकल के बच्चे क्या है, मोबाइल पे दिन भर बैठे रहते हैं, फादर मदर भी बाहर नहीं जाने देते हैं, भाई सिंगल मदर हैं या बैठे रहते हैं
0: दोनों
1: मोबाइल दे दे
0: वर्किंग
1: रहे
0: हैं
1: हैं,
0: खास करके
1: अपने
0: तब
1: भी मोबाइल पे बैठे हैं, बच्चों को भी मोबाइल पे।

0: दे दिए, तो
1: जी
0: ये गलत चीज है। बच्चों को खेलने दीजिए, आजाद रहने दीजिए, खेलेंगे धूपेंगे तो बोन स्ट्रांग होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप आए और विभिन्न प्रकार के जोड़ों के दर्द और उपचार संबंधी हमारे श्रोताओं के भी आपने समस्याओं को सुना और उसका उचित उपचार का तरीका बताया। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर,
3: हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर।

0: श्रोता सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। इस समय आप हमारी पहली सभा के कार्यक्रम में शामिल हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में समय दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। हिंदी में समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्यायिक के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम पराग के अंतर्गत सुनिए कहानी जीवन का लक्ष्य। कहानीकार रेखा भारती।
2: आईने के सामने खड़ी रिया खुद को निहार रही थी। शीशे में अपनी छवि को देखते हुए खुद ही अपनी सुंदरता पर मुग्ध हुई जा रही थी। बालों को कभी इधर करती तो कभी उधर झटकती। आजकल वह खुद से ही अटखेलियां करने लगी थी। अच्छा, तो तुझे प्यार हो गया है? प्यार? धत, मन की बात मन में ही नकार देती। रिया, अभी तक तैयार नहीं हुई? कॉलेज कब जाओगी? अचानक माँ की आवाज़ सरसराती हुई रिया के कानों में पहुँचती है। वह स्वप्निली दुनिया से बाहर आकर जल्दी से बालों को संवारती है और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। रास्ते में सुमन का घर पड़ता था तो रिया उसी के साथ कॉलेज जाती थी। क्या रिया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। हर रोज की तरह तू आज फिर से देर करवाने वाली है, सुमन बोली। तू बड़ी पढ़ाकू बनती है। अरे, स्कूल के टफ रूटीन से अब जाकर बाहर निकले हैं तो लाइफ को थोड़ा इजी रहने दो, रिया कहती है। लाइफ इजी रखोगी तो जीवन में सफलता का स्वाद कैसे सकोगी, सुमन ने कहा। तू चख सफलता का स्वाद, मैं तो जीवन के चटपटे स्वाद का आनंद लूंगी। इस बात पर रिया और सुमन दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। स्कूल से ही दोनों की दोस्ती चली आ रही थी। कॉलेज में क्लास करने के बाद सुमन लंच ब्रेक में कॉलेज के कैंटीन की तरफ बढ़ती है। रिया अचानक सुमन का हाथ पकड़कर ग्राउंड की तरफ मुड़ते हुए कहती है, चलो आज ग्राउंड में बैठते हैं, वहीं बैठकर मूंगफली फोड़ेंगे। बारिश का मौसम और यह खुशनुमा दिन ग्राउंड में बैठने का आनंद कई गुना बढ़ा देता है। तुम्हें कब से यह बारिश का मौसम अच्छा लगने लगा, सुमन छेड़ती है। यार, तुम भी ना, देखो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है। घास पर बैठते हुए रिया सुमन को अपनी डायरी दिखाती है। दोनों के बीच बातचीत हो रही थी तभी एक लड़का वहां आकर बैठ गया। रिया उसे देखकर मुस्कुरा देती है। सुमन, यह अनूप है, इसी कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। अनूप, यह मेरी दोस्त सुमन है। रिया दोनों को एक दूसरे का परिचय देती है। सुमन उनके बीच बैठने में असहज महसूस कर रही थी इसलिए वह उठकर क्लास में चली गई। इधर रिया और अनूप हमेशा एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढने लगे। सुमन रिया को अनूप से दूर रहने की सलाह देती लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टे वह सुमन को ही संकीर्ण सोच वाली बताती। एक दिन रिया कॉलेज खत्म होने के बाद सुमन के साथ घूमने चली जाती है। चॉकलेट, आइसक्रीम, चाइनीज फास्ट फूड के साथ खूब सारी मस्ती और बातें। रिया को आज का दिन हद से ज़्यादा खास महसूस हुआ। न स्कूल का टफ रूटीन, न घर की सख्ती। अनूप के साथ रिया आज़ाद तितली बनकर घूम रही थी, मानो उसके मन रूपी पंख सुंदर रंगों से सज रहे थे। इन आज़ाद लम्हों को समय की पाबंदी कहाँ मालूम होती है। उन्हें भी एहसास न हुआ कब रात के 8 बज गए। रिया घर पहुंची तो देखी माँ चिंता में चहल कदमी कर रही थी। रिया को देखते ही गुस्से से बोली, कहाँ थी अब तक? माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई थी, सुमन भी साथ में थी। सुमन? लेकिन वह तो घर आ गई थी, मैंने उसके घर फोन किया था। सुमन की बच्ची, माँ की बात सुनकर रिया मन ही मन सुमन पर चीरती है, फिर कहती है, सुमन कॉलेज

में साथ थी, लेकिन वह पिकनिक नहीं गई, मैं गई थी माँ। कौन कौन से गए थे दोस्त? तेरे क्लास के सभी दोस्तों को घर फोन किया था मैंने। वह सीनियर क्लास ने एक पिकनिक प्लान किया था, मुझे पिकनिक पसंद है इसीलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। सॉरी माँ, पहली बार ऐसा हुआ है इसीलिए छोड़ देती हूँ, आइंदा ख्याल रहे। माँ सख्त हिदायत देकर रिया को माफ कर देती है, लेकिन रिया के युवा मन को माँ की हिदायत कहाँ रोक सकती थी। उसके सपनों को तो पंख लग चुके थे। अनूप का साथ उसे खूब भाता, उसका तन कहीं भी रहे मन अनूप के पास होता। रिया को सुमन बहुत समझाती, उसे पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के लिए कहती, लेकिन उसे सुमन की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अब तू ना मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, घर पर माँ का प्रवचन और यहाँ तेरा, थोड़ा खुश होकर जी ले रही हूँ तो तुम लोगों का क्या बिगड़ता है? रिया चिढ़ कर बोली। हम लोगों का तो नहीं रिया, लेकिन तुम्हारा जरूर बिगड़ेगा। तुम पढ़ाई में पिछड़ रही हो, अभी के समय का महत्व नहीं समझ पा रही हो, सुमन रिया को समझाने की कोशिश करती है। सुमन के समझाने पर रिया पलट कर बोलती है, हाँ, तुम तो खूब समय का महत्व जानती हो, तुम्हें कोई लड़का घास नहीं डालता ना, इसीलिए मुझसे जलती हो। रिया की बात सुनकर सुमन चुभ जाती है। धीरे धीरे वह रिया से दूरी बना लेती है। इधर रिया कभी कभी क्लास भी छोड़ने लगी। एक दिन अनूप उसे एक ड्रेस गिफ्ट करता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बर्थडे पार्टी में तुम इसे पहन कर आओ। रिया को ड्रेस काफी पसंद आया। ड्रेस लेकर वह घर पहुँचती है। तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ, मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने चली गई थी, उसने जबरदस्ती मुझे यह ड्रेस गिफ्ट कर दिया है, बोली कि मेरे मम्मी पापा के वेडिंग एनिवर्सरी में पार्टी में पहन कर आना। यह कौन सी दोस्त बनाई नई बनी है जो तुम्हें जब तब गिफ्ट दे रही है? माँ तुम भी ना फालतू की बातें करने लगती हो, चलो खाना खिलाओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। रिया माँ के सवालों से बच कर निकलती है, लेकिन फिर भी माँ को कुछ शक हो जाता है। वह रिया के दोस्तों से संपर्क करती है तो उसे अनूप के संबंध में पता चलता है। माँ रिया के दोस्तों से लेकर उसके व्यवहार पर नजर रखने लगी। एक दिन रिया किसी सहेली के घर पार्टी में जाने की बात कही और तैयार हो गई। उसने वही ड्रेस पहना जो अनूप ने दिया था। माँ ने रोका नहीं, क्योंकि रिया ने शाम को 7 बजे तक आ जाने का वादा किया था। ऊपर से माँ को रिया के भी उस दोस्त की जानकारी लेनी थी। रिया तैयार होकर अनूप के बताए हुए होटल में पहुंचती है। वहां अनूप के साथ उसके कुछ दोस्त थे। रिया ने देखा कि लड़की में वह अकेली है। उसने अनूप से पूछा, क्या सिर्फ लड़कों को ही पार्टी में बुलाया है? अनूप कहता है, और भी लोग आने वाले हैं, कॉलेज की लड़कियों को भी इनवाइट किया है। लड़कियों के मेकअप जल्दी कहाँ होते हैं कि वह समय पर आ जाए, तुम तो जानती ही हो। यह सुनकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं। रिया भी मुस्कुरा देती है। पार्टी का दौर शुरू हो गया। अनूप रिया का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर डांस करने लगा। दोनों डीजे की धुन पर थिरकने लगे। पैरों की गति गानों के साथ तेज होती गई। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे डांस करते हुए करीब आने लगे। उनकी गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे को स्पर्श करने लगती हैं। दोनों की नज़दीकियां बढ़ते बढ़ते अचानक रिया पीछे हट जाती है। मैं तो डांस करके थक गई हूँ, आती हूँ कोल्ड ड्रिंक पीकर। अरे मैडम, हम आपके गुलाम हैं, तो कोल्ड ड्रिंक अपने हाथों से सर्व करेंगे, आप वहाँ चेयर पे बैठिए, अनूप अदा से कहता है तो रिया भी मुस्कुराकर टेबल की तरफ बढ़ जाती है। अनूप कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है तो रिया पूछती है, तुम्हारे दोस्त किधर चले गए, दिख नहीं रहे? इधर उधर होंगे एंजॉय करते हुए, लो पियो। रिया कोल्ड ड्रिंक पीती है। पीने के बाद उसे हल्का सिर दर्द होने लगता है। वह अनूप से घर छोड़ने की बात कहती है, तभी रिया का हाथ कोई पकड़ लेता है। वह सिर घुमाकर देखती है तो हैरान रह जाती है, माँ तुम यहाँ? तभी दो तीन लोग आकर अनूप को पकड़ लेते हैं। बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर।

साहब, आपने हमारी मदद की, इसके दोस्तों को भी पकड़ लीजिए। माँ के मुंह से यह सब सुनकर रिया अवाक रह जाती है। सादे कपड़े में पुलिस वाले थे जिन्होंने अनूप को धर दबोचा था। माँ, यह क्या? पुलिस? अनूप? अनूप? आप लोग अनूप को छोड़ दीजिए माँ, प्लीज, रिया बोलती रहती है, लेकिन माँ उसका हाथ पकड़कर घर चलने के लिए कहती है। माँ, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अनूप के पास जाना है। उसे पुलिस क्यों पकड़ रही है? अभी घर चलो। नहीं, मुझे अभी बताओ, मैं अनूप को बहुत चाहती हूँ माँ, वह भी मुझे बहुत प्यार करता है। उसे बचा लो माँ, वह मेरा जीवन साथी बनेगा। कहा ना, चुपचाप घर चलो, सुबह बात करेंगे। घर जाकर रिया को कमरे में भेज दिया जाता है। उस रात रिया को अर्ध बेहोशी सी नींद थी, वहीं उसकी माँ की आंखों में नींद गायब थी। सुबह होने तक चिंता और सुकून के कश्मकश में डूबते उतराते रही। सुबह रिया कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। वह माँ के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे नाराजगी थी कि माँ ने बिना किसी दोष के अनूप को पुलिस से पकड़वा दिया। माँ रिया के पास बैठती है और अपनी बात कहती है। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं अनूप को पुलिस से क्यों पकड़वाई और तुम्हें इस प्रकार वहां से खींचकर क्यों लाई? बेटा, मैं यह कदम नहीं उठाती तो तुम्हारा भविष्य नष्ट हो जाता। रिया की आंखों में आश्चर्य देखकर माँ आगे कहती है। दरअसल अनूप और उसके कुछ साथी लड़कियों के पोर्न वीडियो बनाने वाले लोगों से जुड़े हुए हैं। ये लोग लड़कियों से दोस्ती बढ़ाकर होटल में ले जाते हैं और धोखे से उनका गलत वीडियो बना लेते हैं। फिर लड़कियां इनके जाल में फंसती चली जाती हैं। यह सुनकर रिया रोने लगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं गलत रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। मैंने तुम्हारे प्रेम और विश्वास को छला है। रो मत बच्ची, यह उम्र बहुत नाजुक होता है। इस उम्र में जीवन बनते भी हैं और थोड़ी चूक होने पर बर्बाद भी होते हैं। इस उम्र के बच्चों की परवरिश करना हर अभिभावक के लिए चुनौती होता है। माँ, लेकिन आपको कैसे अनूप की सच्चाई का पता चला? जब तुम्हें गिफ्ट मिलने लगे तभी से मैं तुम्हारे प्रति सचेत हो गई थी। सबसे पहले तुम्हारी दोस्त सुमन से बात की, फिर उसके मदद से दूसरे दोस्तों और सोशल नेटवर्किंग के जरिए भी जानकारी इकट्ठा की। जब मुझे अनूप के गंदे कामों की जानकारी मिली तो फिर पुलिस से बात की और पुलिस ने तत्परता से काम किया और कल अनूप को पकड़ने के लिए हम सब होटल में छिपकर मौजूद हो गए थे। तुम होटल में पहले से मौजूद थी? तो फिर मुझे नशीला ड्रिंक पीने से पहले क्यों नहीं रोका? पता है, अभी तक सिर भारी लग रहा है। रिया अपना सिर पकड़ते हुए बोली। बेटा, यह जो तुम्हारी उम्र है ना, इस उम्र में बच्चे माता पिता की बातों पर कम और दोस्तों की बातों पर अधिक विश्वास करते हैं। यदि मैं तुम्हें होटल जाने से रोकती या ड्रिंक पीने से पहले पकड़ लेती और जबरदस्ती घर ले आती तो शायद अभी तुम मुझसे नाराज होकर बहस कर रही होती उस अनूप के लिए। तुम्हारी आंखों की पट्टी को खोलने के लिए तुम्हें ड्रिंक पीने के बाद हमने अनूप को पकड़ा ताकि तुम उसकी हकीकत जान सको। मैं बहुत शर्मिंदा हूं माँ, आपसे नजरें नहीं मिला पा रही। तुम्हें गलती का एहसास हो रहा है, अच्छा है, लेकिन अब इससे सबक लेकर जीवन को सुंदर मोड़ दो। तुम अपने लक्ष्य की तरफ पढ़ो, तुम्हारा सारा ध्यान अभी पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। याद रखना, जीवन का लक्ष्य सिर्फ प्यार और शादी तक केंद्रित नहीं होता। तुम पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़ो और एक जिम्मेदार नागरिक बनो जिससे सिर्फ परिवार ही नहीं पूरा समाज और देश तुम पर नाज करे। मुझे एक मौका दो माँ, अब मेरा सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगेगा। शादी प्यार का चक्कर बिल्कुल छोड़ दूंगी। बहुत अच्छा बेटा, बच्चे अक्सर इस उम्र में भटक जाते हैं। प्यार के आकर्षण में पड़कर छोटी उम्र में विवाह की सोचने लगते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी तुम्हारी सहमति से ही करूंगी, लेकिन सबसे पहले अपना व्यक्तित्व निखार कर कुछ बन जाओ और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाओ। अभी का पता है ना, जीवन के लक्ष्य पर ध्यान देना है। हाँ माँ, कहते हुए रिया अपनी माँ के गले से लिपट जाती है और माँ राहत भरी एक गहरी सांस लेती है।

0: जीवन का लक्ष्य। अभी आपने रेखा भारती की ये कहानी सुनी कार्यक्रम पराग में। हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे देशभक्ति गीत।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवल्यूशन।

0: एक्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अंतराल से पूर्व सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मी नगमे।

आशा भोसले मुबारक बेगम और साथियों का आपने सुना फिल्म आरजू में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों को फिल्म संजोग से यह नगमा लिया है। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

फिल्म संजोग में अभी आपने मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों को सुना। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी, मदन मोहन का संगीत। अगला नगमा सुनिए मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों के आवाज़ में। धर्मकांटा फिल्म से लिया है, मजरू के बोल हैं, नौशाद का संगीत।

0: फिल्म काटा फिल्म में भी आपने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को सुना, मजरू के बोल, नौशाद का संगीत, और इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: 90 साल
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में मुख्य रूप से 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा हो रही है। युवा कार्यक्रम विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में एसोचैम, फिक्की, CAIT और CII सहित प्रमुख उद्योग निकायों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि उद्योग और माय भारत के बीच सहयोग से युवाओं की इस ऊर्जा को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने में मदद मिलेगी। दरभंगा के रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया है। इस कमेटी में केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, इख पदाधिकारी और जिला संपर्क पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। यह समिति चीनी मिल को फिर से चालू कराने के उपायों का आकलन करेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेर सदर में सबसे अधिक 20.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर एक बालू लदा हैवा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों पर पलट गया। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भेजा गया है। सीतामढ़ी पुलिस ने रीगा थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र से हुई लूट कांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान एक अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देशी कट्टे, 1 देशी पिस्तौल, 2 कारतूस और लूट में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल

बरामद की गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसोना गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 105 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक और भारी मात्रा में शराब के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर मंडल कारा में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में कैदी द्वारा आत्महत्या की जाने की बात सामने आ रही है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया गांव में भूमि विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने NH-327E को जाम कर प्रदर्शन किया। समस्तीपुर जिले के तलसिंह सराय थाना क्षेत्र के चकलोमान गांव से पुलिस ने लूट के मामले में 7 साल से फरार चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। दरभंगा में पिछले दिनों एक आभूषण दुकान से लूट के मामले में एसटीएफ की टीम ने मधुबनी जिले के पंडोल से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वजारत पंचायती राज आज नई दिल्ली में रियासतों के पंचायती राज वजरा के कौमी वर्कशॉप का इनेकाद कर रहा है। पंचायती राज के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह की सदारत में मुनक़िद वर्कशॉप में ख़ास तौर से 16वीं मालियाती कमीशन की सिफारिशों पर बहस की जा रही है। हमारे नामा निगार ने बताया कि वर्कशॉप के दौरान वजारत मालियात के अखराजात महकमा के जरिए जारी 16वीं माली कमीशन के देही मकामी बल्दियात ग्रांट्स को लागू करने के रहनुमा उसूल पर बहस जारी है। महकमा यूथ प्रोग्राम ने आज नई दिल्ली में माय भारत के लिए सनती तंजीम कॉन्फ्रेंस मुनक़द की। कॉन्फ्रेंस में एसोचैम, फिक्की, CAIT और CII समेत अहम सनती अदारों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद सनती दुनिया के बहीखाहों को माय भारत सिचुएशनल मिशनरी से वाकिफ कराना और सनती तंजीम, कारपोरेट और अवामी जुमरे के अदारों को इस पहल में शामिल होने के लिए मदऊ करना था। मरकजी वजीर खेल डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सनत और माय भारत के बीच तआवुन से नौजवानों की इस तवानाई को कौमी तरक्याती अहदाफ की तरफ रहनुमाई में मदद मिलेगी। दरभंगा के रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने आला सतही जायजा कमेटी की तश्कील की है। इस कमेटी में क्यूटी के रुकन असेंबली मुरारी मोहन झा, जिला कोऑपरेटिव अफसर, जिला एग्रीकल्चर अफसर, गन्ना अफसर और जिला राबता आमा अफसर को मेंबर बनाया गया है। ये कमेटी चीनी मिल को फिर से चालू कराने की तदाबीर का जायजा लेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल रास्ते से शुरू हो गई है। पूरे मुल्क से लाखों अकीदतमंद 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। अकीदतमंद लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर वाक़े अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश की पेशगोई जताई है। इस दौरान तेज़ हवा के साथ बर्फबारी की भी वार्निंग जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेर सदर में सबसे ज़्यादा 20.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना हलका के तहत NH 31 पर बालू से लदा एक हाईवा ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों पर पलट गया। इस हादसे में दो बच्चे समेत 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि 12 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भेजा गया है। सीतामढ़ी पुलिस ने रीगा थाना इलाके में कस्टमर सर्विस सेंटर से हुई लूटपाट का खुलासा करते हुए 5 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान एक जराइम पेशा ने पुलिस पर फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पाँव में गोली लगी। गिरफ्तार मुलजमीन के कब्जे से 2 देसी कट्टे, 1 देसी पिस्तौल,

0: दो कारतूस और लूट में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अररिया जिला के जौकीहाट थाना हलका के तहत सिसौना गांव में पुलिस ने छापामारी करके 105 ग्राम नशीली अशिया स्मैक और कसीर मकदार में शराब के साथ दो जराम पेशों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर डिवीजनल जेल में बंद एक कैदी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। इब्तदाई जांच में कैदी के जरिया खुदकुशी की जाने की बात सामने आ रही है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10 जमा 2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के 3522 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। पता है www.ssc.gov.in। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NISCL ऑपरेंटिस के 550 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट प्राप्त है। आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा जिसकी अंतिम तिथि है 6 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। पता नोट करें www.bfsissc.com। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1500 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। पता नोट करें www.sbi.bank.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आप सुन रहे हैं

0: पहली सभा के कार्यक्रम। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है वह खूबी बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में

0: ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति जेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और ये सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर

0: पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल

0: मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। 2:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज के इस फिल्म संगीत में सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले को, नीरज की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म है कल आज और कल।

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए इसलिए,
0: अच्छी आपने बुलाया इसलिए,
1: आए हैं तो काम भी बताइए।
0: ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है। शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: ना,
0: सुनो तो सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: Beleza da alma muskurai. Beleza da alma muskurai. Beleza da alma muskurai.
1: कल आज और कल फिल्म में भी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले को सुना, नीरज के बोल, शंकर जय किशन का संगीत, और अब अगला गीत हम सुन पा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर में। इस गीत को लिया है फिल्म ऐलान से, इंदिवर की रचना है, शंकर जय किशन का संगीत।

फिल्म एलान का ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी और शारदा को आपने सुना। इंदिवर की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत और अब मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले के युगल स्वर में। अगला गीत हमने लिया है फिल्म जवां मोहब्बत से। हसरत जयपुरी के बोल हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

फिल्म पतंगा में अभी आपने मोहम्मद रफ़ी को सुना। इंदिवर की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत, और अब मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को सुनिए, जाने अनजाने फिल्म में।

जाने अनजाने फिल्म में भी आपने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को सुना, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और अब अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की युगल स्वर में है। हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत, और फिल्म है अप्रैल फूल।

इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अपराह्न के 3 बज रहे हैं, संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा शाम 5 बजे आरंभ होगी, तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है। लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए, आज किस सखी से बात हो रही है हमारी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना, वैसे मैं बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हुई अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी, क्या करती हैं आप?
1: देखिए, वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ
0: जी,
1: मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ, मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में ट्रांसलेशंस करती हूँ
0: जी। ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया, ये उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी।
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है
0: जी।
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है
0: जी जी।
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया
0: जी।
1: तो मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं
0: जी। रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल, और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए, अगर फिलोसॉफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने, और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी, बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात करके।
1: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए
0: जी,
1: वो मैं सुनना चाहूंगी।
0: जी जी, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया बानो बोल रही हूँ, गुजरात से। हाँ,
0: आलिया बानो गुजरात से। जी आलिया बानो, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी है?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए, क्या चल रहा है इन दिनों?
1: टंकी नवाते पड़ती हूँ और घर पर ही रहती हूँ। घर के जो काम होते हैं ना, छोटे मोटे, वो सब करवा देती हूँ।
0: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है कहीं घूमने फिरने, आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
1: हाँ, जाती हूँ ना परिवार के साथ ही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है,
0: हाँ वो
1: मुझे
0: तो
1: दिखाई
0: है
1: नहीं देता है ना।
0: जी, ये तो सहयोग
1: हाँ
0: परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये
1: हाँ मेरी
0: मुझे
1: अम्मी,
0: जी
1: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है। मेरी दीदी है ना, मेरी अम्मी, वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे। सबसे काल मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ। मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ
0: जी
1: जाना है, कैसे जाना है। मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना, तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना कुछ काम करना होता है तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं?

0: यानी कि आप कदम गिन लेती हैं, या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाएं तरफ ये है, दाएं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
1: नहीं, मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना, तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है।
0: जी
1: मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना,
0: जी
1: ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ,
0: अच्छा
1: हमारा एक माले का घर है ना, वहां कर रही हूँ, तो
0: जी
1: मैं
0: जी
1: नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ।
0: अच्छा, मतलब आप पहली मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती
1: हाँ,
0: हैं ये सब।
1: अब थोड़ा आप कर लेती हूँ। एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है, किस तरह जाना है, किस तरह आना है, तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं, आप इसको किस
1: बहुत
0: तरह
1: खुश,
0: से लेती हैं?
1: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। ऐसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे है उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ,
0: जी
1: लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ घूमती है, तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे
0: जी
1: साथ ही क्या हो रहा है। लेकिन
0: जी
1: फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती। मैं ऐसा
0: देखिए
1: सोचती हूँ कि ऊपर वाला जिस हाल में रखे उस हाल में ही रह
0: जी
1: लेना
0: जी
1: चाहिए।
0: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है
1: हाँ
0: फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुन के
1: हाँ
0: हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम, बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए। अंदाज फिल्म का, अंदाज
0: अंदाज फिल्म
1: है
0: का
1: ना।
0: जी
1: हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
0: बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से। आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ,
0: क्या
1: एक
0: बात है
1: शायरा हूँ
0: जी।
1: जी, एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरी कशिश, मेरा
0: जी।
1: पेन नेम है लहरे,
0: पेन नेम है
1: जो
0: आपका लहरे।
1: लहरे, और मेरी किताब जो प्रकाशित वो है उसका नाम है लहरी कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी,
0: जी
1: थोड़ा बहुत लिखती थी। शुरू में चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
0: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
1: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ कि सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
0: जी,
1: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
1: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस हैं,
0: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
1: जी, मुंबई की लहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
0: ये बात
1: क्या मैं सही बोल रही हूँ?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो
0: जी
1: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ?
0: बिल्कुल
1: और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
0: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हों, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
1: जी बिल्कुल, मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
0: जी,
1: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा, बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है, किनारा भी तुझ में, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम,

0: ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारा। हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ, ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
1: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोक राव देशमुख है। मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं मैम खाना बनाने का काम करती हूँ
0: अच्छा, यानी टिफिन
1: घर में।
0: सर्विस।
1: घर में खाना बनाने को जाती। मैं रोटी ही बनाती सिर्फ। 4-5 घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे
1: हाँ,
0: जाके।
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती, फिर
0: अच्छा,
1: बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर
1: हाँ,
0: देती हैं कि
1: सब
0: आप
1: जॉब करने
0: जाकर।
1: वाले हैं ना यहाँ पे,
0: जी
1: टीचर
0: जी
1: है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं।
0: जी और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो
1: नहीं
0: जाती हैं।
1: रुके।
0: जी
1: हाँ बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है।

0: ना? और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का, थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी
0: जी
1: उतनी कमाते, बस ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं हम दोनों ही रहते हैं, माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए, हाँ तो भाई के ही रहती मैं।
0: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और
1: खुशी
0: सकारात्मक
1: के साथ
0: सोच रख
1: गुजर
0: के आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद
1: रहे। हाँ
0: करती हैं।
1: मैम, मैं मेरी सहेली के नाम लेती,
0: जी ले लीजिए
1: हाँ बबीता ठाकुर और एक शहनाज शेख है।
0: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी, कि आप कौन सा
1: हाँ
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना मैम।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आ रहा है अभी, गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत पसंद है लेडी, और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: जी हम आपकी खुशी
1: बयां
0: को,
1: नहीं कर सकती।
0: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली। हेलो
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से। जी
0: सुशीला महेश्वरी भोपाल से। जी सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ, मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद हैं आपको?

0: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
1: जी विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
0: सबसे
1: और
0: पहला प्यार विवि भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं
1: जी, तो
0: जी।
1: बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म,
1: जी,
0: ये
1: बहुत
0: वाला
1: ही
0: गाना सुनना है मुझे
1: जी, बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते। किस सहेली से
1: हाँ,
0: हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से। हाँ,
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में
1: वैसे
0: कुछ बताइए।
1: मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। शहर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है,
0: जी।
1: बनारस में हूँ और एक तरह से गृहिणी हूँ इस बार।
0: तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए
1: हाँ
0: मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादातर।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप
1: हाँ,
0: किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ, मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ, जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ मैं हमेशा
0: जी
1: जिंदगी में।
0: जी तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई, अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा,
1: हाँ
0: है ना
1: बिल्कुल।
0: जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेजे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे,
0: कहाँ से बात कर रही हैं वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ,
0: वैष्णवी आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी?
1: 7।
0: 7th की।
1: हाँ,
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो
1: हाँ
0: सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती हैं?
1: हाँ,
0: क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है। खो
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो-खो, है ना?
1: हाँ,
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा। तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं।
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी, मैं ये जानना
1: हाँ
0: चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका
1: हाँ
0: क्या
1: हाँ
0: अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया। जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए,
0: जी, ये तो
1: और
0: कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
1: और इतना
0: जी।
1: उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप
1: और
0: टीचर।
1: उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो
0: जी
1: अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई
0: जी
1: में। हाँ, नहीं
0: जी
1: ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं,
0: जी
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है। संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख
1: हाँ,
0: और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं।
0: जी
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं, और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं,
0: जी
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ताउम्र हम उसके आघात से उभर नहीं पाते।
0: जी
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं, लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है।
0: जी
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें।
0: जी, यही हम जानना चाहते हैं, और हमारी सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा
1: हाँ
0: खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप
1: हाँ
0: बताना चाह
1: तो
0: रही हैं ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
1: हाँ, नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है, हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन
0: जी
1: हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख।
0: जी
1: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी।

0: हमारे द्वार पर आएगा।
1: जी, यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए।
0: अपनाना होगा और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं।
1: जी बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
0: ममता फिल्म का रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सबा बागे वफा में।
1: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली, किससे
1: हेलो सहेली,
0: बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से जी,
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर। ठीक
0: जी शांति जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: है जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ, घर ही
0: जी
1: रहते हैं, कुछ
0: जी
1: नहीं।
0: हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउस वाइफ हैं, लेकिन हाउस वाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज़ आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आपको?
1: और मैं जब विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता रहता है।
1: मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से, वो सुनती रहती, काम भी करती रहती
0: हाँ,
1: हूँ।
0: तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना
1: हाँ जी,
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, निकाह पिक्चर का
0: चलिए सुनते
1: जी।
0: हैं आपकी पसंद
1: हाँ
0: का ये गीत।

0: हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02226702288, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।

प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी न मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है, भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा।

बलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदि थी, वो इसे जानती थी। वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहाँ तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहाँ लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती। किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती है। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी।
अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही।

नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहाँ मुँह छुपाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती है।

नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर श्रृंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाती। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास। भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं। कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजर कर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला। फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी। आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई। चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा। इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा। रात के

नीरो सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। कैसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागों थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहाँ धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाठ बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे, दोनों अनमने से।

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

वो इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरसते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे बंद

देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी, वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा, तो चंदा के बिना आकाश कैसा? वे प्रेम में थे या उनके साथ

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहाँ जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं।

क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियाँ। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा के प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब, कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूँ तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझ कर थोड़े ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निसीम है, निसीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है, उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है, अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं, उनके पास बातों का खजाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता, उनके पैर नदी के पानी

0: पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
1: ये रातें, ये मौसम।

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वहीं ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहाँ से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहाँ आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वही दोनों लहूलुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं। वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई माँ अपनी बेटी को ये किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400

सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी वहीं से, जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान, सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी, जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी।
इंद्र के साथ बाकी देवता भी।

चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रही, फिर कहानी में लौट आई, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूँ। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफ़ेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी। उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी।

और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय ख़त्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की दूसरी सभा। इस सभा में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को प्रणाम। अभी आपके साथ मैं हूँ जया। अभी से लेकर रात्रि के 11:10 तक हम आपके साथ रहेंगे। अपनी इस सभा में हम आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रमों के साथ उपस्थित हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं युववाणी से। यह कार्यक्रम

नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम मेरी पसंद और आपके साथ मैं हूं रक्षा। हमारा आज का विषय है जीवन यानी जिंदगी, एक बहुत रंगीन पहलू जो कभी हंसाती है तो कभी बहुत रुलाती है, कभी बहुत कुछ सिखाती है तो कभी ठोकरें भी खिलाती है। हमें मौका देती है अपने सपने पूरे करने का, उसे जीने का, खुलकर कुछ कहने का तो कभी सुनने का। मुझे ऐसा लगता है

बहुत रुलाती है, कभी बहुत कुछ सिखाती है तो कभी ठोकरें भी खिलाती है। हमें मौका देती है अपने सपने पूरे करने का, उसे जीने का, खुलकर कुछ कहने का तो कभी सुनने का। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ

जिंदगी, यहाँ अपनी जिंदगी से तो हर कोई परेशान है। कोई परेशान है भविष्य की चिंता में, तो कोई आज की चिंता यह कि कहीं हम हार ना जाए, कहीं हम पीछे ना छूट जाए। हार और जीत जिंदगी के वो दो पहलू हैं जिनमें से एक का भी ना होना हमारे इस जीवन चक्र के लिए हानिकारक है। अगर जिंदगी के किसी पड़ाव में हार है तो बेशक उस हार के बाद एक जीत है। वैसे ही जैसे एक व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती तो हैं, पर उनका जाना भी उतना ही निश्चित है जितना जिंदा रहने के लिए सांसों का चलना। अगर जीवन के किसी पड़ाव में आपको हार का सामना करना पड़े तो ये मत समझिए कि हार ही आपकी अंतिम सीढ़ी है, बल्कि उस हार को स्वीकार कीजिए और जीत की ओर आगे बढ़िए, क्योंकि उस सीढ़ी की अंतिम छोर पर जीत आपका इंतजार कर रही है। जीना इसी का तो नाम है, जो हार से हार ना मानकर जीत की ओर आगे बढ़े। तो इसी सुर में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म मिस्टर इंडिया से यह गाना, जिंदगी की यही रीत है।

हाँ, जिंदगी तो एक ही है हमारे पास, और इसी एक जिंदगी में हमें वह सब कुछ चाहिए जो हम चाहते हैं। पर कभी कभी हमारी चाहते हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो जाती हैं, और यही चाहत हमें हमारी जिंदगी को खुलकर जीने में रुकावटें पैदा करती हैं। हम मानसिक रूप से बीमार होने लगते हैं, तनाव को झेलते हैं, और इस रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम असल जिंदगी की खूबसूरती को भूल जाते हैं।

करते हैं। हाँ बेशक, चीज़ें वक्त के साथ बदलती हैं, तरीके बदलते हैं, फैशन बदलते हैं, मगर फिर भी जीवन आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि वह पहले थी। सब कुछ उतना ही हसीन है जितना कि वह पहले था। आने वाले कल की तैयारियों में हम इतना उलझ चुके हैं कि हम आज को और आज में जीना भूल चुके हैं। पर सिर्फ एक बार आज में जी कर तो देखिए, जिंदगी का सफर उतना ही सुहाना लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा सुहाना सफर है जिसमें हर मोड़ नई उम्मीद लेकर आती है। तो इसी के साथ सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अंदाज का यह सदाबहार गीत, जिंदगी एक सफर है सुहाना।

इस जिंदगी में हमें जो चीज़ें मिली हैं उनका हमसे दूर होना ज़रूरी है, क्योंकि यही तो चक्र है, जीवन चक्र, जहां एक तरफ 5G की रफ्तार से हम आगे तो बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमसे पीछे छूटता जा रहा है हमारा सुकून। सुकून वह जो परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया वक्त था। भागदौड़ वाली जिंदगी में हम तो रुकना ही भूल गए। रोज नए लोगों से मिलना, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, नई नई परेशानियां लेना और फिर उदास हो जाना। जिंदगी की रेस में फर्स्ट आने के लिए यहाँ हर कोई रेस लगा रहा है, पर यहाँ जीतता वही है जो अपनी नाकामयाबियों को स्वीकार करता है, जो सब कुछ करे जो वो करना चाहता है, क्योंकि कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी। जो है वो आज है, जिंदगी इसी का तो नाम है। कल की फिक्र क्या करनी, कल किसने देखा है। यहाँ हमारा हर दिन आखिरी और हर सुबह नई है। इस गोलमाल वाली जिंदगी में आइए सुनते हैं फिल्म गोलमाल 3 से ये गाना, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जिसे आवाज़ दी है शान।

शब्द नहीं बल्कि एक भाव है जिसमें समुद्र से भी ज्यादा उतार चढ़ाव है। पर एक खास बात जानते हैं क्या? अगर इसमें होने वाले उतार चढ़ाव ना हो तो यह रुक जाती है, वो भी हमेशा के लिए, और फिर हमें दोबारा कोई मौका नहीं देती उस भाव को महसूस करने का। इस जिंदगी से गिले शिकवे किसे नहीं हैं, पर जो हम जी रहे हैं वो पल काफ़ी हसीन हैं। जिंदगी से प्यारी और कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है, हंसी, खुशी, दुख, दर्द, ताने, जज्बात, रिश्ते, ये सब कुछ इस जिंदगी की ही तो बदौलत है। तो अच्छी बुरी जैसी भी है, ये जिंदगी बस आपकी ही है। तो आइए जिंदगी से हाथ मिलाते हैं और गले लगाते हैं, और फिल्म डियर जिंदगी से सुनते हैं अमित त्रिवेदी और जसलीन रॉयल की आवाज में यह गीत, और हम भी कहते हैं

जिंदगी से प्यार करते करते ही जिंदगी का सफर आसान होगा, तो इसे खुलकर हंसे, खुलकर रोए और खुलकर जिए, क्योंकि बाबू मुशाए जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और मैं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा आप सबसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि दोबारा जल्द ही मिलेंगे। आज के कार्यक्रम पर अपने सुझाव हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है feedbackair@gmail.com।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए भोजपुरी कार्यक्रम आरती।

आरती सुने वाला हमर सभन सुननिहार लोगिन के राउड विनीता के प्रेम भरल नमस्कार। एक बार फिर से हम प्रस्तुत भइल बानी राउड इहे मन पसंद आपन कार्यक्रम आरती में नीक नीक जानकारी भरल बात के जोरे। दिन शुक्रवार है, ऐसे हम एकदम नेकी भराइल कि रउआ सभन के आज हमरा के फिल्म संगीत सुनवावे के बा। कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए अगर बात करी कि हम इन कुछ नीक नीक बात के जोरी ही सुनवाएं रउआ सभे के एगो वार्ता,

एकर विषय हो कि पर्यावरण संरक्षण खातिर कदम उठावल जरूरी बा। वार्ताकार हुई हैं अभिषेक रंजन जी। आ देखी साथे साथे नीक नीक संगीत सुनला के नीक नीक जानकारी भरल बात भी हमने सभन करत रहम। आज है जुलाई महीना के 3 तारीख। हमने के पूरा देश में 1 जुलाई से मनावल जा रहल बा वन महोत्सव सप्ताह। इस सप्ताह के हर बरिस 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनावल जाला। लेकिन ये खाली कहे सुने वाला उत्सव ना, बलुक हमनिन की धरती माई के श्रृंगार करे के दिन है, सजावे के दिन है। हमार मतलब समझता नहीं नुरुआ सभे। सोच के देखी कि यदि पेड़ पौधा ना रहे तो हमनिन की जिंदगी कैसन होखित, ना शुद्ध हवा, ना मीठ मीठ फल, ना सावन के फुहार, कुछ वो ना भेटाई थे हमनिन के। आज हमने सभी विकास के अनहरिया दौड़ में पड़ के सभन पेड़ के कटाई करत चल जातनी। तनिका शौक के पूरा करे में भोराइल चल जातनी कि वह पेड़ के काटे के नतीजा का होखे। आ नतीजा तो देखते बनी नुरो वो सभे कि ऐसन गर्मी पड़त बा कि देह जर जा रहल बा। समय बीता था आ अभी तक पानी बुनी के ठेकाने नहीं खे। पानी बरसे ओह खातिर किसान तरस तारे। इहे सब के देखते हुए आज से 76 बरिस पहले हमने इनके देश के जौन कृषि मंत्री रहन कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी, उस साल 1950 में यह आंदोलन के शुरू कैले। अब बात करें कि यह आंदोलन के आखिर इहे सप्ताह में काहे शुरू कैल गई भाई, तो देखिए जुलाई के पहलका हफ्ता के एह से चुनल गईल काहे कि ए समय मानसून आ जाला आ माटी में पौधा के जड़ जौन होला ओकर पकड़ के ताकत ओकरा में समा जाला। ओकरा के हमनिन के भोजपुरिया जवार में हम हमेशा अपन पुरनका लोगन से सुनीला कि गाछ बिरिछ रही तबेनु जिंदगी बाँची। साँचे ठीके कहलन उ लोग। आज हमने इनके सरकार भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान चले ले बारन। जैसे माई हमने इनके पूस पाल के बढ़न करे ली, वैसे ही पेड़ भी हमने इनके ऑक्सीजन दे के पालेला। ऐसे हमनियों के फर्ज बनेला कि कौनो भी शुभ दिन होके, नीक मौका होके, ओकरा पे एगो पेड़ अपन हाथ से जरूर लगाएं, चाहे अपन लैकन से लगवाएं। आ जितना संभव हो सके वह पेड़ के सेवा करें, हो सके तो समय समय पर उसमें पानी भी डलवावत रहें जिससे वो सूखे ना पावे। देखी हम एगो बात कहल चाह हम रुआ अमनिन के अपन लैकन फैकन के कतना नीक तरह से रोज बढ़िया बढ़िया भोजन खिला के ओकर ध्यान दहिला। ये पेड़ वो पौधवा हमनिन के लैकने ऐसा होके के चाही जेकरा खूब ख्याल रखल जाओ। अब ई ना कि आजकल फोटो खिंचवावे के युग जमाना आयल बा, एगो पेड़ रोपनी, फोटो खिंचवनी और ओकरा के पोस्ट मार देनी, अब खूब लाइक कमेंट वही पर मिलता आ देखे में जाके देखतनी तो पेड़ सुखाइल बा। देखें हमार 200 नोह जोड़ के रुआ सबन से निहोरा बा कि रुआ सभी क्रिया खाएं कि खाली पेड़वा रोपे के ना, बलुक ओकरा के बचावहूँ के जिम्मेदारी उठाएं सभी। काहे कि वन महोत्सव खाली सरकारी कार्यक्रम ना हो बल्कि हमनियों के जिम्मेदारी है। ऐसे पौधा लगावत रही सभे आ हरियाली के फैलावत रही। आ इहे के साथे एक बाद हम राउर मन भी हरियाल रहे तो कहे ना एगो सुंदर संगीत सुनवाएं। तो सुनी सभे नैहर छूटल जाए फिल्म से चढ़ेला आषाढ़ गीत के।

0: बहुत सुंदर संगीत मुबारक बेगम ममीनू पुरुषोत्तम जी के आवाज में रहल है। आगे भी ऐसने नीक संगीत हम रुआ सब के जरूर सुनवाएं। यही के साथ ही हम एगो और बात कही कि बरखा बुनी के दिन में रुआ सब सुन ले हुकम कि खूबे कीड़ा मकौड़ा सांप बिच्छू के आतंक माने खतरा बढ़ जाला। जब पानी उनकर बिल तक पहुँचे लागेला तो निकल के आस पास के घर मोहल्ला के अंगना में लुका जाले, लेकिन वैसन में अनहोनी होके के डर लागल रहेला। फिर भी ओ स्थिति में घबराइला से कुछो ना होके जरूरी बा कि घर ही से प्राथमिक उपचार शुरू कर देवल जाओ। जैसे अगर बिच्छू डंक मार देवे तो सबसे पहले सेंधा नमक आ पानी के घोल के दू दू बूंद चौना तरफ डंक मार ले बा ओकर उल्टा तरफ में कान में डलला से दर्द में आराम होखेला। उहे तरह पुदीना के पत्ता पीस के डंक वाला जगह पर लगावे के चाही, चाहे ओकरा के पियाला से भी जहर के असर कम होला। आ लहर के शांत करे खातिर फिटकिरी घस के लगावे के चाही। आ एह सबन के बाद रुआ आसपास के चिकित्सक के पास जरूर जाए। उहे तरह बात करी अगर सांप के कटला के तो सबसे पहला बात तो हम कहल चाहम कि गांव देहात में ओझा गुनी के चक्कर में लोग समय गंवावे लागलन, लेकिन ई गलती भोराइयों के ना करे के चाही। सबसे पहले जेकरा सांप कटले बा उनका के डरवावे के ना चाही, ना तो दिल के धड़कन तेज हो जाला आ वैसन स्थिति में जहर तेजी से फैलेला। हाथ चाहे पैर में कौनो जेवर अंगूठी चाहे घड़ी होके तो तुरंत निकाल दही। ओकरा के काहे कि सूजन आवे लागेला, डंक वाला जगह के साफ पानी या साबुन से धो देवे के चाही। ओइजा घाव के चीरा मत लगाएं, चाहे मुंह से जहर निकाले की कोशिश भोराइयों के मत करें। हाथ चाहे पैर चाहे शरीर के कोनो हिस्सा जहाँ सांप डसले होके बेसी हिलावे डुलावे के ना चाही। आ इस सब उपाय खाली अस्पताल पहुँचे तक के सहारा होला, असली इलाज अस्पताले में हो सकेला। ऐसे बिना समय गंवैले मरीज के अस्पताल ले जाए के चाही। रात के समय में टॉर्च लेके निकली सभे, सजग रहीं सुरक्षित रहीं। आ अब आई यही के बाद हम रुआ सभी के सुनवाई एगो वार्ता जेकर विषय बा पर्यावरण संरक्षण खातिर कदम उठावल जरूरी बा। वार्ताकार बारे अभिषेक रंजन जी, तो सुनी सभे एह वार्ता के ओकरा बाद हमने इनके फिर उसे बतियाएं जा।
1: पर्यावरण प्रदूषण पृथ्वी के प्राणियन खातिर प्रमुख प्रश्न बन के मानवता के मन के मंथित कर रहल बा। ऐसे में मानव जीवन के अस्तित्व खातिर पर्यावरण के संरक्षण बहुते जरूरी बा। गांधी जी कहले रहे कि

पृथ्वी सब मनुष्य के जरूरत पूरा करे खातिर पर्याप्त संसाधन प्रदान करेले, बाकी लालच पूरा करे खातिर ना। गांधी जी के ई कहनाम आजो चरितार्थ बा। आज दुनिया जौन बा उ अनेक तरह के समस्या से जूझ रहल बा। कुछ समस्या खुदे उत्पन्न करत बा तो कुछ मनुष्य अपना लालच में खड़ा कर रहल बा। कबो कबो लागत बा कि दुनिया फिर से एगो आउर विश्व युद्ध के मुहाना पर खड़ा बा। यही तरह के मय समस्या में से एगो समस्या पर्यावरण के बा, जौन मानव जीवन के साथे साथे अन्य जीवन के दुर्दशा लिख रहल बा। ई कहल जा सकत बा कि ई दुर्दशा के कारण पृथ्वी के भविष्य अन्हार में बा। पर्यावरण समस्या पूरा दुनिया खातिर चुनौती बन के खड़ा बा। ऐसे में मय दुनिया के देश एकरा प्रति चिंतित बा। सूरज यह संसार के एगो जीवनदायी ग्रह बा। आज के चिकित्सा शास्त्र सूरज के किरण के महाऔषधि मानत बा। बाकी सवाल बा कि सूरज कब तक हमनी के ऊर्जा आ स्वास्थ्य देवे वाला बनल रही। सूरज के किरण कैंसर जैसन भयानक रोग अपना साथे लेके आई और रोग से लड़े के इंसानी क्षमता के कम कर दी। गर्मी बढ़ी और बर्फ पिघल के समुन्दर के जल स्तर बढ़ा दी। समुन्दर के किनारे बसल शहर डूब जाई, इनार कुआं सूख जाई आ रेत के बढ़ोतरी इतना होई कि आदमी के अपन जिंदगी बचावे खातिर जंगल का ओर भागे के पड़ी। यह कल्पना से आदमी कांप जाला। बाकी एमें सूरज के कोनो गलती नहीं है, बल्कि अपना अहंकार में डूबल आदमी के बाजे प्रकृति या पर्यावरण से जम के खिलवाड़ करत बा। जंगल के बहुत तेजी से विनाश कईल जा रहल बा। हवा और पानी में विषैल गैस आ गंदगी छोड़ल जा रहल बा। एकरा बादो आदमी यह से बचे के नहीं सोचत। वातावरण में रेडियोधर्मी किरण और गर्मी घुरल जा रहल बा। जमीन का भीतर लुकाइल संसाधन के खोज में धरती के छाती के छेद के चलनी कईल जा रहल बा। बरिसन से वैज्ञानिक आ समाजशास्त्री लोग प्रकृति के यह दुर्दशा के खतरनाक नतीजा का ओर संकेत करत आ रहल बा। बाकी ए पर केहू ध्यान नहीं खे देत। एकर नतीजा ई हो रहल बा कि धरती पर ऋतु चक्र अपन चाल बदल रहल बा आ कबो सूखा तो कबो बाढ़ के रौद्र रूप देखे के मिल रहल बा। तूफान भूकंप जैसन आपदा रोजे कहीं ना कहीं देखे सुने के मिलत बा। दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत में छेद हो चुकल बा, जौन सूरज के हानिकारक किरण से बचावे वाला आ ओह किरण के धरती तक आवे देला, जौन जीव जंतु खातिर लाभदायक बा। अगर प्रकृति के गोदी में खेले के बा तो ओकरा के संवारे संहारे के पड़ी। प्रकृति और विकास के आंकड़ा 36 के रहल बा। प्रकृति अपन दोहन एगो हद तक बर्दाश्त करेले। विकास के गति में जितना तेजी आइल बा, मनुष्य प्रकृति के छाती के उतने छलनी करत जा रहल बा। मनुष्य प्रकृति के एगो बहुत छोट रचना बा। बाकी विकास के भूख ओकरा के इतना विशाल आ बलवान बना देले बा कि आज अनंत प्रकृति के उ चुनौती देवे लागल बा। प्रकृति के सबसे बड़ वरदान बा जीवनदायिनी वायु। उह वायु में गैस इस तरह से संतुलित बा कि धरती पर रहे वाला हर जीव आ वनस्पति के जरूरत के हिसाब से मिल जाला। बावजूद मनुष्य आ वनस्पति आदि से निकले वाला CO2, CLF, कार्बन और दूसर गैस हवा में घुल के संतुलन बिगाड़ रहल बा। यह कृत्रिम गैस से वातावरण के तापमान बढ़ जात बा। वैज्ञानिक एकरा के ग्रीन हाउस प्रभाव कहे लालो। ई ग्रीन हाउस प्रभाव एगो बढ़न खतरा बन चुकल बा। प्लास्टिक प्रदूषण से उठो, युद्ध करो। कुछ भी न प्रकृति देवी के विरुद्ध करो। मानवता का अस्तित्व बचाने के लिए संसार के पर्यावरण को शुद्ध करो। विज्ञान ऐसन बहुत खोज कैले बा जौन आज अभिशाप बन चुकल बा। ऐसने एगो अभिशाप बा प्लास्टिक। प्लास्टिक शब्द लैटिन भाषा के प्लास्टिक्स आ ग्रीक भाषा के शब्द प्लास्टिकोस से बनल बा। दिन के शुरुआत से लेके रात में बिछावना पर जाए के बेरा तक प्लास्टिक कोनो ना कोनो रूप में कब्जा कर चुकल बा। पूरा दुनिया में प्लास्टिक इतना ज़्यादा फेंकल जा रहल बा कि ओकरा कचरा से पृथ्वी के 4 गो घेरा बन जाए। अपना भारत में 2016 के एगो रिपोर्ट के अनुसार रोजाना 15,000 टन प्लास्टिक के अपशिष्ट निकलत बा, जौन कि दिने दिन बढ़त जा रहल बा। उहवे अगर निर्माण के बात कईल जाओ तो भारत में हरेक साल लगभग 500 मीट्रिक टन पोलोथीन बनेला। उहवे एकर रिसाइकिलिंग 1% से कम होला। वैसे यह समय विश्व भर में हरेक साल प्लास्टिक के उत्पादन 10 करोड़ टन के लगभग होता आ लगभग 4% हरेक साल में बढ़ोतरी होत बा। यह आंकड़ा से प्लास्टिक से भविष्य में होखे वाला दुष्प्रभाव के आकलन लगावल जा सकेला।

भगवान बुद्ध कहले रहस कि एक दिन ऐसन समय आई जब 12 कोस पर एगो दिया जरी। ऐसन में ई बात सच में अमली जामा पहनत नजर आवत बा। हमने अपना मौत के साजो सामान खुदे अपना आसपास सजौले बानी सा। वैसा हूँ हमने पर्यावरण के बर्बाद करे के सब तरीका अपना चुकल बानी सा। चाहे जंगल काटे के बात होखे, भा खाद्य पदार्थ में कीटनाशक के उपयोग, भा उर्वरक के घुलत जहर होखे। प्लास्टिको हमने के जीवन के कोनो हिस्सा से अछूता नहीं है। हमने प्रकृति से मिलल संसाधन के दरकिनार करत प्लास्टिक भा एकरा नियन कोनो और चीज़ के अपना जिंदगी के हिस्सा बना लेले बानी सा। आज ग्लोबल वार्मिंग बहुत चर्चा में बा। ग्लोबल वार्मिंग के असर के चारों ओर ही वायु जलवायु नीति के बहस तय होत बा। एकरा खतरा पर विशेषज्ञ लोग बहुत लमहर समय से हमनी के चेतावनी दे रहल बा। लो पिछला 3 साल के आधार पर कहल जाओ तो संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट पैनल, जौना में दुनिया भर के जानल मानल जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ और वैज्ञानिक लोग बा, लो ओह लोग के 3 गो रिपोर्ट मानवता पर जलवायु परिवर्तन के असर बतावत बा। 6 अक्टूबर 2018 के 1.5 डिग्री तापमान बढ़ोतरी पर जारी एगो विशेष रिपोर्ट में SR1.5 में साफ कहल बा कि यदि दुनिया के बर्बादी से बचावे के बा तो हमनी के अभी मात्र 10 साल समय बचल बा और 2030 तक धरती से हो रहल कुल कार्बन उत्सर्जन में साल 2000 के स्तर पर 45% कार्बन कटौती करे के पड़ी। वैज्ञानिक लोग के कहनाम बा कि मौसम में तीव्र उतार चढ़ाव से फ्लू घनी आबादी में पहुंच रहल बा और 2050 तक बरहन शहर में इन्फ्लुएंजा के मामला 20 से 30% बढ़ी। धरती पर हवा में और 50 तरह के प्रदूषण हो रहल बा। यूनियन कार्बन डाई के भोपाल कारखाना से रिसल जानलेवा मिथाइल आइसोसाइनेट जैसन गैस एमे घुलत रहेला। हथियारन के होड़ में एटमियो विस्फोट के चलते हवा में रेडमी एक्टिव तत्वन के साथे साथे धरतियों के तापमान बढ़ेला, जवन आगे चली के हमनी खातिर बहुत भारी पड़े वाला बा। ममिला खाली हवा तक नहीं खे बल्कि धरती पर आच्छादित वन के सबसे बड़ मकसद पर्यावरण संतुलन के डगमगाए से बचावल बा। ईंधन और बड़का बड़का भवन बनावे में जंगल के बलि दे देहल तो इंसान के अपन आविष्कार ह। जंगल के जरिए प्रकृति वायुमंडल में समाइल कार्बन डाइऑक्साइड के सोख लेले बा कि इंसान जंगल पर टांगी आरी चला के बचाव के रास्ता बंद कर देले बा। जवन गाछ वृक्ष हवा में समाइल अधिका कार्बन डाइऑक्साइड सोखे खातिर जन्मले रहे ओकरा के काट के जरा देहल जा रहल बा आ उ खुद CO2 छोड़त बा। जंगल में अब हरियरी के जगह कंक्रीट के जंगल देखाई देवे लागल बा। जंगल के दुर्दशा के कारण सार्वभौमिक बा और चिंतनीय बा। एगो और बढ़न कारण बा कचरा, खास करके औद्योगिक एटमी कचरा, जौन सवाल खड़ा करत बा कि एकरा के दफनावल कहाँ जाव। एकरो व्यवस्था इंसाने के करे के पड़ी। विश्व मंच पर्यावरण संरक्षण खातिर कितना आगे आई तो भविष्य के गर्भ में बा, काहे कि कोरोना जैसन हालात से सब देशन के आर्थिक झटका लागल बा। खैर जिम्मेदार देशन के रवैया देख के ये अंदेशा लागत बा कि यह निरंतर प्रक्रिया में धरती पर बसल सभ्यता खुद के खत्म तो ना कर ली, काहे कि जनसंख्या में जितना तेजी से वृद्धि हो रहल बा ओकरा के देखत लागत रहल बा कि जंगल के कटाई और बढ़ी, हवा में प्रदूषण और बढ़ी, पानी में गंदगी और बढ़ी आ रेडियो धर्मी विकिरणों और बढ़ी। यह परिस्थिति में साफ पानी, साफ हवा, साफ भोजन इंसान के पहुंच से बाहर हो जाई तो का हमनी के ऐसन धरती पर लमहर समय तक रह पाए। हालांकि वैज्ञानिक लोग के कहनाम बा कि पर्यावरण विनाश के कर परिकल्पना कितनों भयावह काहे ना होखे, सतर्कता और इच्छा शक्ति से काम लिया तो लाइलाज नहीं खे। बाकी एकरा खातिर दुनिया भर के सामूहिक प्रयास करे के पड़ी। मेरठ के किसान से लेके इथोपिया के गृहिणी और अमेरिकी नागरिक से लेके अफ्रीकी आदिवासी तक के साथ लेवे के पड़ी। सबसे पहला काम तो ओजोन के कवच के बचावे खातिर क्लोरो फ्लोरो कार्बन के उत्पादन रोके के होई। ऊर्जा के प्रदूषणकारी संसाधन के जगह सौर ऊर्जा के पवन ऊर्जा जैसन लाभदायक साधन पर ध्यान देवे के पड़ी। मोटर गाड़ी आ कारखाना में प्रदूषण के उपचार के नियम के कड़ाई से पालन करे के पड़ी। जंगल के कटाई रोक के बढ़न स्तर पर विश्वव्यापी अभियान चला के नया पेड़ पौधा लगावे के पड़ी। जंगली जीव के शिकार रोके के पड़ी। कचरा डाले पर पाबंदी लगावे के पड़ी। इस सब बढ़न श्रम साध्य खर्चीला काम बा। बाकी आवे वाला पीढ़ी खातिर इस सब करही।

वाह, बहुते नीमन संगीत रहल ह। फिल्म कब होई है गवनवा हमार से रहे। गाना के बोल रहे आइल बरखा बहार। आवाज रहे आशा जी आ उनकर साथी लोगिन के। साचे गाना के बोल तो बहुते निक रहे कि आइल बरखा बहार। हमनियों के इहे तो इंतजार बा कि कहिया आई बरखा बहार। तनिका सा पड़ता आ फिर कहाँ भोरा जाता। फिर उहे घामा देह जरावे वाला। बरखा बहार आवे भाई, हमनियों के तनी ऐसी खुश होई जा, झूमी जा, गाई जा, तब नु जाके लागी कि हाँ बुनी पानी के दिन आइल बा। तो चली अबे नीक संगीत के बाद हम बात करी आपन भोजपुरिया जनजीवन से जुड़ल कुछ ऐसन शब्द के बारे में जो उनकी बहुत ही कम आज के समय में सुने के भेटाला। एगो शब्द सुन ले हो हम शायद रोआ सभे अपन पुरनका लोगन से, ईर्खा। पहले लोग घमंड में चूर के कहत रहन कि ईर्खे में रहेला। उहे तरह अगर कोनो गरम चीज के बात होकत रहे तो तातल आ ठंडाइला पर सेराइल कहल जात रहे। साचे शब्द बहुत छोट रहे लेकिन इतना मीठ लागत रहे पहिलका सब शब्द कि कान के सुनला पर लागत रहे कि कतना नीक नीक शब्द के उच्चारण होता। लेकिन धीरे धीरे लोग शहरीकरण के चलते पुरनका शब्द भोराइल जात रहे। ले हमनिन के ठेठ भोजपुरिया आजो ओतने निक लागेला सुने में। ऐसे शहरीकरण के फेरा में मत पड़ी सब है, आजो अपन शब्द के उही तरह याद राखी आ बोल चाल के भाषा में जरूर लाए। चलिए अब इसने नीमन नीमन बात के साथ हम फेरू से आए, लेकिन आज अब हमार जाए के बेरा भगल ते मंगल कामना के जोरे रोआ सबन स्वस्थ सानंद रही। हमार अब मनेराउर विनीता के निहोरा बा के हमरा के जाए देवल जाओ। प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कार्यक्रम आरती। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब आपको जानकारी दिए चलते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की।

6:20 पर, ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल सुन सकते हैं 6:30 पर, और खेती गृहस्थी का प्रसारण किया जाएगा शाम 7 बजे।

0: श्रोताओं, ये संक्षिप्त जानकारी थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आगे आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी
3: प्रणाम। ई आकाशवाणी पटना है। अब रघु आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। श्री अमरनाथ जी के यात्रा आज सुख के सवेरे से जम्मू कश्मीर के पहलगाम आ बालटाल रास्ता से शुरू हो गई बा। पूरा देश से लाखन श्रद्धालु 57 दिन तक चले वाला यह तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करी हैं। श्रद्धालु करीब 3,888 मीटर के ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेवे आ प्राकृतिक रूप से बनल बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करे खातिर जालेन। ई यात्रा 28 अगस्त के रक्षाबंधन के दिन खत्म हुई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करे के सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करा दहल गई बा। ई सुविधा 1 जुलाई से शुरू होके 6 महीना तक लागू रही। भोजपुर जिला के जवैनिया गांव में एक बार फेनू गंगा के कटाव से बेघर भइल 57 गो परिवारन के बिलौटी गांव के लगे हर एक परिवार के 3-3 डिसमिल जमीन आवंटित कइल गइल बा। प्रशासन के तरफ से एकरा पहिले 70 गो परिवार के जमीन देहल गइल रहे। अभी तक ले 127 गो गंगा के कटाव से पीड़ित परिवारन के फेन से बसे खातिर जमीन देहल जा चुकल बा। एकरे साथे 40 गो परिवार के घर बनावे खातिर पीएम आवास योजना के तहत पहला किस्त के पैसा भी देहल जा चुकल बा। सीतामढ़ी पुलिस रीगा थाना इलाका में ग्राहक सेवा केंद्र में भइल लूटकांड के खुलासा करत 5 गो आरोपित के गिरफ्तार कइले बिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बेरा एगो अपराधी पुलिस पर गोली चला के भागे के कोशिश कैलस। पुलिस तुरंत जवाबी कार्रवाई कैलस जेमे बदमाश के गोर में गोली लागल बा। पकड़ल गइल बदमाशन के लगे से 2 गो देसी कट्टा, 1 गो देसी पिस्टल, 2 गो कारतूस आ लूट में इस्तेमाल भइल 1 गो मोटरसाइकिल बरामद कइल गइल बा। वे समस्तीपुर में भी वैशाली समस्तीपुर जिला के बॉर्डर पर बलीगांव के लगे एगो बदमाश अमन कुमार के पुलिस एनकाउंटर में गोर में गोली लागल बा, जेमे बदमाश घायल हो गइल बा। अमन अपना आउरी साथी के साथे अपराध की योजना बनावत रहे तले पुलिस के सूचना मिलल। पुलिस के पहुंचला के बाद बदमाश अमन पुलिस पर गोली चला दहलस। जवाब

भी कार्रवाई में अमन के गोर में गोली लागल बा। पुलिस अमन के साथे एकरा एगो दोस्त के भी पकड़ ले बिया। भागलपुर जिला के भवानीपुर थाना इलाके के NH 31 पर बालू से लदल एगो हाईवा ट्रक बेकाबू होके सड़क के अरिया बनल झुग्गी झोपड़ी वाला घर पर पलट गई। यह घटना में 2 गो बच्चा सहित 3 जने के मौत हो गई बा, जबकि 12 से अधिका लोग घायल बा। घायल लोग के बढ़िया इलाज खातिर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भेजल गई बा। मौसम विभाग आज प्रदेश के अधिकतर इलाका में हल्का बरखा होके के संभावना जतौले बा। ये दौरान तेज हवा चले और ठनका गिरे के चेतावनी दहल बा। ये बीच बीतल 24 घंटा के दौरान मुंगेर सदर में सबसे अधिका 20.2 मिलीलीटर बरखा दर्ज कल गई बा। मौसम विभाग के अनुसार बेतिया, मोतिहारी, सिवान, सारण, भोजपुर और रोहतास सहित उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम बिहार में मौसम गर्म रहे के संभावना बा। कहीं कहीं हल्का फुल्का बूंदाबांदी भी हो सकेला। सिवान के पंचबेनिया गांव में सड़क पार करे के बेरा गोड से विकलांग आदमी के अनजान गाड़ी धाका मार दहलस, जेमे वो आदमी के मौत हो गई बा। मरे वाला आदमी पंचबेनिया गांव के हरिशंकर बैठा हुए। अररिया जिला के जोकीहाट थाना इलाका के सिसौना गांव में पुलिस छापेमारी करके 105 ग्राम स्मैक आ भारी मात्रा में शराब के साथ 2 गो अपराधी के गिरफ्तार कैले बा। मुंगेर मंडल कारा में बंद एगो कैदी के संदिग्ध हालत में मौत हो गई बा। पुलिस के शुरुआती जांच में कैदी द्वारा आत्महत्या करे के बात सामने आयल बा। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना इलाका के लक्ष्मीनिया गांव में जमीन विवाद में एगो युवक के हत्या हो गई बा। हत्या से नाराज लोग NH 327E जाम करके विरोध प्रदर्शन कई लोग। समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय थाना इलाका के चकलोमान गांव से पुलिस लूट के मामला में 7 बरिस से फरार चल रहल एगो आरोपित के पुलिस गिरफ्तार कैले बिया। एकरे साथे आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।

फिल्म बादल का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जसपिंदर नरूला और उदित नारायण की आवाज़ में, समीर के बोल, अनु मलिक का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अर्पण से लता मंगेशकर की आवाज़ में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई है और आनंद बख्शी के बोल हैं।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आगे आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: सदस्यानां कृते आयोजितस्य द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य अद्य कोलकातायाः न्यू टाउन कन्वेंशन केन्द्रे लोकसभाध्यक्षेन ओम बिरला इत्यनेन विधिवत् उद्घाटनं विहितम्। उद्घाटन समारोहात् प्रागेव लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला वर्याय गार्ड ऑफ ऑनर इति राष्ट्रिय सम्मान प्रणामः समर्पितः। उद्घाटन सत्रं संबोधयन् लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला प्रावोचत् यत् विधायकानां कृते विधि निर्माण प्रक्रियायाः तन्त्रस्य च गभीर ज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन गुजरात कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा पश्चिम मध्य प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टेः रक्त संचेतना प्रसारिता। अनेनैव सह छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश विदर्भ क्षेत्रेषु झंझावातस्य विद्युत प्रपातस्य चापि संभावना प्रकटीकृता। विभागानुसारं श्वः यावत् उत्तर प्रदेश बिहार आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक जम्मू कश्मीर लद्दाख तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना पूर्वोत्तर राज्येषु अपि अत्यधिक वृष्टिः भवितुं शक्या। फीफा विश्व चषके कनाडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। इतिहासे चतुर्वारं प्रागुपान्त्य चरणे गन्तुं स्विट्जरलैंड दलम् आगामी मंगलवासरे अस्मिन्नेव स्थाने कोलंबिया अथवा घाना देशेन सह स्पर्धिष्यति। अन्यस्मिन् द्वन्द्वे स्पेन देशेन कैलिफोर्नियायाः लॉन्स एलेंजिस क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 चक्रे ऑस्ट्रेलिया दलं 3-0 इत्यनेन पराभूय राउंड ऑफ 16 चक्रे स्वस्थानं सुरक्षितम्। अपरत्र कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे प्रवृत्ते द्वन्द्वे पुर्तगाल देशः अपि क्रोएशिया दलं 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्राप्तवान्। मंगलवासरे डलास नगरे राउंड ऑफ 16 चक्रे पुर्तगाल दलं स्पेन देशं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः। आकाशवाणी दिल्ली
1: हम हैं आकाशवाणी पटना से, आइए सुनिए ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल।

0: नमस्कार अर्चना बहन,
1: नमस्कार प्रिया बहन।
0: तब
1: जय
0: बताइए।
1: गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन के भोग लगे संत करे सेवा।
0: क्या बात क्या बात। और ये जो जो आरती है ये सुबह से ही गाया जा रहा है, क्योंकि आज है बहुत ही खास दिन, बहुत ही पावन दिन, क्योंकि आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की कृष्ण पिंगल संकष्टी गणेश चतुर्थी है। और कहते हैं ना कि गणेश जी के बारे में कि आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, कोई भी शुरुआत करते हैं, तो श्री गणेश होता है, यानी कि शुरुआत होती है भगवान कृष्ण, भगवान गणेश की पूजा अर्चना से।
1: एकदम सही कहने रहुआ। और हमने कहा जे देवी देवता घोराई लजा, तो ई कुल से आपन दुख कम होखेला और सुख संपत्ति बढ़ेला। यही कामना से हमने के पूजा पाठ करी लजा। और देवी देवता के हमने कहा गणेश भगवान के जितना भी देवी देवता बारे हैं।

0: उनका में सबसे श्रेष्ठ मानी ला जा। काहे कि गणेश भगवान बुद्धि के देवता मानल जाले आ गणेश आज तक जो कहवे कहनी कि संकष्टी गणेश चतुर्थी वा, तो गणेश भगवान के विघ्नहर्ता बुद्धि समृद्धि असफलता के दाता भगवान मानल जाला। गणेश भगवान के कृपा प्राप्त करे खातिर ई व्रत, आज के दिन व्रत भी लोग करेला।
1: हाँ, व्रत तो करते ही है सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को। जैसे कि हमने कहा शुभ कार्य में क्या हुआ, पूजा, विवाह, गृह प्रवेश या नए कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा के बिना नहीं की जाती।
0: अब देखिए कोनो नया काम आदमी शुरू करेला तो सबसे पहले भगवान गणेश के,
1: और साथ ही साथ वे माता लक्ष्मी के साथ भी पूजे जाते जो बुद्धि और समृद्धि के अद्वितीय संगम का प्रतीक है।
0: माता के साथ, लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी के पूजा के एगो सबसे बड़का कारण ही वह कि गणेश जी बुद्धि के देवता मानल जाले, और धन
1: वैभव
0: धन वैभव जे भी बा तो बुझी कि अगर बुद्धि के बिना बा तो सब बेकार बा,
1: सब बेकार, वो कहीं भी छिन्न भिन्न हो जाएगा।
0: एक तो यही से इन दोनों कोई के साथ है पूजल जाला कि धन संपत्ति रहो लेकिन बुद्धि विवेक के साथ में रहो।
1: अर्चना बहन, और संकष्टी गणेश चतुर्थी जो ये है, ये इसे कहा जाता है मान्यताओं के अनुसार कि एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने कठिन परिस्थितियों के कारण अपना राज्य, धन और परिवार खो दिया था। अपनी पीड़ा का समाधान खोजने के लिए उन्होंने महर्षि लोमश से मार्गदर्शन प्राप्त किया। ऋषि ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने की सलाह दी। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा, भगवान गणेश की पूजा की, व्रत कथा का श्रवण किया और चंद्रमा को अर्घ अर्पित करने के बाद व्रत का पारण किया। कहते यानी कि जब जिन लोगों ने व्रत किया है तो
0: उनका जरूर चंद्रमा फायदा भेल।
1: हाँ, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही वो पूर्ण होता है। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उनके सभी संकट दूर कर दिए तथा उनका खोया हुआ राज्य, परिवार और सम्मान उन्हें पुनः प्राप्त हो।
0: प्रिया बहन, संकष्टी शब्द संस्कृत के संकट शब्द से बनल बा, जेकर अर्थ कष्ट, बाधा और विपत्ति। ऐसे संकष्टी चतुर्थी एगो पावन व्रत है जेके की गणेश भगवान के कृपा से जीवन के संकट विघिन और नकारात्मक कर्म से दूर करे वाला मानल जाला। और प्रत्येक माह के संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश के एगो विशेष रूप से पूजा कर जाला। लेकिन ई जे रवा व्रत आज जे बा, एकर विशेष महत्व बा। और गणेश मंत्र के ए दिन लोग श्रद्धा पूर्वक व्रत करके गणेश मंत्र के जाप भी
1: करते हैं।
0: और व्रत के कथा सुने ले जे कथा रुआ कहनी, और चांद देखला के बाद व्रत के पारण भी करे ले। और भगवान गणेश के तकहले गिलवा बुद्धिदाता विवेक विघ्न के नाश करे वाला के रूप में पूजल जाले। ई भगवान शिव आ माता पार्वती के पुत्र हुए और कार्तिकेय के भाई भेले।
1: तो ये जब बात हमने की आज का दिन बहुत ही मंगलमय है, और जो भी आप पूजा अर्चना कर रहे होंगे, आरती दिखा रहे होंगे, तो भगवान गणेश से शुरुआत करें और गणेश के बाद भगवान शिव की बात ना हो
0: तो अब उनकर पिता भेले।
1: पिता तो क्यों ना एक शिव भजन सुनते हैं हम।
0: चलिए सुनी जा।

0: बहुत ही प्यारा ये शिव भजन सुना मनोरंजन ओझा की आवाज़ में। समय रहा तो इनसे और भी हम लोग गीतों का आनंद जरूर लेंगे।
1: एकदम।
0: और
1: देखिए
0: चूंकि
1: कितना निमन गीत रहे,
0: बहुत
1: हमरा
0: बहुत
1: तो बहुत निमन लागल शिव भजन रहे।
0: हमें
1: और
0: सिर्फ नहीं अच्छा लगा, हमारे श्रोताओं ने भी इसका ज़रूर आनंद लिया होगा। और भजन होता ही ऐसा है कि उसे सुनने के बाद एक अजीब सा सुकून मिलता है। वही सुकून की जहाँ तक बात है तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जब आज के दौर में जो युवा पीढ़ी है वो अपनी पढ़ाई लिखाई करने के साथ ही साथ कुछ अपने काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उन्हें ये लगता है कि हम किसी जॉब में ही चले जाएं।
1: देखिए
0: लेकिन
1: ढेर लोग सोचेला कि नौकरी भेट जाए
0: हाँ
1: आ ओहू में सरकारी नौकरी भेट जाए, लेकिन ई बताई कि सब केहू के तो भेटल संभव नहीं है। और कई ऐसा काम बा कि जेकरा की करके हम अपन व्यवसाय के रूप में अगर कर ली तब बुझी कि ओकरा जैसा आमदनी के कोनो साधन भी नहीं है।
0: ये तो बात सही है। और ये जो सोच है, मान लें कि किसी के अंदर वो हुनर है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद से अगर किसी व्यवसाय को करते हैं तो उसे ज़्यादा वो बेहतर कर पाते हैं बनिस्बत किसी के अंडर में काम करना।
1: अब देखिए कहीं रोवा नौकरी कर रहा बानी तो दरमहे भेटी,
0: हाँ,
1: लेकिन आपन काम बा तो जितना मेहनत करब उतना आमदनी बा।
0: जितना मेहनत करो और अपने अनुसार उन सारी चीज़ों को
1: और रोवा
0: लेकर के चले,
1: अपन काम के मालिक भी रोवा अपने बानी।
0: और मालिक के साथ ही साथ आपको कुछ नया करना है तो किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब इस तरीके की

0: बात है, तो ये जो हुनर है, हुनर की जो बात कर रहे हैं हम, क्यों ना इसी से जुड़ी हुई बातें हम करें और ये वार्ता सुने। युवाओं में कौशल विकास, वार्ताकार हैं कुमार रविराज।
1: चलिए सुनी जा। भारत के युवाओं में कौशल का विकास करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विभिन्न कार्यों में सक्षम बनाकर देश में रोजगार लाना है। इस योजना को MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जाता है। इस मंत्रालय का मुख्य काम युवाओं के लिए अवसरों का निर्माण करना है, ताकि इन अवसरों में वे अपना पसंदीदा मार्ग चुनकर अपना भविष्य उस मार्ग की सहायता से बना सके। इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। युवाओं में कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत सरकार युवाओं को प्रशिक्षित कर नौकरी मुहैया कराएगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार कम से कम देश के 24 लाख युवाओं को विभिन्न तरह के तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना चाहती है, जिसका कुल शुल्क 1500 करोड़ रुपए का है। देश के युवाओं में कई ऐसे टैलेंट भी है जो है तो कारगर, किंतु किसी वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे स्किल को लोगों के बीच लाने और औपचारिक तौर पर सर्टिफिकेशन करने के लिए भी इस योजना का प्रयोग किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पाया गया सर्टिफिकेट समस्त भारत में मान्य होगा। अतः एक न्यूनतम शुल्क के साथ सरकार युवाओं को प्रशिक्षित कर ये सर्टिफिकेट देगी, जिसके आधार पर उन्हें निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त हो सकेगी। इस योजना के तहत युवाओं को उत्कृष्ट स्तर का अनुभव लोगों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि उन्हें उनके चयनित क्षेत्र संबंधित हर तरह का ज्ञान हो सके। युवाओं में कौशल विकास योजना की विशेषताएं। कौशल विकास योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। इस योजना के तहत कराई जाने वाली सभी तरह की ट्रेनिंग बहुत ही संजीदगी से कराई जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए विभिन्न योग्यताओं की आवश्यकता होगी। अतः किसी भी तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने से पहले योग्यता की जांच की जाएगी। सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम का निर्वहन सेक्टर स्किल काउंसिल यानी SSC द्वारा किया जाएगा। इस काउंसिल के अंतर्गत प्रशिक्षित करने वाले सभी लोग NOS और QPOS के नियमों का निर्वहन करेंगे। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं में आवश्यक कार्यकर्ताओं को देखते हुए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान आदि के अंतर्गत नौकरी दी जाएगी। एक बार प्रशिक्षण खत्म हो जाने पर प्रशिक्षित युवाओं को ₹8,000 और कोर्स कम्प्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट सभी जगहों पर मान होगी, किंतु इसे प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण के अंत में लिए जाने वाले परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। इस योजना की एक विशेष बात यह है कि इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर भारतीय युवाओं के लिए आदर्श के रूप में है। अतः युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन को चुना गया है। कौशल विकास योजना में नामांकन के लिए योग्यता। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले लाभार्थी को भारत का नागरिक होने की आवश्यकता है। अतः भारत के अंदर किसी भी राज्य का नागरिक इसका लाभ उठा सकता है। आवेदक को लॉन्च हुए स्कीम में से किसी एक स्कीम के तहत 1 साल के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है। आवेदक को अपने द्वारा चयनित तकनीकी क्षेत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अलावा भी आवेदक को बाकी बचे स्कीम में से एक स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है। एक बार ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद सरकार द्वारा तय किया गया रिवार्ड दे दिया जाएगा। सारा रिवार्ड एक ही बार में दिया जाएगा। कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रक्रिया। इस योजना के अंतर्गत सफलता का प्रमाण पत्र और रिवार्ड पाने के लिए कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। जिस विद्यार्थी आवेदक ने इस योजना के तहत एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाया होगा, उसे इस योजना के किसी एक ट्रेनिंग पार्टनर संस्था के अंतर्गत एक कोर्स करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद वह संस्था जो सरकार की इस योजना में काम कर रही है, आवेदक से उसकी सभी जानकारी लेकर SDMS में संचित रखेगी। SDMS का वेबसाइट लिंक भी है। इस प्रक्रिया के बाद स्टैंडिंग पार्टनर की सहायता से चयनित प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। सेंटर में दिए गए अध्यापकों द्वारा ट्रेनिंग के दौरान हर छात्र

0: छात्रों को हर कदम पर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण समाप्त हो जाने के बाद विद्यार्थियों को उनके कौशल के आकलन के साथ उनके कार्य क्षेत्र के सरकारी डिपार्टमेंट से कोर्स समाप्ति का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इस सर्टिफिकेट के प्राप्त कर लेने के बाद NSDC द्वारा विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में कैश रिवार्ड किसी सरकारी एजेंसी द्वारा दिया जाएगा। कौशल विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न कोर्स, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का कौशल होता है, तो विभिन्न लोगों की सोच भी भिन्न होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के अंतर्गत विभिन्न तरह के कोर्स शामिल किए हैं। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 34 विभिन्न कार्य क्षेत्रों का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी। कई युवा पैसे की कमी की वजह से अपना मनपसंद कोर्स नहीं कर पाते और इस वजह से उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण अवधि। कौशल विकास योजना के अंतर्गत कई छोटे बड़े आवश्यक और कारगर कोर्स को शामिल किया गया है। विभिन्न कोर्स को पूरा करने के लिए विभिन्न समय अवधि की आवश्यकता होती है, अतः इस योजना के अंतर्गत भी सरकार ने विभिन्न कोर्स के लिए विभिन्न समय अवधि तय की है। आमतौर पर कई ऐसे कोर्सेज मौजूद हैं जिनकी समय अवधि 3 से 6 महीने की रखी गई है। इसके अलावा कुछ कठिन कोर्स के लिए अधिकतम 1 वर्ष का समय तय किया गया है। कौशल विकास योजना से लाभ। भारत सरकार भारत को निर्माता के तौर पर वैश्विक केंद्र बनाना चाहती है और यह तभी संभव है जब यहाँ पर निर्माण कार्य करने जैसी प्रतिभा मौजूद हो। इसके लिए सरकार ने MSDE मंत्रालय के अधीन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया है। इस योजना की सहायता से कई बेरोजगार और अप्रशिक्षित युवाओं को मुफ्त में विभिन्न तरह के कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रशिक्षण पूरे हो जाने पर इन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी स्कॉलरशिप के तौर पर और साथ ही प्रशिक्षित क्षेत्र में सरकार द्वारा नौकरी दी जाएगी। इससे युवाओं को जीविका उपार्जन में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को एक्सपर्ट की मदद प्राप्त होगी, जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। इस योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसकी सहायता से भविष्य में वह अन्य कर्म स्थलों में भी रोजगार प्राप्त कर सकेगा। यह सर्टिफिकेट भारत के सभी राज्यों में मान्य होगा। प्रशिक्षण की न्यूनतम समय सीमा 3 महीने और अधिकतम समय सीमा 1 वर्ष की है, अतः अधिकतम 1 वर्ष में ट्रेनिंग पूरी करा दी जाएगी और नौकरी प्राप्त हो सकेगी। इस योजना की सहायता से कौशल केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो सरकार के विभिन्न युवा कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने में सरकार की मदद करेंगे। बहुत से युवा जो कौशल न होने की वजह से बेरोजगार हैं, उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए सक्षम बनाया जाएगा। इसकी सहायता से सरकार को अन्य योजनाओं को सफल बनाने के लिए कुशल युवाओं का सहयोग प्राप्त होगा। जितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें इन योजनाओं में काम पर लगाया जाएगा।
1: तो अभी हम लोगों ने बहुत ही अच्छी जानकारी ली कुमार रविराज से, युवाओं में जो कौशल विकास को लेकर के जो हमारी सरकार योजनाएं बनाई हैं और जिन योजनाओं को धीरे धीरे जन जागरूकता के तौर पे लोग जानने लगे हैं और साथ ही साथ इसको अपने कौशल विकास के लिए इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
2: और देखिए कि हर एक आदमी में कुछ ना कुछ हुनर तो जरूर होखेला और वही गुण के अपन हुनर के ये योजना के जरिए लोग निखार सकता और एक खातिर कितना निमन से बतौलन की प्रशिक्षण भी लोग के भेट रहल बा
1: और ये बहुत
2: प्रशिक्षित भैला पे बुझी की सर्टिफिकेट भी मिल रहल बा। तो सर्टिफिकेट जब ये सब मिल रहल बा तो एकर तो सगरो मान्यता भी बा और मान्यता वाला सर्टिफिकेट अगर रहुआ हाथ में बा तो कहीं भी रहुआ अपन व्यवसाय शुरू कर सकता
1: है। क्योंकि अगर आप में कुछ हुनर है तो बहुत बार क्या होता है कि आप उतने मंझे हुए नहीं रहते हैं, तो जब वो ट्रेनिंग मिलती है आपको और बेहतर बनाया जाता है। तो ये कितनी अच्छी सोच है हमारे सरकार की कि आप अपनी जो व्यवसाय को शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले आप अपने हुनर में और भी फिनिशिंग लाएं, हाँ। जिससे कि वो बेहतर से बेहतर हो सके।
2: घर में ऐसे ही लोग करेला ओजा जा करके सीख करके तो आओ बढ़िया से करी तो बढ़िया से होगी तो आमदनी भी होगी,
1: आमदनी होगी और
2: जीविकोपार्जन के जे कहल गेल बा तो जीविका खातिर तो सबके हु काम करिए रहल बा,
1: सभी सभी
2: तो
1: सभी
2: ऐसे निमन साधन और का होगी।

0: और घर परिवार को चलाने के लिए अपने जीवन में वो एक कहते हैं ना कि सरलता पूर्वक अपने जीवन यापन करने के लिए कमाना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे
1: और
0: वो
1: सबसे निमन बात बा कौशल विकास के जरिए अगर वो अपन व्यवसाय कर रहल बानी तो अपन घर द्वार छोड़ के कहूँ जाए के जरूरत नहीं के।
0: ये एक बहुत बड़ी समस्या जो शुरुआत से रही है कि लोगों को किसी भी कार्य के लिए अपने राज्य अपने शहर को छोड़ कर के पलायन करना पड़ता था। लेकिन आज के इस दौर में आधुनिक युग में जो हमारा भारत जिस तरीके से विकसित है, तो इसमें आप अपने राज्य में रह करके अपने घर में रह करके आराम से अपने घर परिवार के बीच में रह करके अपने उस हुनर का इस्तेमाल करके आप व्यवसाय कर पाते हैं और लाभ भी उठा लेते हैं। तो ये जो दौर बदला है, सोच बदली है, इसे और भी ज़्यादा हम मुमकिन कर पाएंगे जब इन सारी बातों को हम और विशेष तौर पे जान सकेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ सपने देखे हैं, तो अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आप ज़रूर इन योजनाओं का लाभ उठाएं।
1: अब देखिए ढेर लोग के तो जानकारी भी ना रहेला कि कौन योजना बा कैसे ओकर लाभ उठावल जाए। तो देखिए कि कितना निमन फरिया फरिया के बतौलन कि रजिस्ट्रेशन करा ली ओकरा बाद फार्म भर करके रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन भइला के बाद रुआ प्रशिक्षण प्राप्त करी। प्रशिक्षण लेला के बाद में वो हुनर के वो कौशल के अपन जीविका के साधन बना ली।
0: बना ले,
1: और वो खातिर तो बुझी कि जे जरूरी कागज रहेला वो तो सब कोई जानेला
0: हाँ
1: कि भारत के नागरिक हो कहीं के चाहिए।
0: बहुत
1: और
0: ज़रूरी है।
1: आधार कार्ड पैन कार्ड जे कहल जाला तो ये सब कागज तो चाहबे
0: तो
1: करी।
0: अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी इन सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अभी तक बनवाया नहीं है, तो ज़रूर बनवा लें, क्योंकि ये जो सपने हैं ना उसकी उड़ान में ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं।
1: अब
0: तो
1: देखिए खाली सपना देखना से नानू हो क्यों
0: हाँ,
1: तो सपना के जोरे कुछ मेहनत
0: साकार
1: करब।
0: करने के लिए तो आपको अपने कर्म करने ही होंगे, और ये तो ज़रूरी है ही। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी इस वार्ता के माध्यम से हमें मिली। कुमार रविराज को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि वादा किया था कि हम लोकगीतों की ये जो लड़ियां हैं ना, ऐसे ही हम अपने इस
1: हाँ तो
0: कार्यक्रम
1: काले रही
0: में
1: कि गीत सुनवाई तो सुनवाई
0: मनोरंजन ओझा की आवाज़ में सुनते हैं प्यारा सा लोकगीत।

0: बहुत ही प्यारा
1: बिल्कुल
0: ये हमने लोकगीत सुना मनोरंजन ओझा की सुमधुर आवाज में, और आगे समय रहा तो ज़रूर सुनेंगे, लेकिन अभी चौपाल की घड़ी यहीं समाप्त करने को हुई। थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे खेती गृहस्थी की।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: खेती गृहस्थी में हमने का फिर हाजिर बानी जा बतियावे खातिर और देखी कि किसान भाई के आमदनी कैसे बढ़ी ए विषय पर तनी आज हमने के चर्चा कर लेता नहीं जा। किसान भाई खेती के काम करेले, बाकी हर घड़ी खेती के काम ना रहेला, तो खाली समय में मशरूम उत्पादन, मोती पालन, मछली पालन जैसन काम करके आपन आमदनी के बढ़ा सकेले और मशरूम के उत्पादन करके कई किसान भाई आपन आमदनी बढ़ा रहल बाड़े। मशरूम एगो कवक है जे कि सरल कार्बनिक पदार्थ से उगेला। ई प्रोटीन, विटामिन और खनिज के एगो बेहतरीन स्रोत है जेकर उपयोग भोजन, सूप और औषधि में कैल जाला। एकरा के बोलचाल के भाषा में कुकुरमुत्ता या खुम्बी कहल जाला। मशरूम के कई प्रकार बा, बटन, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम आदि। बटन मशरूम सबसे लोकप्रिय, आसानी से भेटे वाला किस्म है जे कि उज्जर रंग के छोट छतरी जैसन होखेला। ऑयस्टर मशरूम के ढिंगरी भी कहल जाला और ई देखे में सीप जैसन होखेला। मिल्की मशरूम अधिक गर्मी में उगावे वाला प्रजाति है जेकर रंग दूधिया होखेला।
1: मशरूम के बारे में जो कि बहुत ही मतलब इतना लजीज लगता है ना ये जब हम खाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि खाने से पहले थोड़ा मेहनत भी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात है कि इसकी खेती के लिए बहुत बड़े ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती। आप छत पे, आप घर में, आप कहीं भी जो ऐसी जगह आप चुन ले, छोटे से जगह पर भी आप आराम से,
0: यही से ही कहा जाला कि बिन खेत के खेती।
1: हाँ,
0: तो घर में अगर छोटा जगह बाए, वो छोटा रूम बा, ओहू में रवाई खेती कर सकता नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मशरूम

0: मशरूम के खेती खातिर भूसा के कीटाणु रहित गरम पानी में एकरा के उसीन लीं, खौला लीं खूब निमन से, और फार्मेलिन चाहे बाबिस्टिन के घोर में भिंजा के छाया में सुखा लीं। साफ पॉलिथिन बैग में भूसा के भर लीं और एगो परत बिछा लीं भूसा के, ओकरा बाद मशरूम के बिया डाल दीं।
1: वही
0: भूसा आ बिया के परत बनावत बैग
1: बिल्कुल
0: के ऊपर के तक ओकरा के बांध दी कस के।

0: डाल दी।
1: वही
0: भूसा अभी आके परत बनावत बैग
1: बिल्कुल।
0: के ऊपर के तक उकरा के बांध दिए कस के।
1: और
0: और
1: वही भूसे को कीटाणु रहित करने के लिए इसे गर्म पानी में उबालें या फॉर्मलिन और बावेस्टीन के घोल में भिंगोकर छाया में इसे सुखाएं। तो इस तरीके से जो ये मशरूम है ना, उसे आप बहुत ही आसानी से, मतलब आसानी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, जितनी आप लागत बाकी सब फसलों को उगाने में आपकी लागत लगती है और आमदनी की जहाँ तक बात होती है, तो कहते हैं ना कि इसमें आप बहुत कम लागत में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
0: बैग के अंधेरा में रख दी, हवा रहित कमरा में रख दी। लगभग 15 से 20 दिन में भूसा में से सफ़ेद जाल फैल जाला। और बटन मशरूम उगावे खातिर तो जाड़ा के मौसम की ज़रूरत होकेला। बटन मशरूम जब उजर जाल होकर फैल जाए तो ऊपर से हल्का फुल्का माटी या खाद के परत लगावल जाला। जाल फैलला के बाद बैग में से छोट छोट मशरूम निकले लगेला। ज़रूरत के हिसाब से ओकरा के तोड़ ली और लगभग 45 से 60 दिन के भीतर पूरा फसल तैयारी हो जाला। और लगभग 30 हज़ार से 50 हज़ार के शुरुआती निवेश के जोड़े ई रोआ व्यवसाय के शुरू कर
1: कर
0: सकत है।
1: सकते हैं।
0: और बाजार में एक निमन गुणवत्ता वाला अगर मशरूम बा तो बुझे कि 100 से 150 रुपये प्रति किलो बिकाला।
1: और ये कहते हैं ना, बहुत सारे लोग जो मतलब नॉनवेज नहीं खाते, उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। लोग जैसे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तो आप मशरूम ज़रूर खाएं, क्योंकि हम अपनी मेहनत करें और हमें मुनाफा हो, आपकी प्लेट तक पहुँचे, आप खरीदे उसे जितनी ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि जो किसान भाई अभी सिर्फ सोच ही रहे थे कि किसी और व्यवसाय की शुरुआत की जाए, तो मुझे लगता है कि अब ये जो हमारी बातचीत सुनने के बाद ज़रूर वो मशरूम का व्यवसाय करना शुरू करेंगे।
0: और देखिए कि 30% से 55% तक शुद्ध मुनाफा।
1: हाँ
0: तो जब इतना मुनाफा वाला काम बा तो काहे ना कही जाओ।
1: बिल्कुल, करना चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि आपने तो शुरू कर ही दिया इसकी खेती, मैं भी ज़रूर अब शुरुआत करूँगी इसकी।
0: एकदम शुरू कर दी ही।
1: और शुरुआत करने
0: और
1: के
0: देखिए
1: साथ
0: अधिक जानकारी खातिर किसान विकास केंद्र बा तो उजा जा करके विशेष जानकारी भी
1: कृषि
0: प्राप्त कर।
1: केंद्र या सरकारी संस्थान से जाकर के संपर्क करें और विशेष जानकारी ले लें। वहीं जानकारी के साथ ही साथ, जब मन बना ही लिया है, तो एक और मन जो आपका शुरू से बना हुआ है कि लोकगीत हमारे इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं और आप सुनते हैं और आपका मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन ओझा की आवाज़ में सुनते हैं प्यारा सा लोकगीत।

0: देखिए हर एक महीना खातिर गीत कितना निमन रहे।
1: इसीलिए तो इसको 12 मास गीत कहते हैं। और बहुत ही प्यारा ये सुनाया मनोरंजन ओझा ने, वक्त रहा तो इनसे और भी सुनेंगे,
0: एकदम सुनल जाएगी।
1: अब जैसे हम तो खेती गृहस्थी में हमने खेती की बात की और साथ ही साथ जो हमारे खेतिहर भाई बहन हैं वो इसके साथ ही साथ पशुओं का भी पालन जरूर करते हैं। किसी भी किसान के घर में आप जाएं और पशु न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
0: लेकिन एगो बात यह हो बा प्रिया बहन कि पशु रह ले तो उनकर देखभाल भी जरूरी है, और हमनी के जैसे दुख तकलीफ होखेला बीमारी होखेला वैसे ही इनको बीमारी होखेला। तो हमनी के तो अपन दुख तकलीफ बता दी ही ला जा, लेकिन ये बेजुबान केकरा बताई हैं, तो इनका खातिर तो विशेष ध्यान रखे के पड़ेगा,
1: बहुत ही जरूरी है।
0: और कुछ हमनी के यही विषय पर एगो विशेष वार्ता सुन ली जा। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग, वार्ताकार बारे डॉक्टर अजीत कुमार।
1: तो चलिए सुनते हैं।
2: भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन है। शहरीकरण होने के कारण कृषि योग्य भूमि कम होते जा रहे हैं, लेकिन देश की जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है, जिसके चलते लोग पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। पशुपालन के द्वारा किसानों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता के पौष्टिक आहार जैसे दूध मांस

आदि मिलता है। पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाकर किसान स्वयं को एवं अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। पशुओं के दूध उत्पादन की क्षमता, प्रजनन क्षमता, कार्य करने की क्षमता एवं मांस उत्पादन क्षमता पर पशुओं को दिए जाने वाले आहार के अलावे पशुओं में होने वाले जीवाणु, विषाणु एवं परजीवी जनित रोगों का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि पशुपालक को पशुओं में होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी हो तो पशुपालक तुरंत रोकथाम के उपाय को अपनाकर एवं पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने पशुओं के उत्पादक क्षमता में होने वाले अत्यधिक हानि को कम कर सकते हैं एवं अपने पशु को भी अकाल मृत्यु से रोक सकते हैं। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग एक अत्यंत संक्रामक विषाणु जनित रोग है। खुरपका मुंहपका रोग, जिसे अंग्रेजी में फूट एंड माउथ डिजीज या FMD के नाम से जाना जाता है, यह एक संक्रामक विषाणु जनित अर्थात वायरस के द्वारा होने वाला रोग है जो प्रायः खुरबटे या कह सकते हैं खुरफटे पशुओं अर्थात जिस पशु का खुर दो भाग में बटा होता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर तथा अन्य जंगली पशुओं को काफ़ी प्रभावित करता है। खुरपका मुंहपका रोग काफ़ी तेजी से फैलने वाला एक बीमारी है जो किसी भी उम्र के पशुओं एवं उनके बच्चों में हो सकता है। इस रोग को खुरहा, भंजहा, FMD, चमसिया, चपचपिया, आभा आदि क्षेत्रीय नामों से भी जाना जाता है। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का कारण एक अत्यंत सूक्ष्म प्रकार का RNA विषाणु है जो पिकोरना समूह के अंतर्गत आता है। इस विषाणु के 7 प्रकार और अनेकों प्रकार हैं, जिसमें AOC, Asia 1, Asia 2 एवं SAT मुख है। हमारे देश में AOC एवं Asia 1 विषाणु के प्रकार के द्वारा खुरपका मुंहपका रोग होता है। इस रोग के विषाणु का प्रसार संक्रमित पशु के सांस एवं रोगी पशु का जूठा आहार या चारा तथा पानी के ग्रहण करने पर दूसरे पशु के शरीर में इस रोग के विषाणु प्रवेश कर रोग पैदा करता है। संक्रमित पशु को देखरेख करने वाले मनुष्य के शरीर एवं कपड़ों के द्वारा भी इस रोग के विषाणु का फैलाव होता है। इस रोग के होने में नम वातावरण, पशु दुर्बलता, संक्रमित पशु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, आसपास के क्षेत्रों में रोग का प्रकोप का इतिहास आदि सहायक कारक जो रोग के तेजी से प्रसार में मदद करता है। खुरपका मुंहपका रोग से प्रभावित पशु में सर्वप्रथम तीव्र बुखार 104 डिग्री से 105 डिग्री फारेनहाइट तक होता है। संक्रमित पशु के जीभ, मसूड़ों, नथनों, होठों, तालू आदि पर छाले हो जाते हैं। पशु खाना पीना कम कर देता है। छाले होने के कारण संक्रमित पशु के मुंह से झागदार लार गिरता है एवं होठों से चपचपाहट की आवाज आती है। खुरों के बीच भी छाले हो जाने के कारण पशु लंगड़ा कर चलता है और वार वार अपना पैर जमीन पर झटकता है। इस रोग के होने के कारण दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में अत्यधिक कमी हो जाती है। गर्भधारण किए हुए पशुओं में गर्भपात होने की पूरी संभावना इस रोग के होने के बाद होती है। थनों पर छाले पड़ जाने पर दुधारू पशुओं में थनैला रोग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। खुरपका मुंहपका रोग की पहचान पशुपालक प्रभावित पशु के मुंह एवं खुरों के बीच घाव एवं अन्य लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। चूंकि यह एक विषाणु जनित छुआछूत का रोग है जिसका कोई सटीक इलाज नहीं है, अतः रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। पशुओं को देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। मुंह में बने घावों के साफ करने में 2% पोटासियम परमैंगनेट के घोल या बोरिक एसिड एवं ग्लाइसरीन या बोरेक्स एवं नारियल तेल या शुद्ध एलम के घोल आदि का उपयोग करना चाहिए।
मुंह के छाले पर बोरोग्लिसरीन, हल्दी युक्त घी या मक्खन लगाने से मुंह में चिकना हो जाता है।

0: है और पशु को चबाने में आराम होता है। खुरों एवं थनों पर बने घाव को 1% पोटासियम परमैंगनेट या फिनाइल के घोल से धोना चाहिए एवं फिर जीवाणुनाशक स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 2-3 बार धोना लाभदायक होता है। खुर के घावों को शीघ्र ठीक करने के लिए पशु को 2% तूतिया के घोल से धोना चाहिए तथा पैर में पड़े कीड़े के होने से बचाने के लिए आइवरमेक्टिन नामक सुई का 0.2 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर वजन के आधार पर त्वचा में लगाना चाहिए। मुंह, पैर अथवा थन के घावों के इलाज के लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अथवा एनरोफिलोक्सासिन की सुई 5 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर वजन के आधार पर मांस में 3 से 5 दिन तक पशु चिकित्सक के सलाह पर लगवानी चाहिए। अति तीव्र अवस्था में बुखार की दवा तथा कभी कभी सीरा मार्ग से पानी भी चढ़ाया जा सकता है। बी कम्प्लेक्स और खनिज मिश्रण सहायक दवा के रूप में देने से रोग को कम समय में ठीक किया जा सकता है। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाले लार एवं पैर के घाव के संसर्ग में आने वाले वस्तुओं, पुआल, भूसा आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ देना चाहिए। रोगी पशुओं को खाने में नरम एवं आसानी से पचने वाले आहार जैसे हरा चारा या घास देनी चाहिए। मुंह में घाव रहने के कारण पशु को कड़ा आहार देने पर खाने में दर्द होता है, अतः ऊर्जा युक्त द्रव्य आहार जैसे गुड़, छोया का घोल पिलाना फायदेमंद साबित होता है। जिस जगह पर रोगग्रस्त पशु को रखें वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दें। रोगग्रस्त दुधारू पशुओं से दूध निकालने के बाद दूध दुहने वाले भी अपने हाथ एवं मुंह को साबुन से धो लेना चाहिए। रोगग्रस्त पशु का इलाज सदैव पशु चिकित्सक से सलाह लेकर करनी चाहिए। इस रोग में यद्यपि व्यसक पशुओं की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन रोग के ठीक होने के बाद पशु के शरीर पर के बाल एवं खुर बड़े बड़े हो जाते हैं। पशु के धूप सहने की क्षमता घट जाती है एवं दुधारू पशु का दूध उत्पादन रोग होने के पहले के जैसा नहीं हो पाता है। प्रभावित पशु स्वस्थ होने के उपरांत भी महीनों हाफते रहता है। इन सब कारणों से पशुपालक को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। चूंकि यह एक विषाणु जनित रोग है जिसकी कोई विशिष्ट चिकित्सा नहीं है, अतः इस रोग के इलाज की अपेक्षा बचाव पर ज़्यादा ध्यान देकर खुरपका मुंहपका रोग से पशुपालक अपने पशुओं को बचा सकते हैं। टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव के लिए सर्वोत्तम उपाय है। खुरपका मुंहपका रोग से बचाव हेतु बछड़े को सर्वप्रथम 4 माह की उम्र पर प्रथम टीका लगवानी चाहिए। फिर उसके बाद प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर टीका फरवरी एवं सितंबर के महीने में लगवाते रहें। अगर बगल वाले गांव में खुरपका मुंहपका रोग फैलने की सूचना मिले तो अपने पशुओं को बाहर चरने के लिए नहीं जाने देना चाहिए। इसके अलावे बीमार पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देनी चाहिए। इस रोग से प्रभावित क्षेत्र से पशु को नहीं खरीदना चाहिए। पशुपालक पशुशाला को सदैव साफ सुथरा रखनी चाहिए। संक्रमित पशु को पूर्ण आहार देना चाहिए जिससे खनिज एवं विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से पशु को मिलती रहे। इस बीमारी से मरे पशु को इधर उधर ना फेंकें, बल्कि जमीन में गहरे गड्ढे में मृत पशु को डालकर मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देनी चाहिए और समय समय पर पशु चिकित्सक से परामर्श लेते रहना चाहिए।
1: तो अभी हम लोगों ने बहुत ही उपयोगी वार्ता सुनी। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग के बारे में वार्ताकार डॉक्टर अजीत कुमार ने बहुत ही समझा करके बताया कि क्या कुछ करना चाहिए ऐसे अगर रोग पशुओं को हो जाए तो। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि हम समय रहा तो ज़रूर आपको लोकगीतों का आनंद करवाएंगे, तो सुनते हैं मनोरंजन ओझा की सुमधुर आवाज़ में प्यारा सा बरसाती गीत।

0: वाह,
1: बहुत ही प्यारा है ये। हमने
0: हाँ
1: बरसाती गीत सुना और ये बरसात जो शुरू हुई है ऐसे ही बरसते रहे ताकि गर्मी से निजात मिले, तो मनोरंजन हो जाए को सारे लोकगीतों के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्चना बहन अब जाने का समय हो गया है क्योंकि
0: हाँ तो
1: कल
0: जाई
1: आना
0: तबे लो
1: है।
0: फेन आई।
1: नमस्कार अर्चना बहन।
0: नमस्कार प्रिया बहन।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल, ये आकाशवाणी पटना है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर हुई चर्चा। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हडको के बीच समझौता। 1,00,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के MOU पर हुए हस्ताक्षर। प्रदेश में 29 औद्योगिक परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। 6,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। और राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर जीविका समूहों और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक हाट बाजार विकसित करेगी। अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में 18 राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों ने भाग लिया। मंत्रालय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। उन्होंने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत 2,76,000 ग्रामीण स्थानीय निकाय शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों को आयोग की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उन्हें प्रदर्शन आधारित अनुदानों का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम बनाना था। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हडको के बीच 1,00,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक वित्त पोषण का समझौता हुआ है। पटना के संकल्प सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के शहरी विकास के

इतिहास में ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होने वाला कदम बताया। उन्होंने बताया कि लगभग 3 लाख एकड़ क्षेत्र में टाउनशिप विकसित किए जाएंगे और किसानों को लैंड पुलिंग के माध्यम से इस परियोजना का भागीदार बनाया जाएगा। वहीं मुआवजे के लिए आवेदन करने वाले किसानों को 30 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप में आधुनिक सड़क नेटवर्क, पेयजल, हरित क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिससे लोगों को बेहतर आवास और विश्व स्तरीय शहरी जीवन उपलब्ध होगा। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्याडा की परियोजना समाशोधन समिति ने 29 नई औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के लिए सिकंदरपुर, हथुआ, फारबिसगंज, लोहट, बरियारपुर और फतुहा समेत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 38 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, प्लास्टिक उत्पाद निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन समेत अन्य औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में लगभग 6000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, साथ ही 3000 लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की भी संभावना है। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड में 385 एकड़ भूमि पर नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस परियोजना के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दरभंगा के रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया है। इस कमेटी में केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, इक पदाधिकारी और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। यह समिति चीनी मिल को फिर से चालू कराने के उपायों का आकलन करेगी। राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर जीविका समूहों और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक हाट बाजार विकसित करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नाबार्ड और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर हाट विकसित होने से ग्रामीण उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा, जिससे जीविका दीदियों और किसानों की आय बढ़ेगी तथा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मंत्री ने अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक हाट विकसित करने, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने तथा महिलाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। राज्य सरकार 20 जुलाई से 1100 श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ यात्रा का आयोजन करेगी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत इस यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा का शुभारंभ पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन से होगा। श्रद्धालु सोमनाथ धाम के दर्शन के बाद 26 जुलाई को पटना लौटेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने हावड़ा और नटेसर के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह ट्रेन 5 जुलाई से 30 सितंबर तक सप्ताह में 3 दिन चलेगी। यह ट्रेन आसनसोल, जसीडीह, झाझा, किहुल, शेखपुरा, अस्थावा, बिहार शरीफ, नालंदा और राजगीर के रास्ते चलाई जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान राज्य के उत्तर और दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेर सदर में सबसे अधिक 20.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। केंद्र सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सीतामढ़ी पुलिस ने रीगा थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र से हुई लूटकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान एक अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देशी कट्टे, 1 देशी पिस्तौल, 2 कारतूस और लूट में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उधर समस्तीपुर और वैशाली जिले की सीमा पर स्थित पंगरा थाना क्षेत्र के बलीगांव के पास पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने बताया कि पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें अमन कुमार को पैर में गोली लगी है। उन्होंने बताया कि मौके से एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। कोसी प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कुमार आशीष ने सहरसा जिले के सलखुआ थाना में पदस्थापित 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पुलिसकर्मियों पर दलालों के माध्यम से केस प्रभावित करने का आरोप है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि मौके से एक दलाल को भी गिरफ्तार किया गया।
2: ये व्यक्ति सतीश कुमार जो है बहुअरवा गांव का रहने वाला है, जो इसके लैपटॉप पर विभिन्न केसों की फाइल मिली है। ये डायरी लिखने का भी काम करता है और डायरी दूसरे लोगों को बेचने का भी काम करता है। तो इस प्रकार से पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा था, जिसको तत्काल गिरफ्तार किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत इस पर केस दर्ज कर करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ इसके सांठगांठ में काम करने वाले 10 ऐसे IO जिनकी फाइल मिली है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर करके लाइन हाजिर किया गया है। उन पर विभागीय कार्रवाई चलेगी और उनको कठोरतम सजा हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे।
0: भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH31 पर एक बालू लदा हाईवा ट्रक और नियंत्रित होकर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों पर पलट गया। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भेजा गया है। इधर कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के भिट्ठी गांव के पास ई रिक्शा पलटने से रिक्शा चालक और एक बच्ची की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थित बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 265 प्रशिक्षु महिला सिपाहियों की पासिंग आउट परेड गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परेड के दौरान प्रशिक्षु महिला सिपाहियों ने आकर्षक मार्च पास्ट, अनुशासित कदम ताल और उत्कृष्ट ड्रिल का प्रदर्शन किया। समारोह में पुलिस उप महानिरीक्षक हरकिशोर राय और पश्चिम चंपारण के पुलिस

0: अधीक्षक राजेश कुमार सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भोजपुर जिले के जवनिया गांव में गंगा के कटाव से प्रभावित 57 परिवारों को बिलौटी गांव के पास 3-3 डिसमिल भूमि का आवंटन किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से अब तक कुल 127 गंगा कटाव पीड़ित परिवारों को पुनर्वास के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसके साथ ही 40 पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त भी उपलब्ध करा दी गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसौना गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 105 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक और भारी मात्रा में शराब के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर मंडल कारा में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया गांव में भूमि विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। समस्तीपुर जिले के तलसिंहसराय थाना क्षेत्र के चकलोमान गांव से पुलिस ने लूट के मामले में 7 साल से फरार चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। दरभंगा में पिछले दिनों एक आभूषण दुकान से लूट के मामले में एसटीएफ की टीम ने मधुबनी जिले के पंडोल से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 14 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लखीसराय जिला आज अपना 33वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर हुई चर्चा। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हडको के बीच समझौता। 1,00,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के MOU पर हुए हस्ताक्षर। प्रदेश में 29 औद्योगिक परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। 6,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। और राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर जीविका समूहों और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक हाट बाजार विकसित करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कटिहार जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
2: पूर्ण टीकाकरण अभियान में कटिहार जिले ने विशेष उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग की HMIS रिपोर्ट के अनुसार जिले ने 87% टीकाकरण कवरेज के साथ राज्य के शीर्ष 10 जिलों में स्थान बनाया है। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि मनसाही प्रखंड ने 126% उपलब्धि के साथ जिला में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि बारसोई ने 102 और आजमनगर ने 101% उपलब्धि दर्ज की है।
3: कटिहार जिले ने टीकाकरण में अच्छा प्रदर्शन किया है।

0: से जो तीन ब्लॉक है, मनसाही, बारसोई और आजमनगर, उन लोगों ने विशेष अच्छा प्रदर्शन किया है। जो अपने लक्ष्य जो ईएलए होता है उससे भी ज्यादा लोगों का इन्होंने टीकाकरण किया है। तो हम लोग आगे भी इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं लोगों को समुचित तरीके से मिले, यही हम लोग का प्रयास है।
1: जिले के पीएम श्री विद्यालयों में पढ़ रहे दिव्यांग बालिकाओं को अब केंद्र प्रायोजित योजना के तहत विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। जिले के 23 पीएम श्री विद्यालयों में नामांकित छात्राओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
2: कटिहार जिला अंतर्गत 23 पीएम श्री विद्यालय हैं जिनमें अध्ययनरत दिव्यांग छात्र छात्राओं को विशेष भत्ता देने का इस शैक्षिक सत्र से प्रावधान किया गया है। इसके लिए हम लोगों ने पीएम श्री विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूची बनाने का निर्देश दिया है।
1: जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने बताया कि 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त छात्राएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। मनिहारी प्रखंड के धुरियाही मरगाहा में गंगा किनारे कराए गए कटावरोधी कार्य का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के मामले में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल ने कार्य को मानकों के अनुरूप बताते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त एप्रोन का पुनर्स्थापन करा दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं।
0: विभाग स्तर से एक विशेष टीम गठित करवा रहे हैं जो सारे बिंदुओं पर, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज हो चाहे जैसे इश्यूज हो, विभाग स्तर की एक टीम, उच्च स्तरीय टीम आकर के इसकी जाँच करेगी और इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: कटिहार के जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 450 से अधिक सरकारी कर्मियों का स्थानांतरण किया है। इनमें समाहरणालय, विकास भवन, अनुमंडल एवं प्रखंड कार्यालयों के अलावा स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, ICDS और पंचायती राज विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानांतरण निर्धारित मानकों और कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है।
0: लगभग 450 के आसपास कर्मियों का हम लोगों ने ट्रांसफर किया है और जिसमें स्वास्थ्य विभाग के, ICDS के, पंचायत के लोगों का किया गया है ट्रांसफर और इसमें जिला स्तर पे अलग अलग की रैंकिंग कराई और उसके बाद उस रैंकिंग के आधार पर उनसे प्रेफरेंस लेकर ट्रांसफर किया गया है और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है।
1: कटिहार बारसोई रेलखंड के अंतर्गत कटिहार सोनौली और कटिहार कुरेठा के बीच लगभग 30 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण का पहला चरण पूरा हो गया है। रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा सफल हाई स्पीड निरीक्षण के बाद इस रेलखंड पर तेज गति से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। मंडल रेल प्रबंधक किरेंद्र नारा ने बताया कि परियोजना के दूसरे चरण का कार्य दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।
3: ये एक्चुअली प्रोजेक्ट जो है दो प्रोजेक्ट है, टोटल 64 किलोमीटर का है और इसका कंप्लीशन टारगेट रखा हुआ है कि इसी साल का दिसंबर तक, हो सकता थोड़ा बहुत मतलब एक्सटेंड होगा लेकिन टारगेट जो है वो मतलब इस साल का ही है। अभी कुल 30 किलोमीटर 50% हो गया है।
1: राज्य सरकार के निर्देश पर गढ़वेली पंचायत सरकार भवन में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री एवं कला एवं संस्कृति और खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने किया। उन्होंने कहा कि महिला हितैषी ग्राम पंचायत थीम के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और पंचायत स्तर पर जन समस्याओं के त्वरित समाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई और नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
4: अभी आप सुन रहे थे कटिहार जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने को हैं और ये वक्त है फिल्म संगीत सुनने का। कार्यक्रम के साथ हम उपस्थित हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ जया।

मैंने प्यार किया इस फिल्म में आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा को। राम लक्ष्मण ने संगीत तैयार किया था और असद भोपाली ने बोल लिखे थे।

चोर मचाए शोर, इस फिल्म का गीत सुनिए। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में गीत और संगीत रविंद्र जैन की।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। लता मंगेशकर की आवाज़ में है ये गीत, वर्मा मल्लिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई है।

शोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रोटी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल।

इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से मेरे यानी जया के साथ। इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम।

इस कार्यक्रम में ये आवाज है गुलाम अली की, इनसे हम सुन रहे हैं गजल।

0: इसी के साथ संपन्न हुआ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी से, आगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा

0: दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधार कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
3: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के

0: संविधान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। IMD के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। IMD ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन

पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: proposals worth 52,000 crore rupees to enhance combat readiness. Government to seek explanation from Meta on Instagram ads promoting child sexual abuse. France reports nearly 9,000 deaths during record-breaking heat wave last week. And in FIFA World Cup, Australia to take on Egypt in a round of 32 match at Arlington in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हुसूलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दी है। हुकूमत ने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को फरोग देने वाले इंस्टाग्राम एड से मुतालिक मेटा से वजाहत तलब की है। फ्रांस ने गुज़श्ता हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्म लहर के दौरान तकरीबन 9,000 अमवात की खबर दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया है कि पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी की मुसलसल सरपरस्ती के सबब सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंध आबी मुआहिदे पर भारत का मौकफ अटल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए और मोतबर तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत तर्क कर देनी चाहिए। तीस्ता नदी के जामे बंदोबस्त और बहाली के मंसूबे पर जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में मंसूबों के लिए भारत की तरक्याती इमदाद बाहमी तौर पर मुत्तफिका रोडमैप पर मबनी है, जिसका बाकायदगी के साथ जायजा लिया जाता है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की बरामदात के हदफ को हासिल करने की तरफ गामजन है। सालाना बरामदात की 15% बरामदात पहली सैमाही में ही दर्ज की जा चुकी है। आज नई दिल्ली में तिजारती बोर्ड की मीटिंग में खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इसके लिए अशिया की बरामदात को $440 बिलियन से तकरीबन $530 बिलियन जबकि खिदमात की बरामदात को तकरीबन $421 बिलियन से तकरीबन $470 बिलियन तक बढ़ाने की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की बरामदात से मुतालिक हिकमत अमली मजबूत ज्यादा जामिया नुक्ता नजर पर मबनी है, जिसमें हर रियासत, जिला और तिजारती हलका को यकसा तौर पर अहमियत हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रूस से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे पर होंगे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि जनाब मोदी इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे और उनकी असल मसरूफियात जकार्ता में होंगी। अलबत्ता जनाब मोदी वहां के एक सकाफती और तारीखी शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। जनाब टंडन ने कहा कि दौरे के दूसरे मरहले में वो इस महीने की 8 से 10 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया में होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वो तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस महीने की 10 से 11 तारीख तक न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। मशरकी उमूर के सेक्रेटरी ने कहा कि न्यूजीलैंड का उनका दौरा 40 वर्षों में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वजीर आजम जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे और नजर सानी शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इसके बाद वो राजस्थान के बालोतरा जाएंगे, जहां वो तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए की मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। कल गुजरात के दौरे के दौरान भारत के सेमी कंडक्टर मिशन के जिम्न में एक अहम इकदाम में वजीर आजम सनांद में

0: पीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर के कल पुर्जों की तरतीब और तजुर्बाती मरकज ओएसएटी का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा इब्तदाई चार प्रोजेक्टों में शामिल हैं, जिन पर 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सच्चाई, दयानतदारी और आला तरीन पेशा वराना मेयारात के मुताबिक काम करना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि जमहूरियत उस वक्त परवान चढ़ती है जब प्रेस अपनी साख बरकरार रखते हुए अवाम को बाखबर रखने का काम करता है, सवाल उठाता है और बाशऊर अवामी मुबाहसे की हौसला अफजाई करता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज एलनिनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और इसके असरात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत एलनिनो की वजह से मुल्क के बाज़ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और मुमकिन खुश्क साली की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। उन्होंने वजारत ज़राअत और तमाम मुतल्लिका वजारतों को चौकस रहने और रियासती हुकूमत के साथ राब्ते में रहने के लिए कहा है ताकि किसानों को मुनासिब फसलों के बारे में मशवरा दिया जा सके। दिफाई साजो सामान की हुसूलियाबी की कौंसिल डीएसी ने दिफाई अफवाज की जंग की तैयारी को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए मालियत की कैपिटल हुसूलियाबी की तजावीज को मंजूरी दे दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मंजूर शुदा तजावीज फौज, बहरिया और फजाइया की हरबाबंदी की सलाहियतों में इजाफा करेगी। भारतीय फौज के लिए एंटी अनमैंड एरियल व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आकाश तरंग की खरीदारी के लिए मंजूरी दी गई है, जो फौज की सफबंदियों को मौसर एंटी यूएवी तहफ्फुज फराहम करेगा। कौंसिल ने मैन पोर्टेबल टैंक मुखालिफ गाइडेड मिजाइल निजाम, दरमियानी दूरी तक जमीन से फजा में वार करने वाले मिजाइल हथियारों के निजाम, बहुत कम दूरी तक वार करने वाले फजाई दिफाई निजाम, टैंकों के लिए फाल तहफुजाती निजाम और जेट बेस्ड कामिकाजे ड्रोन निजाम की खरीदारी को भी मंजूरी दी है। भारतीय बहरिया के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, नेवल शिपबॉर्न अनमैंड एरियल निजाम की खरीदारी और इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन निजाम के लिए जमीनी टेस्टिंग सहूलत के क्याम की मंजूरी दी गई है। उधर भारतीय फजाइया के लिए फिक्स्ड विंग बेस्ड हाई ऑल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट की खरीदारी की मंजूरी दी गई है, जो भारतीय फजाइया के लिए मुस्तकिल इंटेलिजेंस, निगरानी, मवासलात और रिमोट सेंसिंग के काम अंजाम देगा। आकाशवाणी दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मेटा की एक टीम ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की वजारत के हुक्काम के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम्स फीचर के रोल आउट के मामले पर उन्हें समन नोटिस भेजने के बाद हुई। जराए ने बताया कि वजारत के हुक्काम ने इस फीचर से मुतालिक सरकार की तशवीश के बारे में उन्हें आगाह किया। जराए ने मजीद कहा कि यूजर नेम्स फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने के लिए वक्त की हद 3 दिन दी गई है, इसलिए मेटा मुकर्रा वक्त के मुताबिक अपना हतमी जवाब पेश करेगा। इसी दौरान जराए ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णो ने वजारत के हुकाम को हिदायत दी है कि वो इंस्टाग्राम के उन एड्स के मामले पर मेटा को समन भेजें जिनमें भारत में बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल के मवाद को फरोग दिया जा रहा है। वजारत इस मामले पर मेटा से वजाहत तलब करेगी। हुकूमत ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से बीएटी, बीएमएस, इपोकायन और लॉसिजी ऐप्स हटाने के अहकाम जारी किए हैं। ये इकदाम सिक्योरिटी के मद्देनजर किया गया है। ये कदम इन इल्जाम के बाद उठाया गया है कि इन एप्लीकेशंस को ई रिक्शा समेत ई व्हीकल्स को रिमोट के जरिए नाकारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस तहकीकाती कौंसिल बीएआरसी को न्यूज और गैर न्यूज दोनों तरह के प्रोग्रामों में उस वक्त तक टेलीविजन रेटिंग्स की इशात को रोकने की हिदायत दी है जब तक कि टेलीविजन रेटिंग्स पॉलिसी 2026 के तहत उसके लाइसेंस की तजदीद नहीं हो जाती। नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियू ने आज कोहिमा में खेलों के बुनियादी ढांचे के 16 प्रोजेक्टों का वर्चुअल

0: वसीले से इफ्तिताह किया। इनमें खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत 4 और रियासती फंड से चलने वाले 12 प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आला रियो ने सोशल मीडिया पर कहा कि रियासती हुकूमत ने मयारी बुनियादी ढांचा तैयार करके और आलमी मयार की तरबियती सहूलियात फराहम करके खेलों के शोबे को तब्दील करने की खातिर एक तवील मुद्दती हिकमत अमली तैयार की है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने में मदद मिलेगी और नागालैंड और मुल्क का नाम रोशन होगा। पंचायत राज की वजारत ने 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल करने की गरज से आज नई दिल्ली में रियासती पंचायत राज वुजरा की एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पंचायत राज के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने कहा कि 16वें मालियाती कमीशन ने पंचायतों के लिए 80% बुनियादी ग्रांट्स और 20% कारकर्दगी पर मबनी ग्रांट्स की तजवीज पेश की है। वजारत ने कहा कि कमीशन की सिफारिशात के तहत 2,76,000 देही बल्दियाती इदारों का इहाता किया गया है।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: अमली अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत का मुकम्मल सरकारी नुक्ता नजर मुतनवे इनफरादी और इदाराजाती सलाहियतों को यकजा करने पर जोर देता है, जहां इदारे और पेशावर अफराद मुश्तरका कौमी मकासद के लिए अपनी कुव्वत और महारत के साथ तआवुन कर रहे हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तूतापरी आम के किसानों को दरपेश चैलेंजों का मुताला करने के लिए ज़राई तहकीक की भारतीय कौंसिल के तहत एक आला सतही माहरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। यह फैसला मरकजी वजीर के आंध्र प्रदेश के हालिया दौरे के बाद किया गया है, जहां किसानों ने हालिया महीनों में तूतापरी आम की कीमतों में नुमाया कमी के बारे में उन्हें मुतला किया था। फ्रांस ने पिछले महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर के गर्म तरीन हफ्ते के दौरान होने वाली अमवात में तेजी के साथ इजाफे की खबर दी है। पब्लिक हेल्थ फ्रांस के मुताबिक 22 से 28 जून के दरमियान तकरीबन 9,000 अमवात रिकॉर्ड की गईं। यह तादाद गुजश्ता हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 29% ज्यादा है, जिनसे कम अज कम 2,000 इजाफी अमवात का एंदिया मिलता है। एजेंसी ने कहा कि यह आदादोशुमार नामुकम्मल हैं और तवक्को है कि हतमी तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी। पानी की कमी, इख्तलाज कल्ब, गुर्दे की बीमारियों और दिल से ताल्लुक रखने वाली दीगर बीमारियों में मुबतला मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रात में किए गए हमलों के बाद यूक्रेन की फजाई हदूद के तहफ्फुज़ पर जोर दिया है। खबर है कि इन हमलों में 30 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए थे। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर ने राजधानी कीव में रूसी हमलों से होने वाले नुकसानात की तस्वीर शेयर की, जबकि हंगामी और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि बमबारी उसके शहरी बुनियादी ढांचों पर यूक्रेन के तवील दूरी से किए जाने वाले हमलों में जवाबी तौर पर की गई। फीफा वर्ल्ड कप में प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात अमरीका के आर्लिंगटन शहर में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल सुबह मियामी गार्डन्स में अर्जेंटीना का मुकाबला काबोवर्डी से और कंसास सिटी स्टेडियम में कोलंबिया का मुकाबला घाना से होगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, अमरीका, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मराकश, ब्राजील और पैराग्वे पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज सुबह प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबलों में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 जबकि पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन ने अमेरिका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। गुजरात एटीएस ने कलदम दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर्स अब्दुल्ला मोहम्मद उमर के साथ राब्ते में थे। ये अफराद दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद के लिटरेचर का गुजराती जबान में तर्जुमा करने और उसके नजरिए को फैलाने का काम कर रहे थे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज इंडोनेशिया

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हौसलाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दे दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमेरिका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: This is Akashwani. In the weekly program Current Affairs, now we bring you a discussion on...
1: ये आकाशवाणी पटना है, आइए अब सुनिए साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प।
2: हमारे साहित्यिक श्रोता को रानू सिंह का प्रणाम। स्वागत है आप सभी का रेडियो की साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प में। हमारे साहित्यिक प्रेमियों का ये अत्यंत घनिष्ठ साथी है, क्योंकि यह उनके सुख दुख को बराबर बांटता है, उनके साथ हंसता भी है, उनके साथ रोता भी है। जीवन में कई मोड़ पर जब हमें यह अनुभव होता है कि इसके उपरांत जीवन में कुछ भी नहीं, उसी क्षण कोई ऐसा उदाहरण हमारे समक्ष आ खड़ा हो जाता है कि जीने की इच्छा पुनः जीवित हो जाती है। साहित्य प्रेरणा का कार्य करता है, हारे हुए मन में पुनः मेहनत करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए साहित्य से सदैव अपना संबंध प्रगाढ़ बनाने का प्रयत्न करते रहिए, और इस कार्य में हम आपकी सहायता करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। श्रोताओं, आज के संपादकीय में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे एक अत्यंत प्रसिद्ध कहानी, बुद्धू का कांटा, जिसके रचयिता हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक प्रसिद्ध कथाकार, व्यंग्यकार और निबंधकार थे। उनकी कहानी उसने कहा था कि चर्चा हमने पहले भी की है, परंतु आज हम उनकी एक अन्य कथा आपके साथ साझा करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यदि साहित्यिक विशेषता की बात करें तो सर्वप्रथम उनके केंद्र का विषय अत्यंत भावुक और कल्पना से परे होता है। वे घटनाओं को ऐसे वर्णित करते हैं जैसे कोई चित्रकार अपनी कलम लेकर एक एक भाव को महीनता से कागज पर उकेर रहा हो। पाठकों की व्याकुलता ऐसे बढ़ा देते हैं जैसे वो कोई रुकावट देखना सुनना चाहते ही नहीं। वे कहानी के साथ साथ सबको लेकर चलने लगते हैं। हर पाठक उनके विचारों से अपने विचारों को मिलाने के प्रयास में लग जाता है। भाषा इतनी सरल प्रयोग करते हैं कि हर कोई उन्हें पढ़ना पसंद करता है। कहानी में उनके व्यंग्यात्मक प्रयोग पाठकों को जकड़ लेते हैं। भला ऐसे कहानीकार को उनकी रचनाओं को कोई सुनने और पढ़ने से कैसे रोक पाएगा? तो आइए सुनते हैं उनकी प्रसिद्ध कहानी का सारांश रूप। सर्वप्रथम कहानी के शीर्षक की ही चर्चा होनी चाहिए। गुलेरी जी ने एक निर्जीव वस्तु को जो अपना देह त्याग चुकी है उसे इस कहानी के केंद्र में रखा है। भला कोई कांटों को भी अपने स्मरण में स्थान देना चाहेगा? परंतु यह गुलेरी जी की रचनाशीलता है कि उन्होंने उस तिरस्कृत वस्तु को भी किसी के मिलन का द्योतक बना दिया। कहानी मुख्य रूप से केंद्रित है रघुनाथ और शारदा पे। रघुनाथ एक 25 वर्ष का युवक है जो अत्यंत अनुशासित है, समय पे अपना हर कार्य करता है, दोस्तों की भीड़ नहीं परंतु अच्छे दोस्त बना रखे हैं, अध्ययन में अपना समय अधिक व्यतीत करता है, एक उद्यान में हर दिन जाता है। परंतु एक दिन उसका उद्यान में जाना उसके लिए विशेष बन जाएगा, ये उसे भी नहीं पता था। हर दिन की भांति रघुनाथ उद्यान जाकर अपनी पुस्तकों में रमा होता है, परंतु अचानक उसे किसी के कराहने के स्वर सुनाई देते हैं। उस स्वर में व्याकुलता, छटपटाहट और पीड़ा के भाव मिश्रित थे। रघुनाथ उस स्वर को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है। वह देखता है एक युवती दर्द से कराह रही है, उसके पैर में कांटे चुभे हैं। रघुनाथ उसकी सहायता करना चाहता है, परंतु पुरुष होकर स्त्री की सहायता करने में संकोच करता है। शारदा दर्द से व्याकुल है, पैर में चुभे कांटों को निकालने का प्रयत्न

0: भी कर रही है पर वो विफल हो जा रही है। रघुनाथ से शारदा की व्याकुलता देखी नहीं जाती, अतः वह मर्यादा का ध्यान रखते हुए शारदा से कांटों को निकालने की अनुमति लेता है। शारदा की अनुमति के उपरांत वो उस कांटे को निकाल देता है। यह उन दोनों की भेंट का पहला अवसर बनता है और वो कांटा पहला कारण। एक दूसरे से औपचारिक बात कर वे अपने अपने मार्ग चल पड़ते हैं। समय बीतता है, अब वो उद्यान रघुनाथ को शारदा की और शारदा को रघुनाथ का स्मरण कराती है। दोनों ही इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि एक बार पुनः वे एक दूसरे को देख सकें, और वो एक दिन आ जाता है। रघुनाथ और शारदा धीरे धीरे एक दूसरे को जानने और समझने लगते हैं। दोनों के हृदय में प्रेम और मर्यादित सम्मान के भाव जागृत होते हैं, परंतु इस भाव को कोई भी अपने मुख से व्यक्त नहीं करता। यह मौन प्रेम उन्हें और मजबूत डोर में बांधता है। बातों बातों में अनायास शारदा कहती है, उसके पिता के स्थानांतरण की बातें चल रही हैं, यदि ऐसा हुआ तो वे दूसरे शहर चली जाएगी। रघुनाथ ये सब सुनता है परंतु अपने प्रेम को भी व्यक्त नहीं कर पाता। एक दिन शारदा कहती है कि पिता के स्थानांतरण के कारण वो अब दूसरे शहर जा रही है और रघुनाथ को भेंट स्वरूप एक डिब्बे में वही कांटा भेंट कर देती है जो उनके मिलने का कारण बना था। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के स्मरण में डूबे रहते हैं। एक दिन रघुनाथ की माँ उस डिब्बे में पड़े कांटे को देखती है और रघुनाथ से उस कांटे के बारे में प्रश्न करती है। रघुनाथ उसे किसी के स्मरण की बात कहकर टाल देता है। 5 वर्ष हो जाते हैं शारदा और रघुनाथ को एक दूसरे से मिले हुए, फिर भी वे एक दूसरे से परे किसी और को नहीं सोच पाते। एक बार कार्यालय के काम से रघुनाथ उसी शहर पहुंचता है जहां शारदा रहती है। एक पुस्तकालय में वो फिर से मिलते हैं। दोनों ही एक दूसरे के वैवाहिक जीवन से जुड़े प्रश्न करते हैं और उत्तर सुन दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों का विवाह होता है और विवाहोपरांत रघुनाथ शारदा को वही कांटा भेंट करता है जो उन्हें इस वैवाहिक बंधन में बांधता है। श्रोता, ये कहानी एक साधारण सी प्रेम कहानी प्रतीत होती है, परंतु जहाँ क्षण भर में संबंध बदल जाते हैं, छोटी सी दूरी लोगों को दूर कर देती है, वहाँ ये कहानी इन सब परेशानियों और परीक्षाओं को विफल कर देती है। एक कांटा भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही परिकल्पना हो सकती है। संपादकीय के बाद अब आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं विनोद कुमार सिन्हा अपनी कहानी एक बार फिर।
1: और अंततः न्यायालय ने काफी जद्दोजहद और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद ये मान लिया कि यह संबंध अब आगे चलने वाला नहीं और तलाक के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी। कभी अग्नि के साथ फेरे लेकर वैवाहिक सूत्र में बंधे शिशिर और मृदुला मात्र 2 वर्ष से भी कम समय में अलग हो जाएंगे किसी ने सोचा भी ना होगा। कचहरी से बाहर निकल दोनों की नजरें एक दूसरे से एक बार मिली और फिर दोनों अपने अपने परिजनों के साथ 2 पृथक दिशाओं में चल दिए। घर पहुंचने के बाद इस प्रक्रम पर सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन मृदुला बिल्कुल गुमसुम थी। हाँ, उसका अंतर्मन कुछ ज्यादा ही अशांत था। वो सीधी अपने कमरे में चली गई और हठात पलंग पर लेट गई। वो अपने आप को अभी सहज नहीं कर पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चूक कहाँ हो गई जो ये बालू की भीत सदृश दाम्पत्य संबंध भर भरा कर गिर पड़ा। किसी चलचित्र की तरह तमाम घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। आज बरबस उसे निखिल की याद हो आई थी। निखिल उसका पहला प्यार था जो जैसे जान देता था उस पर। आज भी वो पल उसे भुलाए नहीं भूलता जब खून की जांच कराने हेतु वह एक पैथोलॉजिकल क्लिनिक में बैठी थी। डॉक्टर ने खून का नमूना लेने के लिए उसके हाथ में सुई चुभोई नहीं कि सामने बैठे एक अजनबी युवक के मुख से सिसकारी निकल गई। मृदुला ने नजरें उठाकर उसे देखा और मुस्कुरा उठी। युवक झेप गया। वो युवक कोई और नहीं, निखिल था। निखिल से यही उसकी पहली मुलाकात थी। क्लिनिक से बाहर निकलने के बाद औपचारिक बातचीत में निखिल मृदुला की सहेली सुरभि का बड़ा भाई निकला जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत था। मृदुला उन दिनों बीए अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। उसके बाद कई ऐसे अवसर आए कि दोनों एक दूसरे के करीब बहुत करीब आते गए। इस मेलजोल ने कब प्यार का रूप ले लिया कुछ पता न चला, लेकिन जब शादी के बाद चली दोनों ही

परिवार में जैसे भूचाल आ गया। कारण दोनों आपस में सौजातिया नहीं थे। बस मृदुला के पंख कुतरने के लिए उसके पुलिस अधिकारी पिता ने आनन फानन में बेंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहे शिशिर के साथ उसकी शादी तय कर दी। उस दिन खूब रोई थी वो, खूब आरजू मिन्नतें की थी, लेकिन उसके कड़क प्रवृत्ति के पिता ने एक न सुनी और अंततः इसे नियति का खेल समझ मृदुला ने समझौता कर लिया। इसके अतिरिक्त वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, तथा कथित लोकलाज का डर जो था। मृदुला ब्याह कर ससुराल चली आई थी एक ऐसे परिवार में जो पूरी तरह रूढ़िवादी था, जहां तरह तरह की बंदिशें थीं, ये करना है वो नहीं करना है। उसके पिता ने सोचा होगा बेटी का कन्यादान कर उन्होंने गंगा नहा लिया और उनकी तथाकथित आन बान और शान भी रह गई, लेकिन ये जरा भी नहीं सोचा कि बेटी के उन तमाम सपनों अरमानों का क्या होगा जो उसने बचपन से अपने मन में संजोए थे। खूब पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करने, अपने पांव पर खड़े होने के सपने, एक ऐसे जीवन साथी पाने के सपने जिसके सानिध्य में वो जिंदगी की तमाम ऊंचाइयों को छू सके। लेकिन मृदुला के लिए अब सब कुछ एक ख्वाब था और लंबी घूंघट के अंदर अपनी नियति पर आंसू बहाने के सिवाय वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। पति के कमाऊ नहीं होने का नतीजा था, छोटे मोटे खर्च के लिए भी वो सास ससुर पर निर्भर थी और इसीलिए अभी हाथ की मेहंदी भी पूरी तरह मिट नहीं पाई थी कि चारों ओर से जैसे आदेश और निर्देश की बौछारें होने लगी, बहू ये करो बहू वो करो। बिना किसी को कोई जवाब दिए चुपचाप वह रात दिन घर के कामों में लगी रहती, फिर भी बात बात पर डांट भी सुननी ही पड़ जाती थी। इसी बीच शिशिर का रिजल्ट क्या खराब हुआ, उसका ठीकरा भी उसी के सर मढ़ा गया, बहू का पांव ही ठीक नहीं। सासू माँ ने बस साफ शब्दों में कह दिया अब हम नहीं चला सकते तुम्हारी गृहस्थी, बहुत कमाए होंगे पिताजी ने तुम्हारे, अपने खर्च के लिए भी हर महीने रुपये मंगा लिया करो। उस दिन पहली बार कुछ सहमे स्वर में मृदुला ने अपनी इच्छा जताई थी, माँ जी मैं पढ़ी लिखी हूँ, आपकी अनुमति हो तो कोई नौकरी का प्रयास करूँ। लेकिन सासू माँ के एक ही जवाब ने वो रास्ता भी बंद कर दिया। ये कोई बात हुई क्या, इस घर की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती समझी। सुनकर खून के घूंट पीकर रह गई थी मृदुला। इस लगातार शारीरिक श्रम और मानसिक तनाव ने उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया, उसका दहकता सौंदर्य मध्यम पड़ने लगा। एक दिन अकस्मात मृदुला के पिता उससे मिलने को आ गए, संयोगवश उस वक्त वह घर के फर्श पर पोछे लगा रही थी। झट हाथ धोकर अपने हालात को भरसक छिपाती वो पिता के पास आ खड़ी हुई, लेकिन पिता ने सब कुछ भांप लिया, कहा तू तो बिल्कुल आधी हो गई रे बिटिया, ये कहाँ ब्याह दिया तुझे मैंने बेटी। कहकर पिता ने जैसे ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, जैसे आंखों से गंगा जमुना बह चला मृदुला के, मुझे अपने साथ ले चलिए बाबूजी। बाप बेटी की बातें सासू माँ की कानों में पड़ी और वे तिलमिला उठी। टेसियों तो ऐसे बहा रही है जैसे हम सास ससुर नहीं इसके दुश्मन हो। अब नाराज ना होइए समधन जी, बिटिया ने तो कुछ कहा भी नहीं, मृदुला के पिता ने समझाने का प्रयास किया। लेकिन आप उछाल रहे हैं हमारी इज्जत, घर का काम करना कोई शर्म की बात नहीं होती, कहाँ से रखे नौकर चाकर, इसके पति की पढ़ाई में मोटी रकम भी तो भेजनी पड़ती है। ऐसा ही था तो ब्याहते अपनी बेटी को किसी राजा महाराजा के घर, तमतमाई सी बोली मृदुला की सासू माँ। अधमरा तो कर दिया आप सबों ने, मेरी बेटी अब एक पल नहीं रुक सकती इस हालत में, अब लौटेगी तभी जब इसका पति कमाने लगेगा, मृदुला के पिता का जवाब था। सुनते ही भड़क उठे मृदुला के ससुर, बेशक ले जाइए, हम रोकेंगे भी नहीं आपकी बेटी को। और मृदुला चली आई थी पिता के साथ वापस मैके में। पिता को अपनी भूल का एहसास हो आया था, उन्हें लगा इस हालात के लिए वे ही दोषी हैं। बस क्या था, उन्होंने एक बड़ा निर्णय ले लिया, तमाम उत्पीड़नों से बेटी की मुक्ति के लिए उन्होंने न्यायालय की शरण ले ली, जैसे शादी नहीं गुड्डे गुड़ियों का खेल हो। कुछ महिला संगठनों ने भी हवा दी मामले को। उसके बाद तो न्यायिक प्रक्रियाओं का लंबा दौर चढ़ा, जिसकी परिणति मृदुला और शिशिर के तलाक के रूप में हुई। दोनों परिवार अपने अपने तरीके से अपनी पीठ थपथपाने लगे थे। उनकी झूठी शान का सवाल जो था, किसी ने भी इसके दुर्गामी परिणाम की नहीं सोची। यह मामला अखबारों में इतना उछाला गया कि दोनों ही परिवारों में वैवाहिक संबंध से लोग कतराने लगे। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, ये तो बीतता ही जाता है। देखते देखते 3-4 वर्ष से अधिक बीत गए, मृदुला अपनी एकाकी जिंदगी से उबने लगी। यही कारण था कि अखबार में एक कंपनी में प्रोजेक्ट ऑफिसर की नौकरी का विज्ञापन देख उसने भी आवेदन कर दिया, पैसों के लिए कम वक्त काटने के लिए ज्यादा। साक्षात्कार के लिए प्रबंध निदेशक के कमरे में प्रवेश करते ही वो चौंक उठी थी, सामने बैठा व्यक्ति निखिल था। फिर तो दोनों ने अपने अपने अतीत को साझा किया। निखिल ने बताया मृदुला की शादी के बाद तो वो टूट

0: चुका था, लेकिन कालांतर में उसके भी अन्यत्र शादी हो गई और आज उसकी एक बेटी भी थी। दूसरी ओर मृदुला की कहानी सुन निखिल ने एक लंबी सांस ली। कैसी विडंबना है मृदुला, दो परिवारों ने महज अपनी जीत के कारण अपने ही बच्चों का बसा बसाया आशियाना उजाड़ दिया। खैर छोड़ो इन बातों को, अब तुम आ गई हो तो मेरे साथ काम करो। आज से तुम इस कंपनी की प्रोजेक्ट ऑफिसर हो। इस नौकरी से मृदुला को बड़ा बल मिला था। बड़ी लगन से वो अपने काम में व्यस्त हो गई। उसने अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया उससे कंपनी में शीघ्र ही उसकी एक अलग पहचान बनी। एक दिन शाम में छुट्टी के वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी। मृदुला कार्यालय के बरामदे में खड़ी होकर बारिश रोकने का इंतजार कर रही थी, तभी निखिल पीछे से आकर बगल में खड़ा हो गया। कहते हैं शाम की बारिश और शाम के मेहमान जल्द जाते नहीं, आपकी इजाजत हो तो अपनी गाड़ी में आपको घर छोड़ दूं। मृदुला थोड़ा मुस्कुराई और निखिल की गाड़ी में बैठ गई। घर के पास गाड़ी रुकते ही सड़क के पार एक पेड़ के नीचे तेज बारिश के पानी से बुरी तरह लथपथ एक युवक को देख मृदुला ने निखिल को इशारा किया। लगता है शिशिर है, लेकिन ये यहाँ देखते हैं, कहकर निखिल गाड़ी से नीचे उतरा और शिशिर की ओर बढ़ा। पीछे पीछे मृदुला भी साथ हो ली। शिशिर जैसे ठंड से कांप रहा था। मृदुला की ओर हसरत भरी नजरों से देखते हुए किसी तरह उसने कहा, मृदुला तुमसे दूर होने के बाद तुम्हारी बड़ी याद आई, लेकिन कमाता नहीं था ना, इसलिए लाचार था। आज मैं एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर हूँ, सोचकर आया था तुम्हें एक बार फिर से मना लूंगा, लेकिन लगता है काफी देर हो चुकी है। मृदुला ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुड़कर वहां से जाने लगी कि निखिल ने रोका उसे। रुको मृदुला, तुम दोनों के बीच परस्पर संवादहीनता के कारण ही दूरियां बढ़ती गई और अंततः जो हश्र हुआ वो हम देख रहे हैं। शिशिर जी को बताओ, हम दोनों सिर्फ एक कंपनी में सहकर्मी हैं और अच्छे मित्र भी, इससे अधिक कुछ नहीं। और हाँ, मैंने पाया है शादी और तलाक दोनों ही मामलों में तुम दोनों की कोई सहमति नहीं थी, बल्कि अभिभावकों ने ही दुर्भाग्यवश दोनों मामले थोपे, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। शिशिर जी खुद चलकर यहाँ आए हैं, इन्हें रोक लो वरना बहुत देर हो जाएगी। मृदुला लगभग भागती सी गाड़ी में से अपना शॉल निकाल लाई और ढक दिया शिशिर के कांपते जिस्म को। निखिल के चेहरे पर संतोष की रेखाएं साफ झलक रही थीं। उसने नदी के दो किनारों को मिलाने के लिए सेतु का काम जो किया था आज।
1: बहुत ही सुंदर कहानी अभी हमने सुनी विनोद कुमार सिन्हा के द्वारा। फूलों के समान संबंध कोमल होते हैं, यदि उन्हें बल लगाकर पकड़ने का प्रयास किया जाए तो वे या तो टूट जाते हैं या मुरझा जाते हैं। इस कहानी में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। इस कहानी के बाद आइए अब सुनते हैं सुमन कुमार मिश्र से उनकी कुछ कविताएं।
2: शीर्षक है, गम भी छोटा रखते हैं हम हैं छोटे लोग, हम औकात न आका करते हैं, होती हमारी खुशियाँ छोटी गम भी छोटा रखते हैं। कोई घर को रोशन करने में जी जान लगाया करता है, हम मिट्टी के छोटे दीपों से तंदूर भगाया करते हैं। किसकी छत कितनी फैली इसका हमें अंदाज नहीं, किसकी छत कितनी फैली इसका हमें अंदाज नहीं, संतोष है बारिश से बचने को हम भी छाता रखते हैं। चलने जिनको आए नहीं वो मैराथन का हिस्सा बनते, चलने जिनको आए नहीं वो मैराथन का हिस्सा बनते, सच है कि अभी सीख रहा पर हम भी हिम्मत रखते हैं। नदियाँ गहरी हो या माझी साथ निभाने से कतराए, नदियाँ गहरी हो या माझी साथ निभाने से कतराए, मत कहना ये बात किसी से हम भी हुनर रखते हैं। उनका ओहदा तारीफ उनकी अपना कोई वजूद नहीं, फिर पूछो क्यों मुझसे अक्सर बचे बचे ओ रहते हैं। मोल जोल की बात नहीं सबका भाव अलग अलग है, मोल जोल की बात नहीं सबका भाव अलग अलग है, मैं बिक जाऊं बेमोल भले ही पर कुछ तो कीमत रखते हैं। मन का भाव मन में लेकर एक पायदान ही चढ़ते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ हम रोज इकट्ठे करते हैं। अगली कविता का शीर्षक है, हम सुख से वंचित होते गए अभाव से दूरियाँ बढ़ती गई, हम सुख से वंचित होते गए जितने साधन किए इकट्ठे मन से बोझिल होते गए, अभाव से दूरियाँ बढ़ती गई हम सुख से

वंचित होते गए, जितने साधन किए इकट्ठे, मन से बोझिल होते गए, हम बिसरे बचपन की बातें, समय से अक्सर लड़ने में, कभी नापे विरित बतासे का, मन का द्वंद सुलझाने में, गुलगुल्ले तोड़ कर बांटे हम, दोस्ती दुरुस्त बनाने में, समय की उल्टी बयार बही, पराधीन हम होते गए, हम पर हावी होता गया, हम सुख से वंचित होते गए। वे क्षण कितने सुखदाई थे, वे क्षण कितने सुखदाई थे, न मान अपमान की चिंता थी, चाह थी छोटी खुशियों की, नुक्कड़ के खेल तमाशों की, हम हर्षित पुलकित होते थे मिश्री के छोटे ढेलों से, हम हर्षित पुलकित होते थे मिश्री के छोटे ढेलों से, चाह हमारी बढ़ती गई, हम स्वाद से वंचित होते गए, हम पर हावी होता गया, हम सुख से वंचित होते गए। जब उड़ने का साहस नहीं था हम में, जब उड़ने का साहस नहीं था हम में, सारा आकाश हमारा था, अब साहस साधन संसाधन है, तो अंबर की भी सीमा है, हम विकसित होने का भ्रम पाले, मन से मूर्छित होते गए, हम पर हावी होता गया, हम सुख से वंचित होते गए। अगली कविता का शीर्षक है, साझा करना बहुत कठिन है। मिले नहीं जो मन आपस में, नज़र मिलाना बहुत कठिन है। मिले नहीं जो मन आपस में, नज़र मिलाना बहुत कठिन है। मन की बातें मन में रहती, साझा करना बहुत कठिन है। पाले मन में द्वेष बहुत दूर, सफर नहीं संभव है। गाल फुलाना और मुस्काना संग संग दोनों बहुत कठिन है। मिले नहीं जो मन आपस में, नज़र मिलाना बहुत कठिन है। कर न सके जो सबल स्वयं को, दुख पीड़ा से प्रेरित होकर, कर न सके जो सबल स्वयं को, दुख पीड़ा से प्रेरित होकर, सुख की बातें बेईमानी है, खाए बिना निरंतर ठोकर, परजीवी बन जीवन जीना भाग्य भरोसे बहुत कठिन है। मिले नहीं जो मन आपस में, नज़र मिलाना बहुत कठिन है। जीवन का सूरज असमय अस्त हो, मार्ग अगर न दीप प्रशस्त हो, तम का तंबू तना देख कर, घोर चिंतन में जीव समस्त हो, जुगनू केवल अंधेरों में, कदम बढ़ाना बहुत कठिन है। मिले नहीं जो मन आपस में, नज़र मिलाना बहुत कठिन है। अगली कविता का शीर्षक है, उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो, उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो, खुली आंख मत देखो सपने, कर्म प्रधान बन पाओ तो, इनकी उनकी बात बहुत, बेमानी मुलाकात बहुत, जाने कितने दोष दिए तुम भी तो कुछ दोषी होगे, जाने कितने दोष दिए तुम भी तो कुछ दोषी होगे, अगर भरे ना खाई परस्पर, आपस का प्रेम बढ़ाओ तो, उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो, सहज नहीं जीवन सुख मिलता, कौन भला अब किसकी सुनता, दबेगी जितनी पीड़ हृदय में, उतने ही फिर पुष्प खिलेंगे, दबेगी जितनी पीर हृदय में, उतने ही फिर पुष्प खिलेंगे, भटक भटक कर राह न ढूंढो, अपनी राह बनाओ तो, उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो, अज्ञान है इतना बढ़ा तुम्हारा, तुलना कर लेते ईश्वर से, सोच संकुचित रखने वालों, क्यों करते भगवान की बातें, बनना हो इंसान मुकम्मल, पहले ठोकर खाओ तो, उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो, जब भी होंगे कर्म उपेक्षित, ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, कोसोगे किस्मत को अपनी, जीवन भर पछताओगे, मंजिल की बातें बाद में करना, पथ पर चल दिखलाओ तो, उड़ने की बातें बाद में करना, धरती पर पांव जमाओ तो। अगली कविता का शीर्षक है, सर्कस हारे हुए हर मानव के
जीवन में

एक आस है सरकस, अंधेरों के बीच में जैसे सूरज का प्रकाश है सरकस। पैसा ले करतब दिखलाता, पर महज नहीं रोजगार है सरकस। पैसा लेकर तब दिखलाता, पर महज नहीं रोजगार है सरकस। संगठन को परिभाषित कर, परिवारों का परिवार है सरकस। सबकी अपनी मर्यादा, अनुशासन की मिसाल है सरकस। एक ही तंबू के नीचे एक अद्भुत संसार है सरकस। हाथी घोड़ा बंदर भालू शेर संग गुलजार है सरकस। हाथी घोड़ा बंदर भालू शेर संग गुलजार है सरकस। मौत के आगे खड़ा हमेशा खुद पर दृढ़ विश्वास है सरकस। सबकी जाति धर्म अलग, पर संबंधों की मिठास है सरकस। सुख दुख में सब साथ निरंतर, भावों का एहसास है सरकस। बच्चे बूढ़े सकल जनों की चेहरे की मुस्कान है सरकस। कहीं नहीं जो ठहर पाए, बस उसका एक मुकाम है सरकस। बंजारों सा जीवन में सत का सदा सत्कार है सरकस। बंजारों सा जीवन में सत्य का सदा सत्कार है सरकस। बांटे पर कभी घटे नहीं, बांटे पर कभी घटे नहीं। खुशियों का विस्तार है सरकस। झूठ नहीं दर्शक के आगे, झूठ नहीं दर्शक के आगे। वास्तविकता का अभ्यास है सरकस। प्रदर्शन में संतुष्टि का एक अद्भुत प्रयास है सरकस, एक अद्भुत प्रयास है सरकस। अगली कविता का शीर्षक है अमन चैन का बादल बनकर। बरसों मेरे गांव में जलधर, अमन चैन का बादल बनकर। सूरज रोज सुबह में आए अपने संग में लाली लेकर। धरती पर हरियाली लेकर, गांवों में खुशहाली लेकर। तुम भी आओ हिम शिखर से निर्मल शीतल वारी लेकर। बरसों मेरे गांव में जलधर, अमन चैन का बादल बनकर। उगते बीजों का राज तुम ही हो, उगते बीजों का राज तुम ही हो। पल पल जीवन का राज तुम ही हो। खिलते फूलों का आस है तुझ पर, कृषकों का विश्वास है तुझ पर। आओ मेरे गांव में आओ, सागर की लहरों से उठकर। बरसों मेरे गांव में जलधर, अमन चैन का बादल बनकर। जीवन का भूपर स्रोत तुम ही हो, भूतल पर है तेरी प्रतीक्षा। जीवन का भूपर स्रोत तुम ही हो, भूतल पर है तेरी प्रतीक्षा। तुझ पर आश्रित भूमंडल यह, आओ न आओ तेरी इच्छा। पर व्याकुल मन है आस में तेरी, आओ सुखदाई अमृत लेकर। बरसों मेरे गांव में जलधर, अमन चैन का बादल बनकर। पपिया बैठा ताक में तेरी, खोले मुख सिप नदी किनारे। पपिया बैठा ताक में तेरी, खोले मुख सिप नदी किनारे। मेढक टटर मल्हार सुनाए, नाचे मोर हो भाव विभोर। उमरत गर्जत आओ घन आओ, उमरत गर्जत आओ घन आओ। पीर हरो पीर पातक बनकर। बरसों मेरे गांव में जलधर, अमन चैन का बादल बनकर। अमन चैन का बादल बनकर। अगली कविता का शीर्षक है घर नहीं बन पाएगा। ऊंचे ऊंचे महल बना लो, घर नहीं बन पाएगा। ऊंचे ऊंचे महल बना लो, घर नहीं बन पाएगा। जब तक उसमें खुशियां न हो, घर नहीं कहलाएगा। लाख जोड़ लो ईंट और पत्थर, संगमरमर की दीवार बना लो। लाख जोड़ लो ईंट और पत्थर, संगमरमर की दीवार बना लो। जोड़ सको न दिल से दिल को, सुख चैन नहीं आएगा, घर नहीं बन पाएगा। दिल से दिल को बांट दिए और कटे कटे से रहते हो। दिल से दिल को बांट दिए और कटे कटे से रहते हो। भाईचारा और प्रेम नहीं जहां, उसको घर क्यों कहते हो। वो तो है बस चार दीवारी, वो तो है बस चार दीवारी। घर नहीं कहलाएगा, घर नहीं बन पाएगा। निज स्वार्थ में अंधे हो गए, निज स्वार्थ में अंधे हो गए। पहन लिए अभिमान के चश्मे, भूल गए सब रिश्ते नाते, भूल गए सब अपने पराए। जीवन सफल बनाने हेतु आशीष नहीं मिल पाएगा, घर नहीं बन पाएगा। संग संग चलने का मर्म न जाना, संग संग चलने का मर्म न जाना। अटूट प्रेम का धर्म न जाना। कटे पंख के बल पर नभ में उड़ने की कोशिश करते हो। संग संग चलने का मर्म न जाना, अटूट प्रेम का धर्म न जाना। कटे पंख के बल पर नभ में उड़ने की कोशिश करते हो।
चांद

0: को धरती पर लाने का, दिवा स्वप्न रह जाएगा, घर नहीं बन पाएगा।
1: बहुत ही सुंदर कविताएं अभी हम सुन रहे थे सुमन कुमार मिश्र से। इन्हीं कविताओं के साथ अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है, लेकिन श्रोताओं, जाने से पहले एक आग्रह, यदि आप हमारे अंक से जुड़े कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है feedback@aarpatna.gmail.com। तो श्रोताओं, प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ अपनी साहित्यिक साथी रानू सिंह को दीजिए विदा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे साहित्यिक पत्रिका हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:00 हैं और इसी के साथ वक्त हो गया है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं आज शुक्रवार है और आज आपके लिए फिल्म संगीत का जो विशेष कार्यक्रम होता है वह थीम पर आधारित होता है। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं और जानते हैं आज का थीम क्या है।

तो श्रोताओं, इस गीत को सुन के आपने क्या अंदाजा लगाया आज का थीम क्या है? जी हाँ, आज आप बिल्कुल सही हैं। आज का थीम है बिंदिया। यूं तो बिंदिया या बिंदी सुनने में बड़ी साधारण सी लगती है, कौन गौर करता है बिंदिया पर, लेकिन ये इतना भी साधारण नहीं है। इसकी अपनी जुबान है, यकीन नहीं होता? तो सुनिए।

ये बिल्कुल सही बात है श्रोताओं की। महिलाओं के लिए साज सिंगार में बिंदी का बड़ा ही महत्व है, लेकिन ये बिंदी सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बढ़ाती, ये एक पहचान है सुहागन होने का। खास तौर से हिंदू धर्म में तो बिंदिया का बहुत ही महत्व है, और तभी इस बिंदिया को लेकर के इतने सारे गीत फिल्मों में भी फिल्माए गए हैं। एक गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अभिमान से, सुनिए जरा।

जी, इस बिंदिया के कारनामे कुछ ऐसे ही होते हैं। कहीं पे निंदिया उड़ा लेती है और कहीं ना हो तो फिर क्या कहते हैं कि श्रृंगार अधूरा है। मतलब जैसा आप जानते हैं कि महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, कहा जाता है इन 16 श्रृंगार में बिंदी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चेहरे को क्या बना देता है, आप सुन लीजिए।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं संपन्न हुआ आज का यह विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से मेरे यानी जया के साथ। इस कार्यक्रम से अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। कुछ ही देर में हम हाजिर होते हैं अगले कार्यक्रम के साथ।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पटना है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो गए हैं। वक्त है फिल्म संगीत सुनने का। फिल्म संगीत के साथ हम उपस्थित हैं कार्यक्रम में। आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं जया। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म जिंदगी से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म दुश्मन से आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

अब आपको सुनवाते हैं फिल्म फर्ज का ये गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

पतंगा फिल्म का यह गीत आप सुन रहे थे शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज़ में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म मल्हार से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत।

आइए अब सुनिए बैजू बावरा फिल्म से ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ है, नौशाद के संगीत और शकील बदायनी के बोल।

और कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश फिल्म नाइट इन लंदन से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम आज आप सुन रहे थे मेरे यानी जया के साथ। कार्यक्रम अब संपन्न होता है, इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार।

0: भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।